डैलस की जनता, मेरे जाने मंज, और डैलस के बाहर की भी जनता, DFW की जनता एंड बाकी सारी जनता जो मेरा गाना सुन रही है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो मेरा शो सुन रहा है, नॉट गाना, आई एम सॉरी, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड मुझे इतने अमेजिंग अमेजिंग कॉल्स आते हैं, भाई मैं आ गई हूँ, योर फेवरेट इपी द हिपी द बैडेस्ट RJ हियर एट फनेशिया, और ऑलमोस्ट पूरा हफ्ता खत्म हो चुका है, इट इज थर्सडे, इट इज ऑलमोस्ट टाइम फॉर द वीकेंड एंड वी आर गोना हैव सो मच फन, आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वीकेंड. जैसे मैंने पहले बोला, कितनी सारी इवेंट्स हो रही है यार June 6th को, तो आप कौन सी इवेंट में जा रहे हो? आई एम सो रेडी टू कॉल इट अ वीक एंड लाइक ओ गॉड, मुझे कोई उठाएगा नहीं नींद से, मैं आज सोने वाली हूँ बहुत सारा, ठीक है? तो इसीलिए

भाई मैं तो इपी द हिप्पी हूँ, आपकी सबसे फेवरेट आरजे। अरे आप तो इतने दिनों से मेरा शो सुन रहे हैं, मैं कौन हूँ ये तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं कौन हूँ। यू गाइस और कैसे हैं आज सभी आप लोग? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये हफ्ता खत्म होने वाला है और उसके बाद मैं वीकेंड पे आई एम गोना हैंग आउट विद माय फ्रेंड्स, आई एम गोना हैव सम अमेजिंग अमेजिंग फूड और एकदम चिल करने वाली हूँ। जून 6 को पता नहीं मैं कौन से इवेंट पे जाऊंगी, बट एक मुझे किसी कॉलर ने स्टेडियम ग्रिल के बॉलीवुड नाइट पे भी बुलाया था ऑन सैटरडे। मे बी वहां पे भी मैं जा सकती हूँ, आई डोंट नो, आई हैवन्ट डिसाइडेड येट। बट उसी से आज, क्योंकि ऑलमोस्ट एंड ऑफ द वीक हो चुका है, भाई आपका पूरा हफ्ता वर्क वीक कैसे गया? मेरा वर्क वीक तो बहुत सही गया, आई मीन आई वॉज मोस्टली चिल फॉर द मोस्ट पार्ट। बट आज हम इसीलिए कुछ मजेदार करने वाले हैं। एज यू ऑल नो, थर्सडे इज आर रेडिट थ्रेड्स डे। दैट इज करेक्ट, दैट थर्सडे को हम एक्चुअली वी गो टू द इंटरनेट एंड वी फाइंड सम रियली कूल एंड जूसी जूसी रेडिट थ्रेड्स एंड वी रीड इट आउट एंड देन यू कैन कम एंड शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद मी हियर ऑन एयर। बट पता है क्या, कई बार क्या होता है ना, हम एयर पे जब आते हैं तो कुछ स्टोरीज हमारी कुछ ज्यादा ही लंबी हो जाती है। सो गाइज, व्हेन यू कम ऑन एयर एंड व्हेन यू शेयर योर स्टोरीज विद मी, आप उसके पहले मुझे थोड़ा सा बताएंगे एंड देन वी विल सी इफ इट्स लाइक इफ यू वॉन्ट बी ऑन एयर और नॉट। अदरवाइज आप मुझे प्राइवेटली भी बता सकते हैं एंड आई कैन शेयर ऑन योर बिहाफ विदाउट एनी वन्स नेम। अगर आपको अनोनिमस रहना है दैट इज ओके टू, वी रिस्पेक्ट पीपल्स प्राइवेसी यू गाइज। और अगर आपको एयर पे आके बोलना है तो भी चलेगा, मतलब अगर आपको अपनी अपनी जुबान में अपने स्टोरीज शेयर करने हैं तो वो भी चलेगा, लेकिन वी हैव टू कीप अ टाइम लिमिट, सो यू ट्राई एंड मेक इट विद इन लाइक 1 मिनट और समथिंग। तो फटाफट हम बोलेंगे, वी विल गेट टू द स्टोरी सुपर फास्ट। बट एनी वेज, आज हम पता है किस बारे में बात करेंगे? मेरा फेवरेट टॉपिक, आज हम बात करेंगे वॉट आर सम ऑफ द मोस्ट अनहिंज्ड एक्सक्यूजेज दैट यू हैव मारोड टू योर ऑफिस एंड टू योर बॉस टू मारो अ छुट्टी। मतलब ऐसे कितने मतलब बहाने आपने मारे हैं जो अपने बॉस को बोला कि भैया आज मेरा मन नहीं कर रहा काम पे जाने का, तो आज हम सिक लीव लेने वाले हैं, तो आज हमने बोलेंगे आई एम सो सिक राइट नाउ। मैंने तो कितनी बार एक्सक्यूजेस मारे हुए हैं ऐसे कभी चलते हैं कभी नहीं भी चलते हैं, डिपेंड्स ऑन योर बॉस बाय द वे, FYI, डिपेंड्स टोटली ऑन योर बॉस। बट आई हैव सम अमेजिंग जूसी थ्रेड्स दैट आई फाउंड ऑनलाइन दैट पीपल हैव मारोड यू नो टू देयर बॉसेस की चलो यार आज गोली देते हैं, मतलब आज जाते हैं हम मूर्तल पराठे खाने या फिर कुछ और करेंगे मस्ती वाले, मुझे आज काम पे नहीं जाना, आज मौसम सही नहीं है, आज बारिश हो रही है, आज मैं काम पे नहीं। आई एम श्योर वी ऑल गॉन थ्रू दैट स्टफ। ओके, तो इसीलिए आज हम वो करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा गाना और उसके बाद जब हम आएंगे तो हम और मजाक करेंगे। ओके, वील लैफ, वील हैव फन एंड वील जस्ट शेयर सम स्टोरीज, नॉट स्टेयर स्टोरीज, शेयर स्टोरीज।

0: ऑलराइट गाइस, वी आर बैक. और आपने कौन से बहाने मारे हैं आज इस हफ्ते? कौन से बहाने मारे भाई? कभी कई बार मन करता है ना कि काश लॉन्ग वीकेंड होता और लॉन्ग वीकेंड दूर दूर तक, दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आ रहा है. ओएसिस भी नजर आ गया लेकिन लॉन्ग वीकेंड नहीं आ रहा है नजर. तो भाई आपने कौन से बहाने ऐसे मारे फ्राइडे को छुट्टी मारने के लिए? भाई व्हेन आई वाज यंगर, जब मैंने अपनी पहली इंटर्नशिप ज्वाइन करी थी, आई थिंक आई वाज लाइक 21 और समथिंग, तब तो मैंने बड़ा ऐसे ही बहाना मारा था. ओह मंजरी, आई एम सो सिक, आई कॉन्ट कम टू वर्क टुडे, करके ऐसे बीमार होके बिल्कुल ऐसे डार्क बद करके ना ऐसे प्रिटेंड किया था कि मुझे बहुत जुकाम है, मुझे ये एयर पे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि कल को मुझे ये दोबारा बहाना मारना पड़े तो रेडियो वाले तो जान जाएंगे कि मैं बहाना मार रही हूँ, हैं. लेकिन उसके बाद पता है हमने क्या किया? मेरे दोस्तों ने बेसिकली स्पॉन्टेनियस प्लान बनाया. हम लोग दिल्ली में रहते थे यहाँ, तो मेरे दोस्तों ने स्पॉन्टेनियस प्लान बनाया कि हम पहाड़ों में जाते हैं, चलो स्नोफॉल देखने जाएंगे पहाड़ों में, लेट्स टेक अ ट्रिप एंड लेट्स ड्राइव टू आई डोंट नो रोहतांग और समथिंग. और हमने कहा चलो ठीक है, हम छुट्टी मारते हैं. तो सबने अपनी छुट्टी उट्टी मार ली और मैंने कहा यार अब मेरे को इवेंट आ रहा है, मैं तो ऐसे नहीं छुट्टी मार सकती, तो मैंने ये वाला बहाना मारा. आई एम श्योर मेरी बॉस को पता चली गया होगा, लेकिन मैं चली गई उसके बाद छुट्टी पे. मैंने कहा आई एम गोइंग टू लॉन्ग वीकेंड. थैंकफुली उस टाइम पे इंस्टाग्राम उतना पॉपुलर नहीं था, नहीं तो अगर मेरे फोटोज देख लेती जो मैंने शेयर करे थे फेसबुक पे, माय बॉस वाज नॉट माय फेसबुक फ्रेंड देन, ओके. तो अगर उस टाइम पे देख लिया होता तो मेरा तो वही हो जाना होता भाई, कल से काम पे आने की जरूरत नहीं, टाटा बाय बाय. भाई उसे वैसे रिलेटेड अभी हम बात कर रहे थे तो आई हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉल विद मिस्टर पटेल, एंड मिस्टर पटेल ने बोला कि भाई उन्होंने ऐसे बहाने तो नहीं मारे, मेरी तरह कोई इतने पैथोलॉजिकल लायर नहीं होता. लेकिन उन्होंने फैमिली इमरजेंसी के बहाने ज़रूर मारे. उनके भाई का कोई एग्जाम था ऑस्टिन में और उनको जाना पड़ा, तो उन्होंने बोला अपने ऑफिस में कॉल करके, ओ माय गॉड फैमिली इमरजेंसी आ गई है, आई रियली कांट मेक इट टू वर्क, एंड फिर वो चले गए ऑस्टिन अपने भाई के साथ. भाई फैमिली इमरजेंसी टेक्निकली तो थी, भाई को जाना था एग्जाम के लिए, मतलब यू नो टेक्निकली इट इज़ ए फैमिली यू नो इवेंट और बहाना, लेकिन इमरजेंसी तो नहीं था, ये प्लान भी कर सकते थे. एनीवेज गाइस, कॉल मी एंड टेल मी योर फन स्टोरीज ऑफ मारोइंग बहानास एंड देन आई विल कम एंड शेयर सम रेडिट थ्रेड्स विद यू. लेकिन जो लोग बने हुए हैं रेडियो पे, बने रहिए, यहीं पे रहिए, क्योंकि 8 बजे के बाद हम करेंगे गिव अवे क्वेश्चन एंड इट्स गोइंग टू बी सुपर फन, सम फन कढ़ाई चिकन कढ़ाई पनीर वाला फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स. सो स्टे ट्यून्ड, अंटिल देन एंजॉय दिस सॉन्ग.
1: Oh,

welcome home. All right, guys, this part of the show is brought to you by Umar Khwaja. अगर आप किसी गाड़ी के एक्सीडेंट में या किसी भी तरह के एक्सीडेंट में फंस जाते हैं और अगर आप कहीं चलते चलते स्लिप करके गिर के कहीं आपको चोट वोट लग जाती है और आपकी गलती नहीं है, मतलब मे बी देयर वाज वाटर ऑन द फ्लोर, देन यू नीड टू कॉल उमर ख्वाजा. ही विल कम एंड फाइट योर केस एंड ही विल हेल्प यू गेट द कॉम्पेंसेशन दैट यू डिजर्व. क्योंकि भैया इंश्योरेंस कंपनीज तो बहुत ही परेशान करती है. वो कुछ भी करेंगी ये साबित करने के लिए कि भाई गलती आप ही की थी और आपको पैसा नहीं मिलेगा. आप जो इतनी मेहनत से इंश्योरेंस के प्रीमियम्स भर रहे हैं वो सारा पानी में जाने वाला है अगर आपके पास सही अटॉर्नी नहीं है तो. सो दैट्स व्हाई यू नीड टू कॉल उमर ख्वाजा. यू डोंट पे अंटिल यू विन. फॉर अ फ्री कंसल्टेशन कॉल 4693005046. हाँ जी, आज हम बात कर रहे हैं किसकी. व्हाट इज द मोस्ट अनहिंज्ड बहाना दैट यू हैव मारोड टू मारो छुट्टी. भाई मतलब सबने की है. आई मीन वी ऑल नो इट. यू हैव डन इट, आई हैव डन इट, योर पड़ोसी हैज डन इट, उनकी भी पड़ोसी हैज डन इट. तो क्यों ऐसे, मतलब डोंट बी शाय यार. Come on and share some fun stories and then we are not going to put you on air if you don't want to. अगर आपको लग रहा है कि भैया तुम्हारा बॉस भी सुन रहा है, अरे मेरा बॉस भी देसी है, वो भी फन एशिया सुनता है, ही इज़ अ बिग फैन, और अगर मैंने एयर पे आके मैंने ये बहाना मार दिया उसको तो पता चल जाएगा. भाई आपको अपनी नाम बताने की कोई ज़रूरत नहीं है. वी डोंट वॉन्ट यू टू लूज योर जॉब. जॉब मार्केट वैसे ही ख़राब है, इट्स वेरी बैड, सो वी अंडरस्टैंड. बट अगर आप मुझे अपनी सीक्रेट स्टोरी बताएंगे तो मैं आपका नाम बिल्कुल भी नहीं लूँगी, या फिर आपका नाम चेंज भी कर देंगे एंड देन वी कैन जस्ट हैव अ लिटिल बिट ऑफ अ लाफ. ओके, सो चेक इट आउट. फ्रॉम माय थ्रेड्स दैट आई फाउंड आउट दिस वुमन हैज गॉन, और मैन आई डोंट नो बिकॉज इट डजंट से दैट, हैज गॉन टू द नेक्स्ट लेवल टू टेक अ छुट्टी. उसने पता क्या किया, शी सेज और ही सेज व्हाटएवर डजंट मैटर, आई एम एलर्जिक टू रैबिट्स. सो आई मीन imagine the lengths this person has gone. I'm allergic to rabbits, so I went to a pet store, okay, and then I took a rabbit and I rubbed it all over my face. Then I got hives all over my face. Aur uske baad jaake maine bola I'm having a really bad reaction. And then after that, I took an off and I went home and I had Benadryl. मतलब इतना lengthy सोचने के लिए ना, झूठ बोलने के लिए commitment चाहिए होती है. इसको बोलते हैं अगर आपको बहाना मारना है ना तो ऐवे सिक लीव का बहाना मत मारो. अगर करना है तो ऐसे करके करो, ठीक है कुछ. Anyways guys, listen to the song, then we go into a break and then come back. We're gonna play some more fun music.

0: भाइयों, ये एक अनाउंसमेंट करते हैं, फिर ब्रेक में जाते हैं. दिस इज फॉर अ ज्वेलरी इज नॉट मोर देन एन एक्सेसरी, इज मोर देन एन एक्सेसरी. इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रेडिशन, एलिगेंस एंड टाइमलेस ब्यूटी. श्री कृष्णा ज्वेलर्स में अगर आप जाएंगे तो आपको क्लासिक गोल्ड डिजाइन, स्पार्कलिंग डायमंड्स, इंट्रिकेट कुंदन और पोल की कलेक्शन भी मिलेगी. एवरी पीस इज क्राफ्टेड टू सेलिब्रेट लाइफ स्पेशल मोमेंट्स. नाउ वेलकमिंग यू एट द न्यू लोकेशन इन फ्रिस्को, श्री कृष्णा ज्वेलर्स. दे आर क्राफ्टिंग फाइन ज्वेलरी एंड चेरिश मोमेंट्स सिंस 1967 एंड देयर लोकेशन इज 13145 स्वीट 220 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को.
1: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग है.
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
3: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
4: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
3: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
5: चिकन बनाना,
6: चिकन बनाना
7: ब्रो, बनाना नहीं, बनाना मतलब मेक द चिकन राइट.
8: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
9: क्या मतलब?
10: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
9: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
10: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
9: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
11: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
12: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
13: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
14: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
13: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
15: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
12: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
3: प्लीज डोंट से योर यूजुअल प्लेस अगेन. आई एम टायर्ड ऑफ द सेम फूड.
16: एक्सक्यूज मी, इट्स कॉल्ड बीइंग लॉयल.
3: इट्स कॉल्ड बीइंग प्रेडिक्टेबल.
16: ओके देन, Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
3: And what's so special at Neon Cactus?
16: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
3: Not bad.
16: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
3: Okay, this I didn't expect from you.
16: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
17: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
0: फ्रेंड्स एंड वी आर बैक. आज हम मस्ती करने वाले हैं क्योंकि थर्सडे हो चुका है, कल लास्ट डे है हफ्ते का, वर्किंग वीक का, और उसके बाद होने वाला है वीकेंड, विच इज गोइंग टू बी अमेजिंग. सो मेनी लाइव कॉन्सर्ट्स एंड प्राइड इवेंट एंड वगैरह वगैरह वगैरह वगैरह. बट वो सब करने से पहले, आपने आज काम में क्या किया? आज आपने कौन से बहाने मारे काम ना करने के लिए? देखा, मुझे तो सब पता है, आई नो इट. बट अगर आप शेयर करना चाहते हैं जरूर मुझे कॉल करिए और बताइए कि व्हाट इज दैट बहाना यू मारो टू टेक दैट लॉन्ग छुट्टी और अ हाफ डे. वी ऑल डन इट, इट्स ओके, डजंट मैटर. अभी ब्रेक में मुझे एक कॉल बड़ी अच्छी सी आई, अगेन इट वॉज द सेम कॉलर हु कॉल्ड मी अगेन थोड़ी देर पहले, जिन्होंने बोला फैमिली इमरजेंसी वगैरह. पटेल जी थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई शो. आप पटेल जी ने बोला कि ही इज बिन ट्यूनिंग इन फॉर द लास्ट टू डेज एंड ही इज रियली एंजॉयिंग इट. उन्होंने मुझसे ये पूछा कि भाई तुम जब आती हो बोलने तुम क्या खा करके आती हो, तुम्हारे में इतनी एनर्जी कैसे है. भाई मैंने बोला कि देखो मैं जो खा कर आती हूँ ना वो होता है 4 कप कॉफी. खा के तो नहीं खैर पी के आती हूँ, पर मैं बंगाली हूँ, बंगाली में हम सब खाते हैं, पानी भी खाते हैं, चाय भी खाते हैं, कॉफी भी खाते हैं, जिनको सिगरेट खाना होता है वो भी खाते हैं, मैं तो नहीं बट जिनको खाना होता है वो सब खाते हैं. ओके हवा भी खाते हैं. तो एनीवेज, तो मैं बहुत सारी कॉफी पीकर आई हूँ और मैं आई सर्वाइव बेसिकली ऑन कॉफी यार, ऐसे ही चलता है. बट एनीवेज, उन्होंने मेरा कल का शो सुना एंड मैग्नीशियम जो मैंने काफी एडवाइस किया था, भाई मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट अगर आपको पूरी नींद चाहिए, भाई मेरी नींद पूरी हो जाती है तो मेरे को एनर्जी वैसे ही आ जाती है ना. इसी खुशी में आज मेरा जी करदा होए, एक गाना सुनते हैं.

अदर न्यूज गाइज, आज मैंने बड़ी सही एक रील देखी, पता है, आई वॉज जस्ट लाइक डूम स्क्रोलिंग जस्ट लाइक ऑल ऑफ अस, ठीक है. आई सॉ दिस लाइक अमेजिंग थिंग विच वॉज एट द वैन गो म्यूजियम. आपको पता है वैन गो म्यूजियम कहाँ है? नेदरलैंड्स में है, ठीक है, एम्स्टरडैम. इट सेज दिस वुमन, शी पोस्टेड, शी सेड अ मोमेंट आई विल नेवर फॉरगेट विच वॉज टू सी पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, लाइक डिफरेंट कल्चर्स, दे वर ऑल गैदर्ड एट द वैन गो म्यूजियम एंड दे वर डांसिंग जैसे गरबा स्टाइल, लाइक दैट काइंड ऑफ गोल इन अ सर्कल, ताली बजा बजा के नाच रहे थे टू बंगाली म्यूजिक. और मुझे इतनी खुशी हुई ना देख के, वो बंगाली फोक म्यूजिक जो नहीं होता, क्या बोलते हैं, बाउल या भाटियाली स्टाइल का जो भी होता है उसको, उस पे वो लोग डांस करे थे. एंड देर वर लाइक अ होल बंच ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल दीज डिफरेंट कल्चर्स. वॉजंट दैट सो अमेजिंग एट अ म्यूजियम लाइक अ वैन गो म्यूजियम? ओ माई गॉश, दैट रील वॉज जस्ट माइंड ब्लोइंग. यू कैन गूगल इट इफ यू वॉन्ट टू चेक इट आउट, इट वॉज क्वाइट समथिंग. Anyways, guys, आज हम बात कर रहे हैं something that you did, some bahana you marred to make a chutti, because sometimes we all need a little break, okay? And sometimes we have some, you know, difficult management who is not giving you chutti, but unfortunately you need that little break, you know. So what is that bahana that you marred? Okay, I'm gonna read you one more Reddit thread and then we're gonna go into a song. Stay tuned until a little bit after 8 o'clock, क्योंकि हमारा giveaway होने वाला है 8 बजे के बाद. So this person writes, I spilled my protein oatmeal smoothie. Yuck. Also, it sounds kind of gross. I hate oatmeal in my smoothie, but whatever. Everyone's got their own taste buds. I spilled my protein oatmeal smoothie in my car while I was driving to work. I mean, don't drink a smoothie in the car, but also... whatever. And then this person said, then I told my boss that I threw up all over myself. Oh, yuck. And then basically I went home and I binged TV shows all day. I mean, sometimes you need to catch up on your shows, you guys. Sometimes you just need to catch up on your shows, and protein oatmeal smoothie will definitely look like something that you would throw up after eating some really bad butter chicken at some restaurant or something like that, you know. Anyways, call me and tell me your juicy stories. Aapne kaun se bahane mare hain apni time mein ya abhi bhi maar rahe hain? Main aapka naam nahi lungi, pakka promise, mummy kasam. Chalo ek gaana sunte hain and then we'll come back and listen to some more stuff. Hum huma, huma huma, huma hum huma, huma hum.

हाँ जी, मुझे बहुत प्यारा गाना लगता है वो भाई. युवा के सारे गाने इतने सही थे ना, दे वर ऑल सच लेजेंडरी सॉन्ग्स. आई फील लाइक वो गाने और भी सुनने चाहिए. आजकल वो सुनाई नहीं देते उस टाइप के गाने. यू नो दैट अर्ली 2000s, ए आर रहमान, अमित त्रिवेदी के गाने, आई मीन दे वर लाइक रियली गुड. उनसे वो अमित त्रिवेदी रहमान की बात करते हुए मुझे एक चीज़ तो मेरे को आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट टुडे, विच इज़ कि मुझे बड़ी खुशी होती है दैट व्हेन आवर बॉलीवुड कंपोजर्स एंड सिंगर्स स्टेप आउट एंड यू नो काइंड ऑफ फाइंड देयर ओन स्पेस और अपना भी कुछ करते हैं वो म्यूजिक में, नॉट जस्ट रेलिगेटेड टू लाइक सिचुएशनल सॉन्ग्स ऑन बॉलीवुड एंड ऑल. एंड दिस इज लाइक अ वेरी ओल्ड स्टोरी, ये कोई नई स्टोरी नहीं है बाय द वे गाइज. इंडी म्यूजिक या अपना ओन ओरिजिनल गाने या जो भी है, ओरिजिनल तो खैर नहीं है, आई एम श्योर समबडी रोट इट फॉर देम, बट बहुत टाइम से चल रहा है. लाइक फॉर एग्जाम्पल के शान, दीज गाइज हैव बिन डूइंग इट, डूइंग द ओन म्यूजिक फर्स्ट एंड देन दे बिकेम बॉलीवुड सिंगर्स लेटर, है ना. तो शान ने भी पहले अपने इंडिपेंडेंट गाने से शुरू किया, आई मीन आई एम श्योर ही वॉज साइंड बाय लेबल, एंड देन सो डिड के, और उसके बाद धीरे धीरे वो लोग बॉलीवुड में आए. सेम विथ लाइक अदर सिंगर्स लाइक कुनाल गांजावाला एंड ऑल ऑफ दैट. नाउ इट्स द अदर वे अराउंड ऑल्सो हैपनिंग. लाइक सुनिधि चौहान जो है, शी इज लाइक फाइंडिंग अर ओन स्पेस इन इंडी म्यूजिक. लाइक शी, कल मैंने रात को एक गाना बजाया, तुम कहते हो कविता लिख दो, दैट इज सुनिधि चौहान्स ओन सॉन्ग. शी कोलैबोरेटेड विथ लाइक अ बंच ऑफ आर्टिस्ट लाइक पोएट्स एंड स्टफ लाइक दैट टू डू दैट. और उसके बाद सुनिधि चौहान का जो अभी जो

रात को एक गाना बजाया, तुम कहते हो कविता लिख दो, दैट इज सुनिधि चौहान्स ओन सॉन्ग. शी कोलैबोरेटेड विद लाइक अ बंच ऑफ आर्टिस्ट लाइक पोएट्स एंड स्टफ लाइक दैट टू डू दैट. और उसके बाद सुनिधि चौहान का जो अभी जो अमेजिंग कॉन्सर्ट्स जो हो रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई मीन द वे शी इज रेप्लिकेटेड, बियॉन्से इज मॉडल विद द यू नो द शोमैनशिप एंड एवरीथिंग, इट्स फैंटास्टिक. आई एम गोना प्ले यू दिस रियली कूल सॉन्ग कॉल्ड आंख, एंड इफ यू शुड सी द वीडियो, you it's so good. She dances on the video and it also features the amazing Sania Malhotra as well. Both of them are killing it, and sometimes Sania Malhotra also goes on concerts with her, by the way. So aap ye gana suniye, Sunidhi Chauhan ka original gana hai, original to nahi hai, but I mean it's in not officially a Bollywood tune, but I would still consider it Bollywood because it's Sunidhi and it's Sania, you know, why not, why not.

है गाइस, दिस नेक्स्ट सॉन्ग गोज आउट टू सफी एंड रफी जो बहुत रेगुलर लिसनर्स है फनेशिया के, और उन्होंने रिक्वेस्ट करा है नीति मोहन जी का जाय जाय जाय जाय।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
3: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
4: Calculating route, rerouting, rerouting.
3: अरे ये क्या? मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है.
4: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
3: क्यों?
4: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के smart लोग जानते हैं. Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
3: अच्छा. तो सीधा वही ले चलो
5: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ स्विच द रूट
4: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड
6: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती उनके लेवल्स होते हैं लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना फुल पंजाबी मोड ऑन फुल्ली लोडेड और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल स्लो कुक्ड कीमा मटर रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस
7: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ फ्लेवर हम संभाल लेंगे
8: जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना
9: लाइफ हो या हेल्थ कब क्या हो जाए पता नहीं 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़ावे लोकेशन पर लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर अर्जेंट केयर एक्सरे सीटी स्कैन हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा सब कुछ एक ही रूफ के नीचे लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 days a week 8 a.m. to 8 p.m. walk in anytime 9191 Kaiser Way suite 205 Frisco
10: planning a graduation party birthday celebration family gathering or private event make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences celebrate with family and friends create lasting memories and enjoy your special day with us to book your event call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
11: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply. Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी डायग्नोसिस क्लियर है आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी एजी फिनटैक्स फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी फ्रॉम टैक्सेस टू सीएफओ एडवाइजरी बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन कॉल 425-395-4318 और विजिट agfintax.com प्लान टुडे ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज
12: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive Media Partner Fun Asia
13: This is Ali Zafar and you're listening to me on Fun Asia Radio

हाँ जी, वी आर बैक। और आज हम बड़ी मजाकिया बातें कर रहे हैं कि आपने ऐसे कौन से बहाने मारे अपने ऑफिस में ताकि आपको गोली दे सके ऑफिस में। एक दिन की छुट्टी भाई सबको चाहिए होती है कई बार। मतलब मुझे तो लगता है कि जो इमिग्रेंट्स आके यहाँ पे काम भी करे ना, जो H1B वगैरह पे हैं, हमसे तो मुझे लगता है इतना ज्यादा काम कराते हैं, वीकेंड पे भी काम कराते हैं। मेरे पास तो खैर H1B है नहीं, आई एम ऑन अ डिफरेंट वीजा कैटेगरी, लेकिन मेरे जो दोस्त है जो मतलब वीजा कैटेगरी में है और जो सारे टेक फर्म्स में काम कर रहे हैं, वो सब कहते हैं भाई हम तो सैटरडे को भी काम करते हैं, संडे को भी काम करते हैं, रात के 9 और 10 बजे तक मीटिंग चल रही होती है, ऑनलाइन मीटिंग। मैं कहा यार तुम सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक मीटिंग में बैठे हो, मतलब, और वो भी बैकग्राउंड में चल रहा है मीटिंग, वो डिनर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन मीटिंग बैकग्राउंड में चल रहा है सुबह से रात तक। मैंने कहा यार ये चल क्या रहा है यहाँ पर। कहते यही होता है भाई टेक में, आप जब काम कर रहे हो दैट इज द लाइफ। मैंने कहा छुट्टी नहीं मिलेगी? कहते मुश्किल है, ये है, जब हम यू नो इट्स इट्स क्वाइट टेक्निकल, इट्स क्वाइट हार्ड। तो भैया माई हैट्स ऑफ टू ऑल द पीपल वर्किंग इन टेक इंडस्ट्री। टेक इंडस्ट्री से याद आया, आज आई केम अक्रॉस दिस रियली अमेजिंग वीडियो। क्रिएटर का नाम भी मैं बोलती हूँ आपको, सो इन केस यू वॉन्ट टू सी इट यू कैन गो फाइंड आउट। इट्स कॉल्ड फोकिंग देसी, FOLKING देसी, DESI, एंड इट वॉज बेसिकली दीज 5 or 6 मेटा एम्प्लॉयज। दिस इज एट द मेटा ऑफिस बाय द वे, एंड दे आर गोइंग फुल ऑन विद अ भंगड़ा। यू नो इट वॉज द मोस्ट अमेजिंग थिंग, इट्स लाइक भंगड़ा पार्टी इज हैपनिंग एट मेटा एंड हु केयर्स अबाउट द रेस्ट। इट्स ऑल अबाउट यू कैन जस्ट हैव फन एंड ब्रेक अ लेग एंड डांस। एनी वेज, इनफ ऑफ माई टॉकिंग, अब टाइम आ गया है जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था गिव अवे का। एग्जैक्टली, तो आज का गिव अवे मेरा, आप अगर आप मेरा शो सुन रहे हैं तो आपको पता ही है कि मैं एक बड़े इंटरेस्टिंग सा एक गाना चलाती हूँ, उसका आपको बताना है विच इज़ द हिंदी सॉन्ग विच साउंड्स एग्जैक्टली और वेरी क्लोज टू इट। ओके, कौन सा ऐसा हिंदी सॉन्ग है जो उस ओरिजिनल गाने से कॉपी करके बनाया गया है। ठीक है, तो आर यू रेडी? फोन नंबर्स डायल करके रेडी है मेरा फोन नंबर, जिसके पास फोन नंबर नहीं है मैं फटाफट से दोबारा से अनाउंस कर देती हूँ। 972-235-5555, एग्जैक्टली 972-235-5555। भैया डायल करते हुए रेडी रहना, आंसर भी पता होना चाहिए, ऐसे नहीं कि डायल है हमें कर दिया, वो बात करने के लिए बाद में कर सकते हैं। चल ठीक है, तो चलो ये गाना सुनते हैं, इट्स आइकॉनिक, देयर इज नो वे यू कैन गेट इट रॉन्ग।

0: This is the beginning of a really iconic Bollywood song from like the 70s. थोड़ा fighting वाला song है. और हमारी call आ चुकी है. Hi. One second, let me put you on air. Hi, you're on air. Can you hear me? Hello.
1: Hello.
0: Hi, can you hear me? You're on air.
1: Yeah.
0: Yes. First of all, tell me your name. पहले तो अपना नाम बताइए एंड दूसरा मुझे बताइए कौन सा गाना है जो इसको कॉपी करके बनाया गया है.
1: मेरा नाम शुभम है और द हिंदी गाना वुड बी आ देखे जरा.
0: Yes, and we have a winner first time में. क्या बात है शुभम, congratulations, आप जीत चुके हैं. I'm gonna put you off air and then I'm gonna take your information. ठीक है. आप दूसरे नंबर से भी कॉल करें क्या? एक और शुभम आ रहा था मेरे बैकग्राउंड में. बट
1: नहीं,
0: टू मेनी शुभम्स ऑन द लाइन टुडे. व्हाट कैन आई से. ओके गाइस, यू एंजॉय द सॉन्ग जो मतलब जो हिंदी वाला वर्जन है. तब तक मैं शुभम का इन्फॉर्मेशन ले दी हूँ.

भाई वो गाना तो बहुत लंबा है, 7 मिनट का है, पर मुझे तो आपसे थोड़ी बहुत बातें और करनी है, तो इसलिए हम गाने को थोड़ा कट शॉर्ट करते हैं और थोड़े अनाउंसमेंट्स करते हैं, जो कि मैं पहले करना भूल गई यार। गिव अवे जो था वो था चंडीगढ़ बाइट्स का, तो शुभम कंग्रेचुलेशन फॉर विनिंग ए कढ़ाई पनीर और अ कढ़ाई चिकन फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन, ठीक है? और चंडीगढ़ बाइट्स में आपको स्पेशल थाली भी मिलती है फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे विथ एक्साइटिंग न्यू डिशेस दैट कीप रोटेटिंग फॉर लंच ओनली, तो मेक श्योर यू गो फॉर द लंच सर्विस। समटाइम्स दे हैव लाइक रियली अमेजिंग डिशेज, यू नो, एंड दे आर लोकेटेड ऑफ ऑफ मैकडर्मट ड्राइव इन एलन। सो विजिट चंडीगढ़ फॉर डिटेल्स, एंड प्लीज मेक श्योर कि आपने ये पहले गिव अवे नहीं जीता था। अब तो खैर आपने जीत लिया, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस महीने जीत चुके हैं तो अगले महीने कॉल करिएगा, ठीक है? ऑल राइट, क्योंकि सबको फेयर चांस देना चाहिए ना, ऐसा कैसा है। एनी वेज गाइज, दिस नेक्स्ट पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय कनेक्टिंग अमेरिका। विथ कनेक्टिंग अमेरिका यू कैन टर्न योर बिजनेस एक्सपेंसेस इन टू ए पावरफुल इनकम स्ट्रीम थ्रू ए यूनिक इंश्योरेंस बेस्ड स्ट्रेटजी डिजाइन टू बूस्ट योर बॉटम लाइन। दैट्स राइट, साइड हसल यू गाइज। इट डजंट स्टॉप देयर, दे ऑल्सो हेल्प ओन होम ओनर्स पे ऑफ देयर मॉर्गेज इन 10 ईयर्स और लेस। सो डोंट वेट, call James today at 321-888-7345 or visit connectingamericafinancials.com and start turning your daily expenses into income. Ooh, Connecting America, where business owners can turn costs into cash. Henna and guys, hum log aaj bahut sari mazedar baatein kar rahe the about marrowing some bahanas to our bosses and officers for that extra one day ki ya half day ki chutti. Mein to half day ki bhi mari hui hai aise karke bahane maar ke. But anyways, अगर आप गिव अवे नहीं जीते हैं मेरे शो वाले आवर पे, कोई बात नहीं, ट्राई करते रहना। हाँ, डोंट गिव अप, कभी ना कभी आपका भी फोन लगेगा यहाँ पे, ठीक है? मेक श्योर इट हैज टू बी द फर्स्ट वन जिनको जिन्होंने क्वेश्चन का आंसर कर दिया। और मैं थोड़े से मुश्किल मुश्किल भी पूछती हूँ, बिकॉज आई लव अ लिटिल चैलेंज एंड आई नो माई ऑडियंस ऑल्सो लव्स अ लिटिल चैलेंज। इसी से ये गाना सुनिए, आई थिंक इट्स सो अप्रोप्रिएट। कोशिश करते रहना, कॉल करते करते कभी ना कभी नंबर लग ही जाएगा। ओके okay?

0: हाँ जी भाई, तालियां बजाओ साथ में। Yes, that's moment and going. Anyways, guys, यार मुझे तो बड़ा मजा आता है कि आप मुझे इतने प्यारे प्यारे कॉल्स करके इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस दे रहे हैं। आई एब्सोल्युटली लव इट। अभी मुझे कॉल आई मलिक जी की, जो मेरा शो बहुत पहले भी, मतलब पिछले हफ्ते भी सुन रहे थे, एंड ही इज बिन अ रेगुलर। तो कहता है ये आप वही लड़की है ना जो दिल्ली से आई है। मैंने कहा हाँ जी मैं तो वही हूँ। कहता मुझे आपका शो इतना अच्छा लगता है, मुझे ना वैशाली जी को ईमेल करना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल करिए ईमेल, बिकॉज आप ईमेल करेंगे तो भाई मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि वो मुझे आके बोलेंगे कि भाई आपके फैंस हमें ईमेल कर रहे हैं, तो मे भी शायद मुझे थोड़ा और फायदा हो जाएगा मेरे जॉब में। एनीवेज गाइस, आज हम मजेदार सी बातें कर रहे हैं कि आपने अपने ऑफिस में ऐसे कौन से बहाने मारे लाइफ में ताकि आपको छुट्टी मिल जाए। तो भाई एक रेडिट थ्रेड मैंने जो पढ़ा, दिस पर्सन वेंट वे टू फार, मतलब इतनी डेडिकेशन। तो उन्होंने पता क्या किया, शी सेड आई पुट अ बुरीटो ऑन माई हेड, शी वेंट टू टाको बेल ओवर एवर शी बॉट हर बुरीटो, ही और शी आई डोंट नो, दिस पर्सन वेंट टू दिस रेस्टोरेंट, बॉट अ बुरीटो, गर्मा गर्म बुरीटो खरीदा, फिर उन्होंने उसको बुरीटो को सर पे लगाया, और दिस वॉज ड्यूरिंग कोविड टाइम। उसके बाद अपना टेम्परेचर मेजर किया और उनका टेम्परेचर आ गया 104। फिर उसकी फोटो लेके अपने बॉस को भेज दिया, कह तो देखो भाई मेरे को 104 बुखार है, कोविड चल रहा है बाहर, मैं नहीं आ रहा काम पे, आ रहा डजंट मैटर, हम तो नहीं आ रहे काम पे, तो हमें छुट्टी चाहिए। तो उस टाइम पे ना कोविड नया नया आया था, एंड यू नो तब उस टाइम कोविड का कितना क्वारंटीन था, आई थिंक 10-15 दिन आपको क्वारंटीन रहना पड़ेगा, नहीं तो यू स्टिल कंटेजियस एंड स्टफ लाइक दैट, है ना, जिनको याद है उनको पता ही होगा। तो फिर इन्होंने बोला कि ठीक है, ऑफिस वालों ने उनको 10 दिन की छुट्टी दे दी, एंड शी वेंट टू वेगस विद हर फ्रेंड्स ड्यूरिंग कोविड। वाह, इसको बोलते हैं ऐसे बहाने मारने चाहिए छुट्टी में। अब तो कोविड के लिए भाई कोई एक्सक्यूज़ नहीं मिलेगा आपको, अभी सबको कोविड हो चुका है ऑलरेडी, और सब उसको ओवरकम भी कर चुके हैं। अब बोले कोई बात नहीं, जुकाम ही है, 4 दिन मतलब बुखार उतर जाएगा तो ऑफिस आ जाना, अब ऐसे ही होता है बहाना, नो बिगी। एनीवेज गाइस, एक गाना सुनिए फिर हम वापस आते हैं। आप मुझे कॉल करके अपने बहाने बताइए यार, आपने कौन से ऐसे बहाने मारे लाइफ में। और बाय द वे, जिन लोगों को मेरे से कनेक्ट करना है आउटसाइड ऑफ द रेडियो शो, जो मेरे से ज़्यादा और बातें करना चाहते हैं, और यू वॉन्ट टू शेयर समथिंग रियली फन एंड इंटरेस्टिंग, यू कैन ऑल फाइंड मी ऑन इंस्टा एज इपी।
1: Mark Hill is the leader Frisco needs to move forward together. As a former school board president, Mark has a proven record of integrity, fiscal responsibility and bringing people together. He values the vibrant contributions of our Asian and Indian communities, recognizing that our strength lies in our diversity and collaboration. Mark rejects divisive rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety, and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for Mayor. Let's build a stronger Frisco together.
2: Paid for by Mark Hill for Mayor.
3: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
4: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
5: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
6: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
7: इतना सब और प्राइस?
6: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन, समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
8: मैं हीरो।
9: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
10: Oh.
8: अरे भाई वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट।
10: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन। चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर। लॉसिन ट्रैवल फॉर नियरली 30 years, लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स, वेकेशन पैकेजेस, क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस। लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री। कॉल नाउ 214-631-2458 और विजिट lawsontravel.com।
11: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
12: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
11: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
12: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
11: ये क्या होता है?
12: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
13: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
14: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.

भाई गंद तो हम नहीं फैलाएंगे। गुलाबो गुलाबो, ये लास्ट में तो उन्होंने बोला गुलाबो जरा गंद फैला दो। भाई गंद नहीं फैलाएंगे हम, इत्र फैलाएंगे। क्यों? हाँ, इत्र की खुशबू, प्यारी प्यारी भीनी भीनी सी मीठी मीठी सी खुशबू फैलाएंगे, है ना भाई। आज हम बात कर रहे थे, व्हाट इज दैट बहाना दैट यू मारो टू योर बॉस फॉर वन छुट्टी। भाई आपने और क्या बहाने मारे हैं? आप मुझे कॉल करके बताइए ऐसे कोई बहाने, एक्सक्यूज जो मैं भी मार सकूं कभी। पर यार अगर मैंने बहाने मार लिए तो फिर रेडियो कौन कौन करेगा? फिर अगर रेडियो पे कोई नहीं आएगा तो आप लोग ऐसे मेरे साथ प्यारी प्यारी बातें कैसे करेंगे? और मुझे तो इतना अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करने के लिए। अभी इसके पहले जो मैं बोल रही थी, अनफॉर्चुनेटली वो ब्रेक में चला गई क्योंकि मैंने क्लॉक नहीं देखा। ओ माई गॉड, सो सिली ऑफ मी। लेकिन इफ यू गाइज वॉन्ट टू कनेक्ट विथ मी, जो बहुत लोग मुझे आके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कॉल पे दैट दे वॉन्ट टू टॉक टू मी आउटसाइड, भैया आउटसाइड तो भाई फोन नंबर तो हम नहीं दे सकते ऐसे करके, इट्स अ लिटिल प्राइवेट। हाउ एवर, अगर आपको मेरे से थोड़ी बहुत बातें करनी है एंड यू वॉन्ट हैव ए यू नो ए कॉन्वर्सेशन, देन प्लीज रीच आउट टू मी ऑन फेसबुक या इंस्टाग्राम। फेसबुक पे मेरा नाम है इपी रॉय, IPPIROY, और इंस्टाग्राम पे मेरा नाम है ip.music। या फिर आप लिंक्डइन पे भी मुझे ढूंढ सकते हैं। वैसे लिंक्डइन पे मैं ज़्यादा उतनी एक्टिव हूँ नहीं, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ बोरिंग यू गाइज, बट इफ यू वॉन्ट अ फाइंड मी ऑन लिंक्डइन, वहाँ पे भी हम हैं। बट एनी वेज, हम आज बहाने मार रहे थे। हम बहाने तो नहीं मारे थे हम बहाने शेयर कर रहे थे। आपने, आपको उसमें से कोई बहाना पसंद आए चुरा लेना, आई डोंट माइंड इट। यू कैन टोटली बोरो इट एंड देन यू डोंट इवन हैव टू क्रेडिट मी फॉर इट, ओके। बट एनी वेज, दिस पर्सन सेज, उन्होंने पता क्या बहाना मारा, उन्होंने ये किया, कहते हैं खुद ही अपनी टायर की हवा निकाल दी, ठीक है, उसके बाद एक फोटो ली ताकि प्रूफ भी मिल जाए, फिर अपने बॉस को वो भेजा कि भैया देखो आई हैव अ फ्लैट टायर, और उसके बाद खुद ही उसमें हवा भी भर दी ताकि छुट्टी भी मिल जाए। बोला कि भैया आई हैव अ फ्लैट टायर और मैं गाड़ी में पंचर ठीक करा रही हूँ, मैं नहीं आ सकती काम पे। और फिर फोटो वगैरह भेज दी और उसके बाद फिर खुद ही हवा भर ली उसमें। वेरी स्मार्ट, वेरी क्लेवर। भाई आपको फोटो भेजनी पड़ती अपने बॉस को, वो तो मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गया है ना। बट अगर कई बार क्या होता है ना, मैंने एक बार तो मैंने भी ये ट्राई किया हुआ है। तो एक्चुअली वो मेरे बॉस नहीं थे, वो एक्चुअली मेरे क्लाइंट्स थे, एक स्टूडेंट की फैमिली थी। बट उस टाइम मैं ना आई वॉज रियली रियली रियली रियली रियली रियली रियली टायर्ड, और मुझे ना बस वो सिखाने का मन ही नहीं कर रहा था। सो इंस्टेड ऑफ कैंसलिंग स्ट्रेट आउट, मैंने कहा नहीं यार अभी कैंसिल कर दूंगी, लास्ट मिनट पे बहुत बुरा लगेगा। तो मैंने बोला कि नहीं भाई, मेरे टायर की हवा वैसे कम थी, तो मैंने बोला कि नहीं यार हाई आई एम सो सॉरी, आई हैव अ फ्लैट टायर, आई कॉन्ट मेक इट फॉर द लेसन टुडे, आई एल गिव यू अ मेकअप लेसन इसी हफ्ते दोबारा, मतलब विल रीस्केड्यूल दिस। तो कहते ओ नो आर यू ओके, आर यू सेफ, हम आ जाते हैं तुम्हें पिकअप करने। मैंने कहा ओ नो, ये तो मेरा बहाना फेल होने को आया। कई बार आपके बॉसेस इतने अच्छे होते हैं कि वो खुद ही ऑफर कर देते हैं, विल कम एंड पिक यू अप। सो बहाना मारो, आगे देख कर मारो कि कौन है तुम्हारे सामने, ये बहाना चलेगा कि नहीं चलेगा। एनी वेज, दिस इज अ रिक्वेस्ट। मैं, आपने अपना नाम नहीं बताया या फिर मैं लिखना भूल गई, कोई बात नहीं। पर उन्होंने रिक्वेस्ट किया नीति मोहन का गाना तू है तो ये गाना आपके लिए।

यार वो गाना तो बहुत ही ब्यूटीफुल था. मैंने पहले कभी ये वाला गाना नहीं सुना, बट थैंक यू मलिक जी फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू दैट सॉन्ग. मलिक जी मेरे रेगुलर लिसनर हैं, उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया और फिर उन्होंने, हमने ना बड़ी अच्छी बातें भी शेयर करी फ्रॉम उन्होंने बोला कि आप सुपर से भी ऊपर हैं. वाह वाह वाह. वो जो शिल्पा शेट्टी जो डायलॉग नहीं बोलती है वैसे. तो थैंक यू मलिक जी, थैंक यू मुझे सुपर से भी ऊपर बोलने के लिए. मुझे बड़ी खुशी हुई, थैंक यू सो मच. और हमने डांस इंडिया डांस के बारे में बड़ी सारी बात करी. भाई आप लोगों को याद है डांस इंडिया डांस कितना सही रियलिटी शो हुआ करता था? एंड आई वॉज लाइक सच अ बिग फैन. मतलब मेरे दोस्त भी मुझे बोलते ना कि चल यार लेट्स गो पार्टी समवेयर. आई एम लाइक नो गाइज, टीवी पे ना डांस इंडिया डांस आ रहा है, मेरे को मिथुन चक्रवर्ती के कमेंट्स देखने हैं. एनीवेज गाइस, ये गाना एंजॉय करिए एंड देन लेट्स कम बैक एंड टॉक अ लिटिल मोर. ऑल्सो मेरे को अभी एक कॉल आ रही थी, अनफॉर्चुनेटली बातों के बीच में हम वो कॉल आंसर नहीं कर सकते हैं, तो आप दोबारा मुझे कॉल करिए एंड आई विल डेफिनेटली आंसर योर कॉल.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला।
3: ओ हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
6: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे के टू ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
5: के टू ड्राइव मतलब
6: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लव फील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब के टू ड्राइव हैंडल करता है।
5: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
6: 100%
7: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट के टू ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट के टू ड्राइव डॉट कॉम और कॉल 214-814-0402 Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
8: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
9: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
10: क्या मतलब?
11: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
11: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
10: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
12: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: भूख लगी
14: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
15: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
9: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी।
16: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
17: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
18: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
19: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
18: That magic removal ho. Love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
19: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn. Samasya ka पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
2: भाइयों, बहनों और दोस्तों, साथियों, सहेलियों, सखियों, सब जो भी है, जो भी कैटेगरीज में वर्ड्स है, सारे डाल दो एक साथ। कैसे हैं आप? दिस इज द लास्ट आवर, इस पूरे हफ्ते का मेरा आखिरी घंटा, फिर मैं वापस आ जाऊंगी मंडे को, फिर अपनी बकवास लेके। और हम बात कर रहे थे आज कि आपने ऐसे कौन से झूठ बोले हैं, बहाने मारे हैं ऑफिस में छुट्टी मारने के लिए। हाँ जी, मैंने तो बहुत मारे हैं जो मैं पहले ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, तो रिपीटेड इन्फॉर्मेशन नहीं करेंगे। पर आपने क्या बहाने मारे हैं? मतलब देखो, गर्मियों का मौका तो आ रहा है, गर्मियों का मौका आ चुका है, इनफैक्ट आ चुका है। अगर आपको बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, उसके लिए वीकडेज पे एक दिन छुट्टी मार लेना यार, क्या फर्क पड़ता है? इट्स फॉर द किड्स, व्हाई नॉट? एक दिन छुट्टी मारने से क्या की फर्क पैंदा है यार। एनीवेज, तो एक बंदी है या बंदा है, आई डोंट नो, वो स्पेसिफाई नहीं करते, लेकिन उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने बोला कि आई पोस्टेड, शी फाउंड अ कोविड टेस्ट पिक, ठीक है, कोविड जब टाइम चल रहा था ना, उसका किसी ने एक फोटोग्राफ ऐसे ही ऑनलाइन, ऐसे ही स्क्रीनशॉट ऐसे ही शेयर कर दिया फेसबुक या कहीं पे, उसको मिल गया, तो उसने ना उसी की स्क्रीनशॉट ले ली, एंड देन शी सेड आई टुक समवन एल्सस कोविड टेस्ट स्क्रीनशॉट एंड आई सेंट इट टू माय बॉस एंड आई गॉट 14 डेज की छुट्टी। वाह, वी हैव अ कॉलर एंड लेट्स सी इफ वी कैन हैव दिस कॉलर ऑनलाइन। हाय, यू आर ऑन एयर, कैन यू हियर मी? हाय, यू आर ऑन एयर, कैन यू हियर मी?
13: यस।
2: Hi.
13: Good evening. How are you?
2: Good evening. Good. How are you?
13: Good. On air हूँ मैं।
2: आप air हैं? अगर आप air पे नहीं होना चाहते तो मैं आपको off air भी डाल सकती हूँ, तो मैं गाना बजा दूँगी फिर तब तक के लिए।
13: नहीं, कोई बात नहीं। आप क्या, आपका question क्या था?
2: मेरा
13: बहाने छुट्टी के लिए।
2: हाँ, मेरा question था, आज हमारा series है, आज हमने जो segment किया है उसका है कि आपने ऐसे कौन से बहाने मारे हैं ऑफिस से छुट्टी मारने के लिए। तो कई लोगों ने बड़े रिडिकुलस से बहाने दिए हैं वगैरह वगैरह, तो आपने कुछ ऐसा मजाकिया किया हुआ है कि ऐसे बहाने मारे हुए हैं ऑफिस से?
13: मेरा थोड़ा सा उल्टा है।
2: अच्छा,
13: मैं जब जॉब करती थी तो उस वक्त आई वाज सिंगल मदर इन इंडिया, तो मेरे बेटे के लिए मुझे बहुत सारी छुट्टियां लेनी पड़ती थी।
2: हाँ।
13: वो मेडिकल के लिए ना, तो आई हैव टू गो टू हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, टेस्ट करने, ये सब।
2: हाँ।
13: तो मैं है ना वो टाइम में जाती थी, और छुट्टियों में जब छुट्टी होती थी संडे जैसे,
2: हाँ,
13: तो उस वक्त मैं ऑफिस जाती थी। जी, फिर मेरे पास है ना छोटी सी मोटर बाइक थी।
2: हाँ।
13: तो वो मैं किसी किस्म का बहाना नहीं चलता था, जैसे ऑटो स्ट्राइक है या बस स्ट्राइक है या पेट्रोल नहीं है, कुछ नहीं है, इस तरह का वो कुछ नहीं होता था। तो आई वाज ऑलवेज प्रेजेंट इन माय ऑफिस दैट टाइम। तो उल्टा ऑफिसर्स मुझे बोलते थे, अरे अम्मा आप क्यों आए, सब नहीं आए ना, आप क्यों आ गए, जाइए बोलते थे।
2: चलो, एटलीस्ट यू गॉट रियली गुड ऑफिस पीपल, यू नो, हु वर वेरी सपोर्टिव। वो आई फील लाइक आजकल के जमाने में वो नहीं मिलता है। मेरा एक फ्रेंड है, उसकी भी बेटी की मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही है, उसके ऑफिस ने उसको छुट्टी नहीं दी, इवन दो ही सेड कि माय सन इज इन द हॉस्पिटल, ही इज हैविंग अ सर्जरी, बट पुअर गाय डिड नॉट गेट छुट्टी, अनफॉर्चुनेटली।
13: जी, मेरा बेटा सफी है, माय सन इज सफी, सो ही इज अ सेरिब्रल पाल्सी है, उसको सेरिब्रल पाल्सी था, एपिलेप्सी था, सो आई ऑलवेज ना हैव टू बी अटेंशन विद हिम। तो मुझे ऑफिसर्स बहुत अच्छे, स्टाफ भी बहुत अच्छा था, ऑफिसर्स अच्छे थे, एंड मैं फिर अपना वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली थी। बार बार एक्सेस आना जाना मुश्किल होता ना उस बच्चे को साथ लेके जाने के लिए, तो मैं थोड़ा सा उल्टा था। तो आई स्टिल रिमेम्बर ऑल द गोल्डन टाइम आई हैड स्पेंट इन माय ऑफिस, एंड आई वर्क इन कलेक्टर ऑफिस फॉर 20
2: थैंक यू फॉर शेयरिंग 27
13: इयर्स या 27 इयर्स आई वर्क इन गवर्नमेंट ऑफिस।
2: चलिए,
13: मैं बस थोड़ा सा ये बोलना चाह रही थी, थोड़ा ऐसा भी होता है, थोड़ा वैसा उल्टा भी रहता है।
2: वेल, हमारी बेस्ट विशेस सफी के साथ, सो आई वी होप दैट ही फील्स रियली वेल एंड वी होप एवरीथिंग गोज वेल विद हिम।
13: हमें सफी का
2: रिक्वेस्ट बजाना बहुत अच्छा लगता है। सफी, गाइस, दोज हु डोंट नो, सफी इज वन ऑफ आवर रेगुलर लिसनर्स फॉर फन एशिया।
13: ही इज 39 ईयर ओल्ड नाउ।
2: यस, absolutely. Thank you so much. Yeah. And please enjoy this next song. Thank you.
13: Yeah, sure. Thank you. Bye. Bye-bye.

गाइज, दिस इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट ऑल टाइम मूवीज. क्वीन जो थी ना, इतनी लेजेंडरी मूवी है. आई फील लाइक मेरा कभी भी मूड खराब होता है ना, आई मीन समटाइम्स इफ आई एम फीलिंग डाउन एंड लो एंड आई एम लाइक रियली ओके, आई नीड अ पिक मी अप, लाइक समथिंग मोटिवेशनल टू वॉच, आई गो एंड वॉच क्वीन. मतलब हर बारी आई वॉच इट आई एम लाइक यस गर्ल, यू कैन डू दिस. तुम वो पेरिस से कुर्ता खरीद के पहनो, कुर्ता ही पहनना है लेकिन पेरिस से खरीद के पहनो और दोस्त बनाओ और रॉक शो में जाओ, भाड़ में जाए उस लड़के को जिसने तुम्हें शादी के एक दिन पहले छोड़ दिया था. ये सब फालतू चीजें हैं वैसे भी, ये सब में नहीं पड़ते. गो एंजॉय लाइफ. एंड आई लव दैट, आई लव द वे द मूवी टर्न आउट. इट्स सो मोटिवेशनल एंड सो इंस्पायरिंग. एनीवेज गाइज, कभी आगे बढ़ने से पहले लेट मी गिव यू अ लिटिल अनाउंसमेंट. दिस नेक्स्ट पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटैक्स. एजी ओ जी लो जी सुनो जी, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म्स इन द यूएस. दे ऑफर इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस. दे आर ट्रस्टेड, एफिशिएंट एंड गेट यू रेडी फॉर द फ्यूचर. सो कॉल 469-942-9888 और विजिट agfintechs.com. भाई कितने बजे हैं? 9:14 बज चुके हैं और हमारे पास सिर्फ 45 मिनट्स है टू लिसन टू लॉट्स ऑफ अमेजिंग म्यूजिक. और कभी आपका यू नो एवर हैव यू एवर हैड दैट मोमेंट वेयर देयर इज आई कॉन्टैक्ट एंड यू नो यू लुकिंग एट द अदर पर्सन अक्रॉस द रूम. कभी या तो आपके पार्टनर के साथ हुआ है, यू नो आपकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी है कि आप एक दूसरे की तरफ देखते हो. कभी यू नो पार्टी यू नो विच इज एब्सोल्युटली डिजास्ट्रस एंड बोरिंग एंड यू रियली वॉन्ट गेट आउट ऑफ देयर, लाइक यू लाइक अरे यार पता नहीं कहाँ आगे फंस गए. एंड देन यू लुक एट योर पार्टनर अक्रॉस द रूम और यू मेक दिस आई कॉन्टैक्ट. हाँ वैसे होता है, बट दैट्स सम नेक्स्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स. आई फील लाइक वो एक नेक्स्ट लेवल ऑफ यू नो इंटीमेसी होता है अपने पार्टनर के साथ. भाई मेरे को तो अभी तक किसी के साथ हुआ नहीं, पर अपने दोस्तों के साथ बड़ा हुआ है. आई एम लाइक यार चलो चलो यहाँ से कटते हैं, अब यहाँ से हो गया हमारा टाइम खत्म. तो ये गाना उस सिचुएशन के लिए है. हाँ.

प्लीज गाइस, जब ब्रेक से आएंगे तो हम वो गाना सुनेंगे, लेकिन तब तक के लिए हम थोड़ी देर में ब्रेक में जाने वाले हैं, तो आप जितना हो सके उतना सुनिए।

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
1: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
2: हाँ।
1: घर रिलोकेट करनी है?
2: हाँ।
1: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
2: हाँ भाई हाँ।
1: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
3: डॉक्यूमेंट शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
4: Coughing or sneezing at home, your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
5: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
6: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
7: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
8: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
9: Hi, this is Salim Merchant from Salim Suleiman, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

अगर आपका भी दिल तन्हा है तो ये अगली पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके लिए है. आई जस्ट केम अक्रॉस दिस, बट आई थिंक इफ यू आर तन्हा एंड विद अ वेरी तन्हा दिल, देन दिस माइट बी द इवेंट दैट यू आर लुकिंग फॉर दिस जून. अगर आपकी भी शादी की उम्र निकल रही है तो धीरे धीरे आप जाइए, कुछ करिए यार. बिना बिना ट्राई करे कैसे होगा. देर इज ए रियली हिप एंड हैपनिंग इंडियन देसी सिंगल्स मीट हैपनिंग, इंडियन मैच मेकिंग इवेंट हैपनिंग इन DFW ऑन June 28th. कहाँ पे हो रहा है ये मैच मेकिंग इवेंट? ये हो रहा है June 28th to 2026 एट द मैरियट इन एंड स्वीट्स इन कोरिंथ नियर साउथ डेंटन एरिया. ओके, सो इट्स नॉट मेन स्ट्रीम डैलस, इट्स अ लिटिल बिट अवे फ्रॉम डैलस, इट्स टूवर्ड्स डेंटन कोरिंथ में हो रहा है. एट द फेयरफील्ड होटल बाय मैरियट इन एंड स्वीट्स, एंड दिस इज फॉर ऑल एज ग्रुप्स. तो भाई इफ यू आर इन योर 20s एंड यू हैवन बीन एबल टू मीट एनी वन, और इन योर 30s और इन योर 40s और इवन इन योर 50s, यस गाइज, दे आर डूइंग मैच मेकिंग फॉर इवन 50-year-olds. इफ यू आर डिवोर्स्ड एंड यू फाइंड योर सेल्फ तन्हा एट दिस एज एंड यू स्टिल वॉन्ट अ लाइफ पार्टनर टू गो एंड मीट समवन, देन दिस इज अ गुड टाइम. इट्स एन इंडियन मैच मेकिंग इवेंट, सो यू शुड चेक आउट इन देयर इंस्टाग्राम पेज. It's called Indian underscore Desi underscore Singles underscore Meet. Very, very not hard to remember. And I think you have to sign up before so that they can set you up with the right kind of matches. So they will create the matches for you. It's like a speed dating event. अगर आपने speed dating करी है कभी, it used to be quite a big thing back in the days, at least here in the US, कि एक लाइन से सारे टेबल्स पे कपल्स नहीं सिंगल्स बैठे हैं, और आप धीरे धीरे यू गेटिंग अप, यू गोइंग टू द नेक्स्ट टेबल, देन यू गेटिंग अप एंड गोइंग टू द नेक्स्ट टेबल. यू गेट लाइक मे बी 3 मिनट्स और 4 मिनट्स टू कॉन्वर्स एंड यू नो हैव अ लिटिल चिट चैट एंड फिगर इट आउट. सो इफ यू वॉन्ट टू डू दिस, देन दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज डेटिंग एप्स आर टेरेबल. ट्रस्ट मी, आई हैव ट्राइड इट, इट इज नॉट द मोस्ट फन वे टू मीट पीपल. And because now we are all dependent on social media, everybody does remote work. Mostly everyone does remote work. Mostly you're basically talking to a screen. So where do you meet people? People don't want to approach in cafes or gyms or any other public places anymore because everybody is scared. I mean, because सबको वो जो कॉन्वर्सेशन वाली जो स्किल होती है ना, किसी से आप खड़े होके चल के बात करना शुरू कर दिया, वो कॉन्वर्सेशन स्किल लैक हो गई है लोगों की, क्योंकि सब स्क्रोल करते रहते सारे दिन बैठ के. दैट इज़ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. सो इफ यू फाइंड योर सेल्फ इन अ सिचुएशन लाइक दैट एंड यू डोंट नो हाउ टू मेक अ कॉन्वर्सेशन, देन मे बी यू नीड सम एक्सटर्नल हेल्प. सो गिव इट अ शॉट, यू नो. एनीवेज, I'm going to play you a beautiful song. This is from the MTV Unplugged series. Agar aapko MTV Unplugged nahi pata, it's kind of like the Coke Studio format. Live performances hai, pre-recorded kuch bhi nahi hai. Matlab live ko unhone baad mein khair mix kiya hai, post-production kiya hai. लेकिन जो अनप्लग्ड का मतलब क्या होता है, सिर्फ अकूस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स लेके बजाते हैं. दैट मीन्स देर आर नो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर बीइंग यूज, नो इलेक्ट्रिक गिटार, नो इलेक्ट्रिक बेस, नो इलेक्ट्रिक पियानो, ऑर्गन वगैरह वगैरह, सब अकूस्टिकली यूज करते हैं. एंड इट्स ब्यूटिफुल. आई केम अक्रॉस दिस परफॉर्मेंस ऑफ सोनू निगम, और मतलब वो इतने दर्द के साथ उन्होंने ये गाना गाया ना, मुझे तो रोना आ गया. मतलब मैं सुनते सुनते उनकी आवाज़ में इतना दर्द है भाई, किसी की आवाज़ में इतना दर्द कैसे हो सकता है. मतलब आई एम वॉचिंग द लाइव वीडियो, आज दोपहर को ही मैंने सुना, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, इट्स हार्ट रेंचिंग. सो आप भी इंजॉय करिए, आपको भी मैं रुलाऊंगी, मैं रोई तो आप भी रोएंगे.

ये गाना मैं इसलिए गा रहा हूँ क्योंकि इस गाने के लिरिक्स राइटर मेरे बहुत ही प्रिय मित्र और बहुत ही गुणी सोचने वाले अब से कुछ एक महीने पहले दुनिया को छोड़ कर चले गए एट द एज ऑफ 42 अजय झिंगरन. आई ऑलवेज मिस हिज आईज हिज स्पिरिट. दिस इज माई ट्रिब्यूट टू अजय झिंगरन.

हाय गाइस, वी आर इन द लास्ट 8 मिनट्स. पता है मैं क्या सोच रही थी अभी? इतने सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गाने बजा के मुझे ये ध्यान आया कि जितने भी प्यारे गाने हैं, जो रिलैक्सिंग गाने हैं, वो सारे 7 मात्रा की ताल में है. वो ये वाला गाना भी, बावरा मंदिर रा, वो भी एक दो तीन, एक तो 1 2 3, 1 2 1 2, तो वो 7 होता है. इसके पहले मैंने क्या बजाया, अभी मुझ में कहीं, है ना, वो भी 7 मात्रा में, ताकिट ताका देमी, ताकिट ताका देमी. भाई कितने सारे गाने हैं 7 मात्रा की ताल में और इतने प्यारे लगते हैं. आई लव इट. इसको हम म्यूजिकल टर्म्स में बोलते हैं ऑड टाइम सिग्नेचर्स. पर अभी हम उतना म्यूजिक नर्ड के म्यूजिक थ्योरी में नहीं जाएंगे. आप ये नेक्स्ट वाला गाना एंजॉय करिए. दिस इज़ फ्रॉम द मूवी दिल चाहता है. मुझे ये गाना बहुत पसंद था. इनफैक्ट पसंद है. इट्स वेरी कामिंग. एंड वन आई वॉज लाइक क्यूइंग दिस सॉन्ग, तो उसके नीचे ना कॉमेंट्स पड़े आए थे, अक्षय खन्ना इज़ लाइक कम बैक इन टू द सीन. ऑल दीज ओल्ड एक्टर्स लाइक अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आफ्टर धुरंधर दे आर लाइक बैक. ओके, कि एवरीबडी इज़ बिन टॉकिंग अबाउट इट. सबसे अमेजिंग कॉमेंट पता है क्या लगा? क्योंकि ये दिल चाहता है का गाना मैं लगाने वाली हूँ, उसमें अक्षय खन्ना का एक बहुत बहुत सही कमेंट एक पर्सन ने कमेंट किया. वो था कि यू नो हाउ हिज रोल वाज, ही वाज दिस यंग गाय इन हिज 20s, अर्ली 20s, मिड 20s, आई डोंट नो, बट ही फॉल्स इन लव विद अ वुमन हु इज़ लाइक 20-25 years ओल्डर देन हिम. ठीक है, उनको वो जो एक बड़ी औरत के साथ उनके वो प्यार में पड़ जाते हैं बेसिकली, किसी ओल्डर औरत के साथ. और विच इज़ सच अ कॉन्ट्रोवर्शियल लव स्टोरी. आई फील लाइक हु इज़ बाय द वे अ सिंग हु एक्चुअली हैज़ अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम. बाय द वे द वुमेन हैज़ अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम. उनके दो बच्चे हैं. शी इज़ नॉट अलाउड टू सी हर डॉटर बिकॉज अपेरेंटली शी इज़ नॉट अ गुड कैरेक्टर्ड वुमन, बट ही स्टिल फॉल्स इन लव विथ हर. बट द वे ही पोर्ट्रेज दैट लव, इट्स सो प्योर. इट्स लाइक ही एक्चुअली रियली रियली केयर्स फॉर. इवेंचुअली शी डाइज बिकॉज ऑफ लिवर फेलियर. अगर आपने दिल चाहता है मूवी देखी है तो आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, और अगर नहीं देखी है तो मतलब यार वो बहुत ही प्यारी मूवी है, आपको देखनी चाहिए. एंड द कॉमेंट सेज, अक्षय खन्ना इज द ओनली पर्सन हु कैन प्ले सच अ कॉन्ट्रोवर्शियल लुक सो प्योर एंड डिसेंट. ही वॉज इन लव विद अ मच ओल्डर वुमन एंड नो बडी वॉज डिसगस्टेड बाय इट. लाइक द वे वेन वी सॉ द मूवी, नन ऑफ अस वर डिसगस्टेड बाय इट. वी कुड ओनली फील हिज ट्रू लव एंड दैट्स एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस. दैट इज वॉट शोज एन एक्टर्स ट्रू स्किल्स, यू नो, टू बी एबल टू शो समथिंग लाइक दैट विथ प्योरिटी. ऑल राइट गाइज, इनफ ऑफ मी टॉकिंग, नाउ टाइम फॉर सम म्यूजिक.

गाइज इसके बाद मैं जा रही हूँ. आई होप यू एंजॉयड माय म्यूजिक सिलेक्शन फॉर यू गाइज टुडे. चलो थैंक यू एवरीवन एंड कम बैक नेक्स्ट मंडे.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

104.9 FM Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Pure Fact Desi.

0: पिक्चर
1: अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
2: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो

0: नित्य की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।
1: आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के

0: प्रचंड आरंभ है प्रचंड।
1: देसी स्वैग, देसी स्वैग, बॉलीवुड टैग, फन एशिया, फन एशिया।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फोनीशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

104.9 FM turns up the heat in Dallas.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Desi cravings simple nahi hoti, unke levels hote hain. Level 1, mix veg pakora, light, crispy, perfect shuruaat. Level 2, masala omelet aur dahi bhalla, thoda nostalgia, thoda comfort. Level 3, amritsari kulcha platter ya pindi chana, full Punjabi mode on, fully loaded. Aur jab bhook ho next level, slow cooked keema matar, rich, bold. No compromises.
4: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.

एक रात वो गया था जहाँ रात रुक के, अब तक रुका हुआ हूँ वहीं रात रुक के। डोंट चेंज दैट डायल, कीप इट राइट हियर ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एशिया रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी इज योर रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डालस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

0: Thank you, brother. Thank you very much. Come on.
1: मुझे आज स्कूल में नहीं जाना है।
0: अरे क्यों?
1: नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता।
0: बेटी देखिए आप कुछ दिन यहाँ रहिए, आपको अच्छा लगने लगेगा। और भी तो बच्चे रहते हैं यहाँ।
1: मैं दिल्ली में नहीं रह सकता।
0: नहीं आपको यहीं रहना है हॉस्टल में कुछ दिन, समझे?
1: मैं आपके साथ

0: वेरी गुड। और ये कौन है?
1: ये मैं हूँ और मेरे पापा।
0: आपके पापा चश्मा पहनते हैं?

एवरीवन, यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनी शेयर रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा? डालस में सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनी शेयर रेडियो के साथ।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

तुम्हारे गम की डली उठाकर जबां पे रख ली है, देखो मैंने ये कतरा कतरा पिघल रही है, मैं कतरा कतरा ही जी रहा हूं।

रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी। देखना ये है कि संगीत की ये सवारी आपको कहाँ तक ले जाएगी। सुरों का सफर, आपका हम सफर। फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है. नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है. तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा. नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी जर रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर.

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

0: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस।
1: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGBT। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल धमाल, फन मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

तन्हाई में अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: 104.9 FM Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Pure Facts Desi.
1: और इस तरह बल्ली को भी अपनी रानी मिल गई, वीरे की गीत से वेडिंग हो गई और शादी में घोड़ी के सबसे आगे नाचे मामा जी और भांजा जी।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर
1: अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
2: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं,
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: ve hoy.
1: सॉरी
0: हम ठीक हैं।

0: तमाशे थिएटर भर देते हैं, इससे फिल्मों का भी फायदा हो जाता है।
1: तुम इस तमाशे में शामिल?
0: तुम्हारी जिंदगी के तमाशे में शामिल काफी है।

0: कुछ बदल गया है।
1: नहीं तो
0: आपकी आवाज में नहीं, आपके मन में।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फोनेशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
1: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
2: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
3: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
4: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
5: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
4: K2 ड्राइव मतलब
5: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
4: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
5: 100%
6: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402 Cato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
11: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338। myfamilyhomeloan.com इज पावर्ड बाय लोन फैक्ट्री, NMLS 2025289, लाइसेंस्ड मॉर्गेज ब्रोकर इन टेक्सास। ऑल लोन सब्जेक्ट टू क्रेडिट अप्रूवल, इक्वल हाउसिंग लेंडर।
12: अरे भाई, वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट।
13: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन। चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर, लॉसिन ट्रैवल। फॉर नियरली 30 इयर्स, लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स, वेकेशन पैकेजेस, क्रूज़ेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस। लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री। कॉल नाउ 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
14: Hi, this is Janvi Kapoor and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

0: together. He values the vibrant contributions of our Asian and Indian communities, recognizing that our strength lies in our diversity and collaboration. Mark rejects divisive rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety, and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for Mayor. Let's build a stronger Frisco together.
1: Paid for by Mark Hill for Mayor.
2: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
3: Excuse me. It's called being loyal.
2: It's called being predictable.
3: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
2: And what's so special at Neon Cactus?
3: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
2: Not bad.
3: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
2: Okay, this I didn't expect from you.
3: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
4: Is शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
5: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव।
6: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401, प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
7: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेंपल इन फ्रिस्को।
8: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
7: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
2: मामू, देखो क्या हो गया।
9: ओ, क्या हो गया?
2: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
9: ओए, जर्मन का कमाल है।
2: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
9: ओ, नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, VW और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं, और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623, कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
10: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
11: क्या मतलब?
12: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
12: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
11: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
13: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
14: Hi, this is Priyanka Chopra, and you're listening to Fun Asia Radio.
0: If you are just joining us, please receive my very warm welcome to the show. And as we get started with this hour, we'll make sure that you are caught up on this lovely Friday morning. It is today the 5th of June, and we're going to stay in the mid-80s through the weekend. But we have storms in our forecast. Some of you already may be seeing a little bit of rain. We do have waves of rain coming in later today, tomorrow morning, tomorrow afternoon, and it's all the way until Sunday morning also. Keep that umbrella handy.

0: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला।
3: ओह हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: I've been researching retirement planning.
6: Oh, really? Where?
5: Google, YouTube, a guy on TikTok.
6: Or you could just talk to Wealth Tactic.
5: What's the difference?
6: They create a real retirement strategy. Not just investments, but a plan for when your income stops.
4: Wealth Tactic. Because retirement needs a strategy, not a search bar. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
7: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
8: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
7: कहाँ?
9: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
8: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस One vibe.
10: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
11: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
10: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
11: वेट, व्हाट?
8: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
12: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
8: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
7: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
13: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
7: कैसे?
13: पेज 3 ईटरी?
7: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
13: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्ट एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
7: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
14: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
15: With over 25 years of lived experience, certified and accredited relationship coach Aarti Vedula helps individuals, couples, parents and hundreds of happy clients break unconscious cycles using NLP, EFT, hypnosis and mindset reprogramming. Book your free clarity call today at 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com. Mention Phanisha and get 50% off on your package. Thrive with Aarti. Helping you thrive from within.
16: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
17: I am Rahat Fateh Ali Khan and you are listening Radio Phanasia.

सेटिंग है, मैं तो

0: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
1: Calculating route, rerouting.
0: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
1: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
0: क्यों?
1: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत। Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
0: अच्छा तो सीधा वही ले चलो।
2: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट।
1: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
3: Mark Hill is the leader Frisco needs to move forward together. As a former school board president, Mark has a proven record of integrity, fiscal responsibility and bringing people together. He values the vibrant contributions of our Asian and Indian communities, recognizing that our strength lies in our diversity and collaboration. Mark rejects divisive rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for mayor. Let's build a stronger Frisco together.
4: Paid for by Mark Hill for mayor.
0: अरे भाई वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट।
5: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन। चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर। लॉसिन ट्रैवल। फॉर नियरली 30 इयर्स लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स, वेकेशन पैकेजेस, क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस। लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री। कॉल नाउ 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
10: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। Frisco में इतना प्यार मिलने के बाद पंचतारा इज नाउ ओपन एट अ न्यू लोकेशन इन एलन। वही स्वाद, वही जुनून और वही जबरदस्त मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विस। फेमस गर्मा गर्म पराठे, रोज ताजी बनी मिठाइयाँ और फुल सर्विस बार वेटिंग जस्ट फॉर यू। एंजॉय फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस और पंजाबी बफे एवरी डे। कैटरिंग सर्विस इज ऑल्सो अवेलेबल टू मेक योर एवरी सेलिब्रेशन मेमोरेबल। पंचतारा नाउ इन Frisco एंड एलन। मेंशन अपना पंजाब एंड गेट एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ऑन योर फर्स्ट विजिट।
11: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
0: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
12: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
13: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.

0: That's my show for today. I do hope you enjoyed it as much as I love bringing it to you from 7 to 10 every morning. And now, as I mentioned, Madhulika is coming on. You'll continue listening to the Fun Asia Network. It is 10 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. In association with Passion Health Primary Care, official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
3: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
4: जिस बात का डर था वही हुआ, लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन।
5: अरे कहना क्या चाहते हो?
6: डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आई, लैंग्वेज बैरियर का टेंशन भी, अब टेंशन का टाइम गया। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ मल्टी लैंग्वेज नर्सेज और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं। हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू प्रेफर। फ्रिस्को, प्लेनो, मैकिनी, अबरी, फ्लावर माउंट, अर्विंग, प्रॉस्पर, एना, एनी लोकेशन यू आर क्लोज टू, कॉल 214-666-6259 और विजिट passionhealthprimarycare.com। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ, योर लैंग्वेज, योर कम्फर्ट।
7: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहाँ माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को।
8: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
7: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
9: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
10: हाँ।
9: घर रिलोकेट करनी है?
10: हाँ।
9: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
10: हाँ भाई हाँ।
9: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
11: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. सिर्फ इंडिया नहीं, USA और दुनिया भर में trusted shipping और moving services. SFL Worldwide, हर मूव का perfect solution. Visit sflworldwide.com और call 1-800-691-2335.
12: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
13: Excuse me, it's called being loyal.
12: It's called being predictable.
13: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
12: And what's so special at Neon Cactus?
13: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
12: Not bad.
13: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
12: Okay, this I didn't expect from you.
13: Wait till you experience Neon Cactus.

0: Neon Cactus Fairview, Mexican cuisine with global influences.
1: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
2: सुनो कल बहुत काम है, पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
3: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
2: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
3: फूडिस्तान इन ऑबरी, everything they see, one place, one vibe.
4: Hi, this is Konkana Sen Sharma and you're listening to me on Fun Asia Radio.
5: Dallas ki dhadkan 104.9 FM, Fun Asia Radio.

वेलकम, नमस्कार, खुशामदीद, फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम पर मैं मधुलिका आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ. वेल, दिस इज मधुलिका एंड वैसे तो मैं लेकर आती हूँ जस्ट चिल, जहाँ करते हैं हम एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल. वेल, टुडे आई एम कवरिंग फॉर मी टू. मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12:30 बजे तक. स्टूडियो का नंबर रखें याद, 9722355555.

अलाउ अस टेकन फ्रॉम द मूवी माचिस. अच्छा, अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल गाइडेंस, कुछ फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए तो आपको नाम याद रखना है एजी फिनटेक्स. जी हाँ, दे ऑफर इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस. दे आर ट्रस्टेड, एफिशिएंट एंड गेट यू रेडी फॉर द फ्यूचर. आप एजी फिनटेक्स को कॉल करें, द नंबर इज 4699429888 और यू कैन विजिट agfintechs.com. विल दिस पार्ट ऑफ आर show is brought to you by AG Fintechs, one of the fastest growing tax firm in the US.

पर डैलस में भी कुछ रिम झिम वाली रुत ही चल रही है, और कभी अचानक से भरी धूप आ जाती है। एंड इस तरह की धूप छांव बारिश में तबीयत का थोड़ा ध्यान रखना बनता है। तो आपको बताऊं कि यू नो टेक्सास प्राइमरी केयर इज नाउ ग्रोइंग विद अ ब्रांड न्यू नेम एंड अ सेकेंड फ्रिस्को लोकेशन। जी हाँ, इंट्रोड्यूसिंग ल्यूनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। ल्यूनॉक्सी मेडिकल जो है ब्रिंग्स बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी, जैसे कि प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरेज हों, सिटी स्कैंस कराने हैं, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स एंड हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज, ऑल अंडर वन रूफ। सातों दिन खुला है, जी हाँ, ओपन 7 days a week फ्रॉम 8 AM to 8 PM, और यू कैन वॉक इन एनी टाइम। जी हाँ, नो अपॉइंटमेंट नीडेड। सो येस, फॉर 13 years टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक हैज़ प्राउडली केयर्ड फॉर आर कम्युनिटी। एंड रिमेंबर द न्यू नेम विच इज़ इन फ्रिस्को लोकेशन, ल्यूनॉक्सी मेडिकल, राइट? एंड द नेक्स्ट सॉन्ग, वेल दैट्स अ सॉन्ग रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एन।

Taken from the movie Betab, that was a request. Thank you so much for calling in. The next song is also a request. लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कई बार होता है कि कोई ओकेजन आ जाती है एंड आपको समझ नहीं आता कि क्या गिफ्ट दी जाए, राइट? सो इफ यू आर लुकिंग टू एड अ लिटिल स्पार्कल टू योर स्पेशल मोमेंट्स या किसी को कुछ प्यारी सी गिफ्ट देनी है, यू नीड टू हेड टू मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, जो कि प्रेस्टन रोड फ्रिस्को में है. यू नो, योर डेस्टिनेशन फॉर स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी दैट्स एलिगेंट, टाइमलेस एंड क्राफ्टेड टू शाइन. आप रिंग्स लेना चाहें, इयर रिंग्स लेना चाहें, या डार्जलिंग नेकलेसेस या कंटेम्प्रेरी डायमंड स्टाइल्स, यू नो, यू विल फाइंड द परफेक्ट पीस फॉर एंगेजमेंट्स, एनिवर्सरीज, कोई भी सेलिब्रेशन, या सिंपली जस्ट ट्रीट योर सेल्फ. हाँ, एंड साथ ही साथ यू नो यू कैन डाउनलोड द मलाबार गोल्ड एंड डायमंड मोबाइल ऐप फॉर द लेटेस्ट कलेक्शंस, अपडेट्स एंड मोर डिटेल्स. तो बेसिकली आपको कभी कभी अगर टाइम नहीं है एंड यू नीड टू फिगर आउट कि भाई क्या लेटेस्ट कलेक्शन है, देन यू कैन जस्ट डाउनलोड दैट ऐप एंड गो शॉप. How cool would that be, right? And the next one is a song request. The studio number once again is 972-235-5555. This is Madhulika. Main dungi aapka saath till 12:30 today.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Mark Hill is the leader Frisco needs to move forward together. As a former school board president, Mark has a proven record of integrity, fiscal responsibility and bringing people together. He values the vibrant contributions of our Asian and Indian communities, recognizing that our strength lies in our diversity and collaboration. Mark rejects divisive rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for Mayor. Let's build a stronger Frisco together.
4: Paid for by Mark Hill for Mayor.
5: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
6: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
2: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
7: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स, डैलस, बिकॉज फन पिज्जा किचन जस्ट ड्रॉप्ड अ बोल्ड न्यू मेक्सिकन इंस्पायर्ड मेन्यू, एंड ट्रस्ट अस, दिस इज नॉट योर रेगुलर स्लाइस। Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
8: Drive a BMW, Mercedes or Audi? Then don't trust it with just anyone. German Motor Works in Richardson, expert European auto care. Precision diagnostic and top tier service. All under one roof. From oil changes to brakes, they keep your drive flawless. Call 972-690-6623 today. German Motor Works. Engineered for excellence.
9: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to Funasia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you Funasia Radio for spreading the word.
10: मधुलिका लेकर आई हूँ, वेल आज नहीं वैसे लेकर आती हूँ, जस्ट टिल एवरी सैटरडे एंड संडे मॉर्निंग 10 AM टू नून होता है मेरा और आपका साथ। टुडे आई एम कवरिंग फॉर मी टू, मैं दूंगी आपका साथ टिल 12:30। स्टूडियो नंबर रखें याद, 9722355555। आज कुछ बारिश, कुछ धूप, कुछ ऐसा ही मौसम है, सो डू ड्राइव सेफ एंड एंजॉय द वीकेंड।

Well, that was taken from the movie नमक हलाल. और अगर आप कहीं रपट गए हैं और आपकी गलती भी नहीं थी, कई बार होता है कि डिस्पाइट ऑल सेफ्टी यू नो आपका कहीं कोई ट्रक एक्सीडेंट या कार एक्सीडेंट या कहीं स्लिप या फॉल इंसिडेंट हो जाए, तो आपको रखना है एक नाम याद, एंड दैट इज़ अटर्नी ओमार ख्वाजा. क्योंकि ना केवल ये आपका केस लड़ेंगे, आपको कॉम्पनसेशन दिलाएंगे, बट साथ ही साथ यू डू नॉट पे अनटिल यू विन. सो एक फ्री कंसल्टेशन के लिए आप उन्हें कॉल करें. द नंबर इज 4693005046 or visit attorneyomar.com. That's attorneyomar.com as Attorney Omar Khwaja. He will deal with insurance companies, you know, aapka sara stress wo le lenge, and they will fight your case and get you the compensation that you deserve, and you do not pay until you win. That's Attorney Omar Khwaja. You can visit attorneyomar.com for more details. And the next one, well, that's a song request. Thank you so much for calling in.

Well, that was taken from बड़े मियाँ छोटे मियाँ, बिल्कुल डिस्को में जाएं, फ्राइडे है, कोई होटल में खाएं, और कौन से होटल में खाएं नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट. जी हाँ, तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट जो है इज़ लोकेटेड इन गार्लैंड एंड इज़ द न्यू फ्लेवर डेस्टिनेशन फॉर ऑल स्पाइस लवर्स. तो अगर आपको स्पाइस स्पाइस पसंद है देन डेफिनेटली दैट्स द प्लेस टू गो, क्योंकि यहाँ आपको सिजलिंग तंदूरी प्लेटर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ रिच करीज या फिर आपके सारी नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स विद दैट होम स्टाइल पंच. तो भाई अगर आपको स्मोकी तंदूरी कबाब से लेके वेलवेटी करी या फ्रेश हॉट नान खाने का मन है देन तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट इज द प्लेस टू बी. जी हाँ, तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट इज लोकेटेड इन गार्लैंड. And well, the next one is another song request. I do hope that you're still driving, and here's the number that you requested. Enjoy.

0: This is the Fun Asia Network.
1: Fun Asia Network.
0: You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. In association with Passion Health Primary Care, official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Did you know LASIK is just one of six ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
4: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
3: Visionary Eye. See clearly, live boldly.
5: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
6: Calculating route. Rerouting.
5: Are, ye kya? Mujhe mere wale grocery store mein jana hai.
6: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
5: Kyun?
6: क्योंकि फोर्ट वर्थ, केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं, डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत. फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ.
5: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
4: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
6: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
7: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
8: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
7: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
8: वेट, व्हाट?
9: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
10: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
9: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799. That's 669-243-5799 for a free 15-minute consultation.
11: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now, 469-712-3591. Or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
12: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
13: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
14: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
15: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
14: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
16: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
7: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
17: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
7: थोड़ा? तेरी गाड़ी

0: डेट पे कम वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
1: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
2: इन प्लेनो।
1: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
3: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
4: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.
5: The Dill of Dallas. Heart to Heart, Fun Asia.

होके बिल्कुल दीवाना नाच, क्योंकि वीकेंड है जो आ चुका है, राइट? आपको पता है द वर्ड वीकेंड डिडंट बिकम कॉमन अंटिल द लेट 1800s, जब वर्कर्स जो थे इन सम इंडस्ट्रीज स्टार्टेड गेटिंग पार्ट ऑफ सैटरडे ऑफ, एंड तभी से ये वीकेंड का नाम जो है वो पिक्चर में आया. इंटरेस्टिंग, नहीं?

Well, that was the title track. तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया एंड इलेक्शन टाइम है तो बातों में ना उलझें एंड जो सच्चा काम करके दे उन्हीं की सुने, राइट? सो फ्रिस्को इज ग्रोइंग फास्ट एंड द फ्यूचर ऑफ आर सिटी नीड्स एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप, राइट? फॉर मोर देन 40 ईयर्स रॉड विलहावर हैज हेल्प्ड बिल्ड फ्रिस्को, क्रिएटिंग जॉब, सपोर्टिंग लोकल बिजनेसेस, इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टिंग इन द कम्युनिटी ही कॉल्स होम. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, stronger public services, and protecting the family values that make Frisco so special. Well, this election, your vote matters. Vote for Rod Vilhar for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.

All right, that was Twist taken from the movie Love Aajkal, and here's time for a giveaway. Giveaway आ रहा है Red Hot Chili Pepper की तरफ से. You know, आप जीत सकते हैं Dry Chili Chicken या फिर Chili Baby Corn और Dallas's Best Butter Chicken, RHCP's Chicken Makhan Wala. You can pick up the giveaway from the location. लेकिन पहले आपके लिए मैं पूछती हूँ सवाल. तो सवाल ये है कि मैं एक गाने का आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन बता रही हूँ, आपको मुझे कॉल करके बताना है कि मैं कौन से गाने की बात कर रही हूँ. तो गाना इज़ वेरी पॉपुलर, वेरी वेरी पॉपुलर, सो यू शुड बी एबल टू गेस इट इन नो टाइम. सो हियर इज द ट्रांसलेशन, इट गोज लाइक दिस. हु इज दिस दैट हैज़ कम बिफोर मी, अ स्टर हैज़ अराइज़न इन माई हार्ट. I repeat, who is this that has come before me? A stir has arisen in my heart. After seeing just a single glimpse, I have become crazy. So I repeat, guess the song jiska ki main English translation aapko bata rahi hoon, which song I'm talking about. Who is this that has come before me? A stir has arisen in my heart. After seeing just a single glimpse, I have become crazy. So if you guess that song, you can win this giveaway from Red Hot Chili Pepper.

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: जी हाँ बिल्कुल, फ्राइडे है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। एंड मैंने पूछा था RHCP रेड हॉट चिली पेपर की तरफ से ये जो गिव अवे आ रहा है उसका सवाल ये था दैट मैं एक गाने की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको करके दे रही हूँ एंड यू हैव टू गेस विच सॉन्ग आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड द ट्रांसलेशन वेंट समथिंग लाइक, हु इज़ दिस दैट हैज़ कम बिफोर मी, अ स्टर हैज़ अराइज़न इन माई हार्ट, After seeing just a single glimpse, I have become crazy. And we do have a listener on air with us. Hi, you're live on air.
2: Hi.
1: How are you?
2: Good. How are you?
1: I'm doing great. What's your name and what's the answer?
2: My name is Dipali and the answer is Samne ye kaun aaya dil mein hui halchal.
1: Wow, wow, wow, Dipali. Awesome. Very, very great. So, awesome. Aapne jeet liya ye giveaway. I'm going to take you off air, take some details from you while I'm going to play this fun number for our listeners. All right?
2: Thank you. Thank you so much.
1: Thank you.

कल मेरे भी सामने कुछ फन फैक्ट आया तो सोचा कि आपके साथ करूं शेयर। आपको पता है कि जो टाइनी टाइनी सीड्स दिखते हैं ना ऑन द आउटसाइड ऑफ अ स्ट्रॉबेरी, दे आर एक्चुअली इंडिविजुअल फ्रूट्स। वेल, मैं ऐसे ही कुछ फन फैक्ट्स लेकर आती हूं एवरी सैटरडे एंड संडे। जस्ट चिल में होता है मेरा और आपका साथ सुबह 10 से लेकर दोपहर के 12 बजे तक। शो का नाम है जस्ट चिल, जहाँ करते हैं हम एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल। वेल टुडे आई एम कवरिंग फॉर मी टू। माय नेम इज मधुलिका एंड आई विल बी विद यू टिल 12:30।

0: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
3: Zindagi एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
4: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज अ वीक 8 AM to 8 PM वॉक इन एनी टाइम 9191 काइजरवे स्वीट 205 फ्रिस्को।
5: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
6: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
7: भूख लगी
8: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
9: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery. Honestly, ये सिर्फ खाना नहीं है, it's what your mood is actually craving.
10: A quick bite, a perfect lunch ambience, and an evening that just flows into the night. You don't go just anywhere. You go to page 3, hub 121 McKinney.
11: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
12: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
11: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी।
12: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। नाउ इट्स योर टर्न, समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
13: तो रुको जरा, सबर करो।
14: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून टू फनेशिया।
15: डालस की धड़कन 104.9 FM फनेशिया रेडियो।

thank you for tuning in to 104.9 FM Fun Asia Radio. This is Madhulika. मैं कवर कर रही हूँ मीठू को, दूंगी आपका साथ टिल 12:30. वैसे लेकर आती हूँ जस्ट चिल. एवरी सैटरडे एंड संडे होता है मेरा और आपका साथ सुबह 10 से लेकर दोपहर के 12 बजे तक. स्टूडियो का नंबर रखें याद, 9722355555.

लावास टेकन फ्रॉम द मूवी लावारिस। और होता है ना कि कुछ कुछ गाने सुन के आपको लगता है कि इस गाने का प्लेलिस्ट में क्या काम है। वेल बताती हूँ आपको कि वर्ल्ड म्यूजिक डे सेलिब्रेट होता है 21 जून को। जी हाँ, एंड फन एशिया 104.9 FM wants to hear your story। वो होता है ना एक स्पेशल सॉन्ग दैट वी नेवर स्किप, या वो एक मेलोडी दैट ब्रिंग्स बैक मेमोरीज, एकदम यादों का खजाना खोल देता है वो एक गाना, या फिर वो स्पेशल डेडिकेशन कनेक्टेड टू समवन क्लोज टू आर हार्ट। वेल, अगर है ऐसा कोई गाना, सो देन दिस वर्ल्ड म्यूजिक डे शेयर योर लव फॉर म्यूजिक बाय फिलिंग आउट आवर गूगल फॉर्म। इट्स अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट एंड सोशल मीडिया। एंड दिस कॉन्टेस्ट इज ओपन फ्रॉम 1st to 15th of June, एंड वेयर यू विल टेल अस अबाउट योर फेवरेट म्यूजिक, योर अनफॉरगेटेबल म्यूजिक मेमोरीज, और वॉट म्यूजिक रियली मीन्स टू यू। एंड हु नोज, योर स्टोरी कुड विन यू सम एक्साइटिंग प्राइजेस, बिकॉज म्यूजिक इजंट जस्ट एंटरटेनमेंट। एक इमोशन है, नॉस्टैल्जिया है, सेलिब्रेशन है, एक कनेक्शन है। सो पार्टिसिपेट टुडे एंड सेलिब्रेट द मैजिक ऑफ म्यूजिक विद फन एशिया 104.9 FM।

वेल, एक गिव अवे आ गया है आपके लिए. ये गाना तो हम मूवी से था, लेकिन अब आपको मुझे ये गिव अवे जीतने के लिए बताने हैं कोई भी तीन इंडियन स्नैक्स, राइट? सो ये गिव अवे आ रहा है इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ की तरफ से, एंड हियर इज योर चांस टू विन अ स्पेशल ग्रोसरी हैम्पर फ्रॉम इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ. यू नो, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑथेंटिक इंडियन ग्रोसरीज, फ्रेश प्रोड्यूस, स्पाइसेस, स्नैक्स एंड ऑल योर देसी एसेंशियल्स. India Bazaar is located at 5152 Quadrant Way in Fort Worth. For people living in Fort Worth, Keller, Hurst and Hasle. Well, ये सवाल है ये कि आपको मुझे तीन, कोई भी तीन इंडियन स्नैक्स बताने हैं, एंड जो पहले कॉल करके बता देगा उसी को मिलेगा ये गिव अवे. एंड द स्टूडियो नंबर वंस अगेन इज 972-235-5555.

Well, that was taken from the movie Simba. And सवाल एक बार फिर दोहरा रही हूँ आपके लिए. इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ दे रहा है आपको एक ग्रोसरी हैम्पर. एंड दिस विल बी, यू नो, आई वुड सजेस्ट पीपल लिविंग इन फोर्ट वर्थ, केलर, हर्स्ट और हासले, दे शुड कॉल एंड विन दिस हैम्पर अनलेस यू आर प्लानिंग टू ड्राइव ऑल द वे टिल फोर्ट वर्थ. क्वेश्चन ये है, दोबारा बताती हूँ, कि आपको मुझे कॉल करके बताने हैं कोई भी तीन इंडियन स्नैक्स. बहुत ही आसान सा सवाल है. द स्टूडियो नंबर वंस अगेन इज 972-235-5555.

0: Taken from the movie Man Marziyan, that was Kundli. And yes, हमने पूछा था सवाल कि बताइए कोई भी तीन इंडियन स्नैक्स एंड जीत लीजिए इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ की तरफ से एक ग्रोसरी हैम्पर का ये गिव अवे. एंड वी डू हैव अ लिसनर ऑन एयर विद अस. हाय, यू आर लाइव ऑन एयर.
1: हाय, दिस इज तृप्ति.
0: हे तृप्ति, हाउ आर यू?
1: I'm good, you?
0: I'm doing great, thank you for asking. तो बताइए कौन से तीन इंडियन स्नैक्स आप बताने वाली हैं?
1: Okay, my personal favorite samosa.
0: Ooh, वो तो मेरा भी है.
1: And the second personal favorite is the Haldiram plain bhujia.
0: क्या बात है,
1: and the third one is Ratlami Sev.
0: Oh, and Ratlami Sev मेरे husband का favorite है, वो पोहे के ऊपर डाल के खाते
1: हैं. That's my personal favorite.
0: awesome Tripti. So आपने इंडिया बाजार का ये गिव अवे जीत लिया है. I'm gonna take you off air, take some details from you while I'll play another song for our listeners. So आप hold करिएगा, I'll take some details from you. All right?
1: Thank you.
0: So yes, तृप्ति ने बताए तीन इंडियन स्नैक्स. और अगर इंडियन स्नैक्स की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि जो चिक्की है ना, वो जो मूंगफली और गुड़ की होती है, वॉज रिपोर्टेडली गिवन टू रेलवे वर्कर्स इन द 19th century बिकॉज पीनट्स एंड जैगरी प्रोवाइडेड क्विक एनर्जी. भेलपुरी को कहा जाता है इंडिया का अर्लीस्ट फास्ट फूड एंड दैट्स बिकॉज इट्स असेंबल्ड इन सेकेंड्स फ्रॉम रेडी टू ईट इंग्रीडियंट्स. Of course, samosa jo hain, wo to popular hain, but did you know that they originally came to the Indian subcontinent from Central Asia and Persia? And baat karein jalebi ki, to jalebi is believed to have roots in a Middle Eastern desert called Zalabia, which traveled to the Indian subcontinent in centuries ago. And despite being known as Indian sweet today, jalebi has been enjoyed in various forms across Asia and the Middle East for hundreds of years. Kai log garam garam jalebi doodh ke saath ya rabdi ke saath khate hain, ya jaise Indoor Bhopal mein to pohe ke saath jalebi is a very popular breakfast.

Well, that was अफगान जलेबी टेकन फ्रॉम द मूवी फैंटम. एंड इंडियन स्नैक्स की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो पानी पूरी भी एक बड़ा ही पॉपुलर सा स्नैक है. उसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे गोलगप्पे, पुचका, गुपचुप, पानी के बताशे और बहुत से नाम है. एंड जनरली पानी पूरी खाने के ना कुछ चैलेंज हो रहे होते हैं कि कौन कितने खा सकता है. या फिर रसगुल्ला, उसको भी एक स्नैक कहा जा सकता है. मैं तो उसको काफ़ी हेल्दी स्नैक समझती हूँ क्योंकि आप उसको डाइल्यूट करके कम मीठा भी कर सकते हैं. आपको पता है कि रसगुल्ले जो हैं, दे कैन बाउंस व्हेन फ्रेशली मेड बिकॉज दे आर सो स्पॉन्जी इन नेचर. एंड ऑफ कोर्स अगर हम बात करें आम पापड़ की, तो कई लोगों को आम पापड़ भी स्नैक लगता है. एंड ऑफ कोर्स है भी, इट्स बेसिकली एसेंशली मैंगो फ्रूट लेदर एंड हैज़ बीन एंजॉयड फॉर सेंचुरीज एज अ वे टू प्रिजर्व मैंगोज बियॉन्ड द समर सीजन. बिकॉज पहले कहाँ आप प्रिजर्वेशन कर पाते थे, सो दैट वॉज अ ब्यूटिफुल वे ऑफ प्रिजर्विंग मैंगोज कि उनका आम पापड़ बना लिया जाए. है ना मजे की बात. एंड वेल, वी विल बी हेडिंग टूवर्ड्स अ स्मॉल लिटिल कमर्शियल ब्रेक आफ्टर दिस सॉन्ग. आप कहीं जाइएगा नहीं, डू स्टे ट्यून्ड इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो एज आई विल बी गिविंग यू कंपनी टिल 12:30.

0: This is the Fun Asia Network. Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. In association with Passion Health Primary Care, official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
2: जिस बात का डर था वही हुआ, लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन।
3: अरे कहना क्या चाहते हो?
4: डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आई, लैंग्वेज बैरियर का टेंशन भी, अब टेंशन का टाइम गया। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ मल्टी लैंग्वेज नर्सेज और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं। हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू प्रेफर। फ्रिस्को, प्लेनो, मैकिनी, अबरी, फ्लावर माउंट, इरविंग, प्रॉस्पर, एना, एनी लोकेशन यू आर क्लोज टू, कॉल 214-666-6259 और विजिट passionhealthprimarycare.com। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ, योर लैंग्वेज, योर कम्फर्ट।
5: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
6: हाँ।
5: घर रिलोकेट करनी है?
6: हाँ।
5: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
6: हाँ भाई हाँ।
5: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
1: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
11: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम? ओके, नेम ऑफ द लॉयर? उमर ख्वाजा।
12: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
9: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1, मिक्स वेज पकौड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
12: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGBT। तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
13: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
14: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
13: Kya matlab?
14: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
13: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
14: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
13: Ab to karna hi padega, madam.
15: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
16: So, ruko jara. Sabar karo.
17: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून्ड टू फनेशिया।

टेकन फ्रॉम द मूवी खलनायक. वेल, दिस इज मधुलिका. सुन रहे हैं आप 104.9 FM फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. मैं दूंगी आपका साथ टिल 12:30. स्टूडियो का नंबर रखें याद, 9722355555. अच्छा, होता है ना कि हर मूड के साथ एक गाना आप एसोसिएट करते हैं, या जैसा आपका मूड हो वैसे उसी तरह के गाने सुनने का मन होता है. वीकेंड है तो यू वांट टू हैव सम फास्ट नंबर्स, यू नो, अपबीट सॉन्ग्स, नाचने का मन करता है. सो वेल, वर्ल्ड म्यूजिक डे आ रहा है एंड फन एशिया इज सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड म्यूजिक डे बिकॉज एवरी मोमेंट हैज़ अ सॉन्ग. Every mood has a melody, whether it's romance or a heartbreak, a wedding anthem or a party favorite. We want to know your top picks. Ji haan, from June 1st to June 15th, fill out our Google form and nominate your favorite songs across different music categories. You know, Phanesia will select the most loved songs from each genre and the song that have become the heartbeat of millions. June 21st go on World Music Day. Every Phanesia show will be dedicated to a different music genre, featuring the winning selections. And here's the exciting part. Ab aata hai aapka role. Ji haan, the listeners whose song choices make it into our final playlist, the most will win exciting prizes. So visit phanesia.net or follow our social media page for details. Celebrate the magic of music with Phanesia 104.9 FM.

Well, मैं सदके जावा, इट्स रॉकिंग, इट्स ऑलवेज ऑलवेज फन टॉकिंग टू यू ऑल एंड प्लेइंग सम मेलोडियस सॉन्ग्स अलोंग द वे. इट्स टाइम फॉर मी टू से बाय, बट आप कहीं जाइएगा नहीं. डू स्टे ट्यून्ड इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो, एज यहाँ हमारे शोज आपको एंटरटेन करते रहेंगे. कमिंग अप नेक्स्ट इज पारुल. मैं मिलूंगी आपको कल सुबह 10 बजे इन जस्ट चिल, जहाँ करेंगे हम एज द नेम सजेस्ट Just chill. Well, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा. This is Madhulika signing off.

0: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
1: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
2: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
3: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
4: Heere moti, main na chahun.
5: अच्छा मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग डायमंड रिंग्स पेंडेंट्स इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर चाहे प्रपोजल हो वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो अब शाइन डबल विद इन बजट लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग
6: सुनीता तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली
7: हाँ बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है
6: सेम टीचर सेम स्कूल फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है
7: डिफरेंस स्कूल का नहीं है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है
8: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
9: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
8: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
10: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
11: Is shahar ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya? Kahin pe kala jadu? Dhuaan dhuaan. Kyun sab uljhe hain parivarik samasyaon mein? Kabhi padhai, to kabhi naukri ki chinta. Zindagi ke raaste dhundle ho gaye hoon. तो वक्त है सही दिशा का
12: पंडित रामनाथ जी जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा लव प्रॉब्लम शादी में डिले करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव
13: विजिट psychicramnath.com कॉल 4693474401 प्लेनो मैकिनी अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध
14: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
15: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
16: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूं
17: अरे मैडम करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या
13: अब करेगा because Indian Attire Frisco summer sale is on. Stunning lehengas, elegant saris, bridal jewelry, men's and kids wear.
17: Wait, itna sab aur price?
13: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
18: Main hi doin hu.
19: Computer ji ka sawal ye hai, business owners ko loan lena mushkil kyun lagta hai? Option A, slow process. Option B, ज्यादा पेपर वर्क ऑप्शन सी क्रेडिट स्कोर का कंसर्न या ऑप्शन डी लोन डिक्लाइन होने का डर
20: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा
19: कंप्यूटर जी एसबीआई लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए
0: SBI लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है. नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं. रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में.
21: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338. 817-786-3338. The SBA लोन एक्सपर्ट्स. फैसला क्लैरिटी के साथ.
22: Hi, I'm Rajkumar Rao and you're listening to the most popular FM station in the US. 104.9 FM, Fun Asia Radio.

Welcome, listeners. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. Shout out going out to Madhulika, who just did a show and she's covering in and I'm also covering in today. आप सबका क्या हाल है? Friday afternoon है और weather का भी एक अजब सा जादू है. जहाँ जादू की बात आती है वहाँ Hrithik Roshan, he had played this role, जिसमें जादू भी थे उनके साथ. लेकिन वो गाना नहीं, मैं उनका पहला गाना प्ले करने वाली हूँ जब उन्होंने वो जादू फैला दिया. जब वो इस फिल्म में आए एज अ हीरो, ही डेब्यूड इन दिस फिल्म, डेब्यूड एज अ हीरो इन दिस फिल्म. ये गाना जस्ट मेड द इंटायर वर्ल्ड गो क्रेजी. And I'm thinking about Hrithik Roshan today because he's in the news. And I thought, why don't I start the show with Hrithik Roshan? This is your host, Parul Bhatia, welcoming you in the studios, through the studios, right here, through 104.9 FM, bringing the community together.

ऑल इंसिडेंट हो जाए, ऐसे ना हो, लेकिन आपको हेल्प डेफिनेटली मिल सकती है इन सच अ सिचुएशन. अटर्नी उमर ख्वाजा विल फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कॉम्पेंसेशन दैट यू डिजर्व. डीलिंग विद इंश्योरेंस कंपनीज कैन बी स्ट्रेसफुल. यू नीड एन अटर्नी दैट विल मेक श्योर यू आर कॉम्पेंसेटेड. यू डोंट पे अंटिल यू विन. फॉर अ फ्री कंसल्टेशन कॉल उमर ख्वाजा एंड द नंबर टू कॉल इज दिस, प्लीज नोट 469-300-5046. That's 469-300-5046. Or you could visit his website, which is attorneyomar.com. That's OMAR. attorneyomar.com. And this segment is brought to you by Umar Khwaja with traffic updates around DFW and accident reports. With that, listeners, wo quiz ka time aa raha hai. और क्विज से पहले एक पर्टिकुलर मैं गाना प्ले करने वाली हूँ, क्योंकि ये न्यूज़ भी इसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड है. इट्स अ वेरी वेरी लवली न्यूज़ आई वुड हैव टू से, क्योंकि जो भी है, वी वांट हैप्पी एंडिंग्स, डोंट वी? एंड व्हेन इट कम्स टू आमिर खान, वी डेफिनेटली विश हिम ग्रेट एंडिंग नाउ, बिकॉज येस, ही हैज़ कन्फर्म्ड मैरिज विद गौरी स्प्रैट. शी इज सेइंग आई एम रेडी टू टेक रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल. He has been married twice before. He was first married to Reena Dutta, with whom he shares two children, Junaid Khan and Ira Khan. He later married Kiran Rao, and the former couple have a son together, Azad. Now, Aamir Khan and Gauri Spratt are all set to tie the knot on July the 5th. बस एक ही महीना बचा है. While reports of their wedding began circulating on Wednesday, the actor has now confirmed the news himself. Speaking to Variety, Aamir shared, I'm currently traveling in the US. The news about the marriage is true. It's on July 5th. The announcement comes just months after Aamir Khan had said that marriage was not a pressing concern in his relationship with Gauri, as they were content living together. However, the actor revealed that their feelings have evolved over time. इसके बारे में और बताऊंगी थोड़ा, लेकिन उससे पहले ये बहुत ही रोमांटिक गाना जिसपे खुद आमिर खान है, ये प्ले करूंगी मैं, और उसके बाद आपके लिए एक क्विज भी आ रहा है. स्टे राइट हियर, डोंट गो एनीवेयर.

जी हाँ लिसनर्स, आप लोग सुन रहे हैं लंच टाइम ड्राइव शो। ये भी शो है ना लंच टाइम पे, जो ड्राइव कर रहे हैं वो लोग शो सुन रहे हैं, और अगर घर पे हैं तो भी आप सुन सकते हैं। और अभी थोड़ी देर में एक गिव अवे आने वाला है फ्रॉम सैल्स चिकन, तो ये गिव अवे से एक क्विज भी रिलेटेड है। लेकिन आई एम टोटली ट्राइंग टू मेक श्योर दैट यू आर हैविंग अ वंडरफुल वंडरफुल टाइम, क्योंकि क्या है ना लिसनर्स, वंडरफुल टाइम होना बहुत ज़रूरी है। और कभी ऐसा ना हो कि अगर आप कार या ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाएं और या एक स्लिप हो जाए या

0: कुमार शानू की आवाज में अलोंग विद अलका याग्निक. व्हाट अ लवली सॉन्ग एंड व्हाट ग्रेट, जैसे कहते हैं ना, पिक्चराइजेशन. बहुत मजा आया इसको देख के. अगर आपने फिल्म नहीं देखी है, फिल्म भी बहुत अच्छी थी. एंड लिसनर्स, इस वक्त वेदर के बारे में बता दूं, इट्स 94 डिग्री फ़ारेनहाइट बट इट फील्स लाइक 104 डिग्रीज. एक्सट्रीम हीट इज बेसिकली व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नाउ. एंड यस, देयर इज सम रेन इन द फोरकास्ट एज वेल. इन फैक्ट अभी तो दो बजने वाले हैं. 84 डिग्री, 72 डिग्री, 84, 72 है. और ये जो है वेदर, आई डोंट नो व्हाई इट सेज 104, बट इट फील्स लाइक, दैट डजंट सीम राइट. आई जस्ट वांट टू से इट्स 83 डिग्रीज फ़ारेनहाइट. That's what it is. Precipitation is 21%, humidity is 71%, and wind is 7 miles per hour. तो ये 104 वाला चक्कर कुछ गलत था, लेकिन ये हीट एडवाइजरी आई है कि सिवियर हीट इज एक्सपेक्टेड इन दिस एरिया. एंड इफ दैट्स द केस, देन यू डेफिनेटली, यू नो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू बी बेसिकली सिटिंग इनसाइड इन योर होम्स. या बिकॉज आज का, जबकि जून 12th को ये होने वाला है, ये जो फुल वीक है, स्पेशली 11th थ्रू द 12th, That's when excessive heat advisory is happening, June 11th through the 12th. Right now, it's not bad. It's in 80s and 70s. So you can't go bad with that. And around 11 p.m. raat mein, uske baad Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday, aaj hai, aaj ka weather hai, 94 degrees and 78. With that, listeners, ye jo particular report aayi hai news ki, it is brought to you by Malabar. My Malabar weather. This weather forecast is brought to you by Malabar Gold and Diamonds. And now, are you ready for the quiz? ये मैं एक particular dialogue play करने वाली हूँ एक film से. What you got to do is you got to tell me ये hero heroine इस film में कौन थे और ये film का क्या नाम है. और उसके साथ साथ आप एक गाना भी request करेंगे इसी film से. So it's very simple, hero, heroine, name of the film, and you'll request the song. And आपको क्या मिलेगा वो मैं बता दूँ आपको साथ साथ, because obviously that's like a big attraction, what you're gonna get as a giveaway. Sal's Nashville Hot Chicken is giving away free 3 jumbo tenders. So that's what you're gonna get, and I will share more information. ये Richardson location है और आपको redeem by June 5th करना है. अगर आप इस वक्त नहीं पहुंच जाएंगे तो फिर आप you don't have to participate in this quiz, because June 5th यानी कि आज इसको redeem by June 5th है. तो here you go. I'm gonna go ahead and play the dialogue for you.
1: खाने को कहाँ मिलेगा? हाँ, चल. 972-2355.
2: मुन्ना,
1: अरे को है क्या? ए तंबी, इधर आ.
3: सर. यस सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू?
1: करेक्ट, या.
3: Yes, sir. Would you like to place any order, sir?
1: Good.
2: अरे मुन्ना, वो पूछ रहे हैं तुम क्या खाना खाओगे?
1: अरे तो हिंदी में बोलना, क्या है खाने को? क्या है?
3: Sir, would you like to try our Russian salad or French fries or something like that?
1: अरे वो अंग्रेजी आइटम नहीं चाहिए अपन को, ऐसा कुछ ला जो आंख पे लगे. एक काम कर, पहले तो एक प्लेट कांदा काट के ला, और भेजा फ्राई, उसल पाव, बैदा करी, और एक जिंदा राइस शोरबा मार के.
2: ए मुन्ना, क्या बात कर रहे हो? ये सारी चीजें यहाँ नहीं मिलती.
1: नहीं मिलती?
3: नो सर.
1: अरे क्या थकेला जगह ये? क्या खाली टेबल कुर्सी पे खर्चा किया, खाने पे नहीं? अच्छा एक काम कर, जो तेरे दिल को अच्छा लगे वो लेके आ. बिंदास 5-6 आइटम, बहुत माल है अपने पास. ऐसे जैसे कि तू खाने को आया.
3: ओके.
1: और सुन, फैन ऑन चालू कर.
3: सर?
1: अरे फैन चालू करना.
3: एसी इज ऑन सर, एयर कंडीशन चालू है.
1: तो इधर घुमाना.
0: Funny Chair Radio, you're live on air. Who's this?
4: Hi, this is Murad. This is from Rangila.
0: I didn't catch your name again.
4: It's Ali.
0: Ali, Ali, bataiye. Haan, aapne kya bola? Film ka kya naam hai?
4: Rangila.
0: Rangila. Isme kaun, kiski awaaz hai is particular scene mein?
4: Aamir Khan. एंड उर्मिला मातुंगकर,
0: दोनों बिल्कुल सही. आपने फिल्म भी बता दिया, हीरो हीरोइन भी बता दिया. एंड व्हाट सॉन्ग वुड यू लाइक टू हियर?
4: रंगीला का ही लगा दे.
0: आई रे आई रे, ये कौन सा?
4: आई रे आई रे.
0: ऑलराइट, आपने जीता है ये बहुत ही यमी साल्स नेशनल हॉट चिकन. इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ. जस्ट अ सेकंड, आई विल टेक यू ऑफ एयर. ओके
4: ओके.
0: ऑलराइट, अली हैज वन दिस अमेजिंग यू नो गिव अवे. तो इसके बारे में बहुत बताऊंगी, लेकिन ये डायलॉग के बाद एक गाना मैं आपके लिए डायरेक्टली प्ले करने वाली हूँ. दिस सॉन्ग एंड दिस डायलॉग कमिंग योर वे राइट हियर.
1: क्या खाने को कहाँ मिलेगा? हाँ चल. अरे यहाँ सब लोग अपन को जानता है. हाँ कहाँ बैठने? बोल
2: यहाँ बैठ.
1: हाँ बैठना. क्या बोलता है? अरे ये तो पीछे जा रही है.
2: मुन्ना.
1: अरे को है क्या? ए तंबी इधर आ.
5: सर. Yes, sir. What can I do for you?
1: Correct, yeah.
5: Yes, sir. Would you like to place any order, sir?
1: Good.
2: अरे मुन्ना, वो पूछ रहे हैं तुम क्या खाना खाओगे?
1: अरे तो हिंदी में बोलना. क्या है खाने को? क्या है?
3: Sir, would you like to try our Russian salad or French fries or something like that?
1: अरे वो अंग्रेजी आइटम नहीं चाहिए अपनको. ऐसा कुछ ला जो आंग पे लगे. एक काम कर, पहले तो एक प्लेट कांदा काट के ला और भिजा फ्राई, उसल पाव, बैदा करी और एक जिंदा राइस शोरबा मार के.
2: ए मुन्ना, क्या बात कर रहे हो? ये सारी चीजें यहाँ नहीं मिलती.
1: नहीं मिलती?
5: नो सर.
1: अरे क्या थकेला जगह ये? क्या खाली टेबल कुर्सी पे खर्चा किया, खाने पे नहीं? अच्छा एक काम कर, जो तेरे दिल को अच्छा लगे वो लेके आ. बिंदास 5-6 आइटम बहुत माल है अपने पास. ऐसे हो जैसे कि तू खाने को आया.
5: ओके.
1: और सुन, फैन ऑन चालू कर.
5: सर.
1: अरे फैन चालू करना.
5: एसी इज ऑन सर. एयर कंडीशन चालू है.
1: तो इधर घुमाना. अरे मिली वो चिकोवाड़े का दीपक है ना.
2: दीपक?
1: अरे वही ना जो उस दिन मिल में मिला था अपन को.
2: हाँ हाँ, वो साइकिल वाला.
1: हाँ वही.
2: क्या हुआ उसको?
1: अरे होने का क्या है, सेटल हो गया लाइफ में.
2: सेटल हो गया?
1: सेटल बोले तो शादी हो गया उसका.
2: शादी हो गया उसका? हाँ. किससे?
1: वही जो उसके वो मोहल्ले में लड़की थी ना, वो चमेली करके.
2: हाँ.
1: शादी कर डाला दोनों ने.
2: हाँ.
1: बहुत खुश है दोनों. अपन भी यही बोलता है, लाइफ में सेटल हो जाना मांगता है.
2: हाँ वो तो है.
1: तू भी यही मानती है ना? अपन भी यही मानता है, लाइफ में सेटल हो जाना मांगता है. क्या है, लाइफ में सेटल रहेगा ना तो जिंदगी सेटल हो जाएगा.
2: मुन्ना, ये क्या सेटल सेटल क्या लगा रखा है?
1: अपन क्या बोलता है, अपन ये बोल रहा है कि तू भी ये मानती है ना कि लाइफ में सेटल हो जाना मांगता है. अपन भी ये मानता है कि लाइफ में सेटल हो जाना मांगता है. बोले तो अभी देख, अपन तेरे को क्या बोलता है, अपन तेरे को इतना ही बोलता है ना कि लाइफ में सेटल हो जाना मांगता है.
2: कमल जी
6: मिली बच्चों, बाय.
2: आप
6: यहाँ कैसे?
2: मैं मेरे एक दोस्त के साथ आई हूँ. मुन्ना.
6: हाय.
1: हेलो. जानता है फाइटिंग अच्छा करता है.
6: थैंक्स.
2: कमल जी आप यहाँ कैसे?
0: कमल जी आप यहाँ कैसे? और बिल्कुल सही आंसर आया. और अभी भी कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन वी डू हैव अ विनर नाउ. In fact, winner is Ali उर्फ मुराद प्रसला, जिन्होंने जीता है Sal's Nashville Chicken. इसके बारे में बता दूं आपको कि they have given away this free 3 jumbo tenders at Richardson location only, and it has to be redeemed by today. Plus, Sal's Chicken is bringing the ultimate Inferno Spice Challenge. Here is the deal. You have 10 minutes to finish 3 jumbo extra hot tenders with only 1 cup of milk and absolutely no dipping. And the prizes? Totally worth the pain. Finish 1 jumbo tender, get a free sandwich every day for 7 days. Finish 2 jumbo tenders, Enjoy free sandwiches for 15 days. And if you conquer all three Inferno tenders, you win the grand prize. A free sandwich every day for 30 days. Saturday, June 6, 4 p.m. Ho raha hai ye. Participation is absolutely free. Just be ready to sign a waiver before you take on the heat. And ye basically jo ho raha hai, ye challenge hai. Please note, the first part is the giveaway and the LA is the information about Spice Challenge happening on 6th the June. So ye 6th June ko jo ho raha hai, it's for all you listeners, please make sure. Every time, by the way, listeners, if you have won something within a month, then you don't qualify because you will not get the gift or the giveaway. Once a month, that way a lot of other people get a chance to win as well. Phanasia Radio, you're live on air.
7: जी वो आपको डायलॉग सुना रही थी उसमें एक आवाज जो मेन थी वेटर की
0: हाँ
7: वो उसका नाम राजीव है
0: ओ रियली राजीव आई ही सीम्स वेरी लाइक वन ही वी हैव सीन हिम इन मूवीज व्हाट्स हिज फुल नेम डू यू नो
7: राजीव मेहता या ऐसा कुछ है उसका
0: अच्छा थैंक यू फॉर दैट लेकिन अभी तो विनर मिल गया आपने पहले किया होता तो आपको मिल जाता
7: नहीं नहीं मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि आप कलाकार का नाम वो जाने बगैर आपने उनको विनर दे दिया लेकिन ये भी हम तो सुन के बता रहे हैं तो ये रिकग्नाइज होना चाहिए
0: हाँ डेफिनेटली लेकिन हीरो हीरोइन का नाम मैंने पूछा था एंड इनफैक्ट यू गेव मी एन एक्स्ट्रा आंसर विच इज रियली ग्रेट I'll check it out. Thank you. And with that, listeners, this quiz has come to a close. I have a requested song. I'm going to go ahead and play the song from this amazing film, Rangeela, 1995 ki film. Agar aapne nahi dekhi hai, to bahut hi maza aayega aapko is film dekhne mein. Bahut hi cool acting hai isme Aamir Khan ki. And of course, Urmila Matondkar is recognized by this particular film. It was like a big turning point in her career. A great film and Jackie Shroff did a fantastic job. Let's enjoy.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Hello, accident claim? Okay. Name of the lawyer?
4: Oh. उमर ख्वाजा।
2: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com. Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
5: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
2: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
5: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
6: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
8: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
9: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
8: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
10: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
11: क्या मतलब?
12: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
12: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
11: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
13: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
6: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.

0: ऑलराइट वैसे ऑलरेडी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले आमिर खान की और मैंने कहा था कुछ और भी बताऊंगी मैं लिसनर्स तो गौरी स्प्रैट के बारे में शी हैज अ रूट्स इन बेंगलुरु वर्क्स इन द वेलनेस एंड ब्यूटी इंडस्ट्री शी वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द मीडिया बाय आमिर खान ड्यूरिंग हिज 60th बर्थडे सेलिब्रेशंस इन मार्च लास्ट ईयर At the time, Amir revealed that the two had known each other for years before reconnecting and gradually developing a deeper relationship. Their romance largely blossomed away from the public eye. Since then, they have been spotted together at several public events, including the premiere of Amir's film, Sitare Zameen Par. He has been married twice. We talked about it, to Reena Dutt and then to Kiran Rao. And ab, definitely, ye news aa rahi hai ki July 5th ko, He's going to tie the knot with Gauri Spratt. We wish him all the best and wish him a glorious and a great future with her. Aur ek aur news pe Pehlaz Nihlani launched Govinda despite not liking his face and he said I hired him for his dance. इसके बारे में भी मैं कुछ आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ तो विद दैट एक और गाना आपके लिए है राइट हियर सो डोंट गो एनीवेयर व्हेन आई कम बैक देयर विल बी मोर मस्ती मोर हंगामा और अभी तो वरुण धवन की जहाँ बात आई है ये वाओ वाओ वाला आपने गाना सुना उनका एक और गाना तमा तमा
1: ये कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये, ये, ये, ये, ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागे

कोविंद, पहलाज नेलानी के साथ ये जो प्रोडक्शन थी, उनकी प्रोडक्शन थी जिसमें उन्होंने गोविंदा को कास्ट किया. एंड ऑफ कोर्स गोविंदा एंड नीलम वर अ कपल ऑफ दैट ऑनलाइन ऑन स्क्रीन कपल, हिट कपल.

0: रे ढोली ढोल बजा।
1: रंगीला राजा से लिया ये गाना प्रहलाद निहलानी फीचरिंग गोविंदा।

जहाँ इतनी गोविंदा की बात आई है तो एक बहुत ही प्यारा गाना दिमाग में आया मेरे, लेट 80s का है वैसे गाना, फ्राइडे है, थोड़ा सा ये रेट्रो सॉन्ग बनता है क्योंकि इतनी बात हो गई है गोविंदा की, तो ये गाना उनको उनको याद कर, बिकॉज ही इज सच अ टैलेंटेड एक्टर, लाइक ही लाइक बिलाल निलानी सेड सच अ ग्रेट डांसर, इट वॉज बिकॉज ऑफ हिज डांस दैट ही गॉट इन टू द मूवीज एंड इंडीड वेल डिजर्व. Also, he has such great comic timing and he's such a fantastic actor. तो ये गाना मैं आपके लिए प्ले करना चाह रही हूँ क्योंकि इस गाने में, ये गाने का आपको पता है कि कौन सी फिल्म है, यू कैन गिव मी अ कॉल, आई डोंट हैव एनी गिव अवे नेसेसरली, बट यू कैन टेल मी कि ये फिल्म कौन सी है.

0: This is the Fun Asia Network. Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. In association with Passion Health Primary Care, official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: प्रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
2: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
1: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
2: वेट, व्हाट?
3: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
4: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
3: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल

0: करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
1: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799 दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
2: Attention passengers, flight Punjab 001 to Chandigarh Wale Irving is now boarding. Destination, real Punjabi flavor.
3: अरे यार, डालस में पंजाब?
4: बिल्कुल, चंडीगढ़ वाले, जहां बटर चिकन भी असली और नान भी तंदूर से गर्मा गर्म.
5: From buttery curries and fresh naan to street style Punjabi favorites, every bite takes you straight to Punjab. Shadi ho, party ho, ya corporate event, Chandigarh Wale brings live Punjabi catering straight to your celebration. Proudly awarded Best of Dallas for Indian food by D Magazine. Skip the flight and take the shortcut to Punjab. Chandigarh Wale, Irving, where Dallas meets Punjab.
6: Jis baat ka dar tha wahi hua. Lymphosarcoma of the intestine.
7: अरे कहना क्या चाहते हो?
8: डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आई, लैंग्वेज बैरियर का टेंशन भी, अब टेंशन का टाइम गया। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ मल्टी लैंग्वेज नर्सेज और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं। हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू प्रेफर। फ्रिस्को, प्लेनो, मैकिनी, अबरी, फ्लावर माउंट, इरविंग, प्रॉस्पर, एना, एनी लोकेशन यू आर क्लोज टू। कॉल 214-666-6259 और विजिट passionhealthprimarycare.com. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ, योर लैंग्वेज, योर कम्फर्ट।
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
3: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
12: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
3: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
12: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
3: ये क्या होता है?
12: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
5: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
13: Attention business owners, what if your everyday expenses could actually make you money? That's right, with Connecting America, you can turn your business expenses into a powerful stream of income via a unique insurance product. If you are looking to boost your bottom line, they got the strategy that works for you. Plus, they help homeowners pay off their mortgage in 10 years or less.
14: Don't wait. Call James at 321-888-7345 today or visit ConnectingAmericaFinancials.com and discover how to turn your daily expenses into income. Connecting America, where smart business owners turn costs into cash.
15: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
16: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
15: कैसे?
16: पेज 3 ईटरी?
15: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
16: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours and the food crafted to suit every craving, every appetite.
15: मतलब great food, great drinks and great company, यानी कि मैं।
17: Page 3 ईटरी, eat, sip, gossip, repeat.
18: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.

इसके बाद किरण विल बी हियर राइट हियर फॉर योर एक्सक्लूसिव एंटरटेनमेंट विद दैट इफ यू हैव अ पर्टिकुलर सॉन्ग दैट यू'ड लाइक टू हियर देन आई विल डेफिनेटली फुलफिल दैट फॉर यू 90s के बाद के गाने आप कोई भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं और बहुत सारी बातों में ये बात भी है कि अभी रिसेंटली डेविड धवन की जो फिल्म आई है जवानी तो इश्क होना है उस पर प्रॉब्लम ये हो गई कि भाई चुनरी के लिए they did not take the permission from the actual filmmakers and Vishu Bhagnani had done like a basically he has sued them lekin ab sunne mein aaya hai ki wo jo baat hui thi ki sue ho rahe hain wo clear ho gayi hai and the movie has been cleared setback for Vishu Bhagnani Bombay High Court clears Hai Jawani release amid rupees 40 crore case So that's really good news for Varun Dhawan's dad and Varun Dhawan. And we wish Varun Dhawan a great comeback with this film. Because he's supposed to be a very hardworking guy and very, very caring and all that. And I think he's done a really good job. I haven't seen this film yet, but kuch filmon mein, unki mujhe wo bahut achhi lagi thi ek film, jisme that he plays a bhediya, if you remember that movie Bhediya. I really did like him in that particular film. I think he outdid himself in that film. So wo check out aap kar sakte hain. और ये पर्टिकुलर फिल्म जो कि अब थिएटर में रन कर रही है उसका मैंने गाना भी थोड़ी देर पहले चलाया था है जवानी तो इश्क होना है और यू नो पूरा जिसे कहते हैं ना कि पैसा वसूल टाइप ऑफ फिल्म है ये इसमें ऐसे गाने हैं जैसे एक तो चुनरी अभिजीत भट्टाचार्य हैड अ प्रॉब्लम विद दैट लेकिन एंड इट इज ट्रू दैट ऑब्वियसली द ओरिजिनल सॉन्ग इज फैंटास्टिक लेकिन दैट डजेंट मीन कि इस पर्टिकुलर रीमिक्स में वो बात नहीं है वाओ तो बहुत ही अच्छा गाना है चुनरी इज ओके लेकिन इतनी बात हो रही है जवानी तो इश्क होना है तो मैं उसका एक टाइटल ट्रैक आप लोगों के लिए प्ले करती हूँ

खूब बातें हुई आज आमिर खान के बारे में, एंड देन उसके साथ साथ गोविंदा के बारे में, एंड ऑफ कोर्स अ फ्यू अदर्स. तो मस्ती चल रही है लिसनर्स, लेकिन ये 25 मिनट है मेरे पास आपके लिए, एंड

0: थैंक यू लिसनर्स फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड काफी वरुण धवन के फैंस हैं, उनके कॉल्स आ रहे हैं कि दे विश दिस मूवी अ ह्यूज सक्सेस. और डेफिनेटली ये जो वैश्यु भगनानी ने कहा कि भाई ये अभी नहीं होगी रिलीज, ये बात ओवरकम करके हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली उसको टू गो दे दिया है, बिकॉज मोर देन 3,000 स्क्रीन्स आर गोइंग बी प्लेइंग दिस मूवी एंड इट्स नॉट दैट इजी टू जस्ट से ओके वी वोंट प्ले इट. सो एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड होपफुली. एंड डेविड धवन, हु इज द डायरेक्टर, हु इज ऑल्सो वरुण धवन्स डैड, ही हैड सेड दैट ही इज बेसिकली रिटायरिंग आफ्टर दिस फिल्म. ही हैज रिटर्न टू द डायरेक्टर्स चेयर विद है जवानी तो इश्क होना है, जो आज रिलीज हुई है आफ्टर 6 years. And he had expressed his wish to retire. Anupam Kher, a friend of Dhawan for more than a decade, called him as soon as he heard and playfully scolded him. David Dhawan is my best friend, he said. I go to his house whenever I can. When I learned about his retirement decision, I called him and scolded him. Maine daata use. Typical of Anupam Kher, nahi? And he said, oh, what do you mean? This is your last film? Who are you to decide this is your last film? If the audience loves you, don't say this is my last film, Anupam Kher told him. And my father used to tell me that retirement is merely a state of mind, said Anupam Kher. As long as you can stand on your own feet and keep doing what you love, there is no reason to retire. Unfortunately, he later fell ill, but that belief has stayed with me. We are fortunate to be in a profession where there is no fixed age for retirement, Anupam Kher added. Anupam Kher and David Dhawan collaborated on films like Deewana Mastana and Bade Miya Chote Miya. Now, as far as about Hai Jawani is concerned, this film marks David's and Varun Dhawan's fourth collaboration. Apart from Varun, it also stars Mrinal Thakur, Pooja Hegde in lead roles with Mohini Roy, Rakesh Bedi, who's become very, very popular after Dharandhar, Rajesh Kumar, Manish Paul, who's my all-time favorite MC. He's such a great anchor, and others in key roles. Produced by Tips, the film has been mired in a legal battle with producer Vaishu Bhagnani, who filed rupees 400 crore suit alleging the use of unauthorized songs. But lagta hai wo settle hone wala hai. Or definitely David Dhawan was once called the king of comedy, and his career spans over 4 decades. And recently he had even given an interview jisme wo apne bete Varun ki bahut tareef kar rahe the aur bol rahe the he is such a caring person. And he's known to have delivered iconic hits with Govinda. His films also created, that is David Dhawan's films also created memorable on-screen pairings such as Amitabh Bachchan Govinda in Bade Miya Chote Miya, Sanjay Dutt Govinda in Haseena Maan Jayegi, and Akshay Kumar Salman Khan in Mujhse Shaadi Karogi. So with that, I'm going to play this trailer from the film, jisko aap definitely jaake support kijiye, Hai Jawani To Ishq Hona Hai.
1: ऐसी लव स्टोरी और ऐसी शादी तो हमने ना पहले कभी देखी थी ना कभी सुनी थी. Is he two timing you?
2: No.
1: Physical violence का मामला है, मारता वारता है तुम्हें?
2: No.
1: तुमसे प्यार नहीं करता?
2: बहुत ज्यादा प्यार करता है. He wants to make love to me all the time.
3: Oh. क्योंकि मुझे एक बच्चा चाहिए सर. I want to be a father.
4: Are you single?
5: Fully single.
4: I'm gonna go get another drink then.
5: बेवड़ी है क्या? चलेगी. एक्सक्यूज मी वानी,
2: याद है ना, I'm still your wife.
5: वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो?
2: I'm pregnant.
5: Congratulations. Who's the boy?
2: I'm pregnant.
5: पर मैंने प्रोटेक्शन यूज किया था.
2: हाँ तो प्रोटेक्शन फेल हो गया.
5: अरे ऐसे कैसे फेल हो सकता है? प्रोटेक्शन का काम है प्रोटेक्ट करना.
6: Let's go.
7: तूने शादी से पहले ही मेरी बहन को,
5: किस्मत मेरे बच्चे को मौका दे रहे कि वो मेरी शादी अटेंड करे सर, मामा रंधावा की गोदी में भांजा रंधावा सर.
7: वाह, ऐसो नजारो तो सूरज भर जातियों ने भी नहीं सोचो.
5: वहाँ पे पानी ठीक से नहीं आ रहा है, तुम यहाँ पे ना हो ना, जाओ खेलो कूदो शैम्पू पी जाओ.
7: यहाँ पे पीत वहाँ पे पानी,
5: मैं क्या करूँ?
7: पानी
2: बैग पर्स किसका है?
5: किसका किसका किसका किसका
2: किसका है?
7: किसका है? इसका है.
5: आउच, इसका है.
7: इसकी माँ की
6: टिकट कराओ।
5: माँ की आँख नहीं, पूरी की पूरी माँ चाहिए, निरूपा रॉय जैसी। अपने माँ की डिमांड की थी ना भैया, मेरी माँ आ गई।
2: वाह, दिल्ली दिल वालों की और लंदन
5: लेट इट बी माँ।
8: इसके दो दो लफड़े हैं, दो दो बच्चे होने वाले हैं।
5: I am going to expose

0: जसवा बाबू, दुनिया में तीन तरह का मिल होता है, टेक्सटाइल मिल, ट्रेड मिल और पहरा के मिल।
1: लंदन है लंदन यार। हाँ। दादर स्टेशन थोड़ी है कि बानी और प्रीत एक दूसरे से टकरा जाएंगे।

by the looks of it. The movie seems to be a complete laughter riot. और ये हो गई है ऑलरेडी रिलीज एंड डेविड धवन लगता है कि पूरे जोर शोर में अपना कमाल दिखाने वाले हैं डायरेक्शन का और उनके सपुत्र यानी कि वरुण धवन ही इज ऑल सेट टू कॉन्कर द स्टेज. अगर मस्ती करनी है और यू वांट हैव अ गुड टाइम देन व्हाई नॉट गो चेक दिस आउट. और इसी बात पे ये गाना आप लोगों के लिए. है जवानी तो इश्क

बिल्कुल लाफ्टर राइट है. 5 जून 2026 रिलीज्ड टिप्स फिल्म रिलीज. तो डेफिनेटली कास्ट भी अच्छी है, डायरेक्टर तो बहुत जोरदार है. उन्होंने क्या बड़ी बड़ी हिट्स दी हैं जिसके बारे में आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, बड़े मियां छोटे मियां एंड द लिस्ट गोज ऑन, दैट इज डेविड धवन. तो हिट के साथ एक और बात याद आई लिसनर्स, हैव यू ट्राइड पेज 3 ईटरी? From sizzling kebabs and flavorful chaat to fusion bites and refreshing mocktails, if you still haven't experienced Page 3 at Hub 121, you're seriously missing out. This is where bold Indian street food meets modern flair. Whether it's brunch, lunch, dinner, date night, or a foodie meetup, Page 3 brings the perfect mix of flavor, energy, and vibrant vibes. Visit Page 3 Eatery at Hub 121 and explore more at page3eatery.com. That's the number 3, page3eatery.com. तो अभी काफ़ी फिल्म्स इस वक्त जिसे कहते हैं ना एक्साइटमेंट बढ़ रहा है. एक और फिल्म आई है जो कि है वेलकम, एंड वेलकम ही नहीं है, इट्स गॉट लाइक अ ग्रेट कास्ट आई हैव टू से. वेलकम टू द जंगल है ये, और इसका टाइटल ट्रैक मैं आप लोगों के लिए प्ले करने वाली हूँ नेक्स्ट. विद दैट आई विल ऑल्सो हैव अ फ्यू मिनट्स. इफ यू हैव अ पर्टिकुलर सॉन्ग जो यू आर डाइंग टू हेयर दैट सॉन्ग, देन गिव मी अ कॉल. 9722355555 इज द स्टूडियो नंबर. दिस इज योर होस्ट पार्थ भाटिया. आई होप यू हैविंग अ वंडरफुल टाइम. आई श्योर आई एम हैविंग a blast playing all these songs and sharing all this fun fundas with you.

अगर आप इसका ट्रेलर देखेंगे आप हंस के पागल हो जाएंगे. इट्स सच अहमद खान की डायरेक्शन में ये फिल्म एंड इट हैज सच अ ह्यूज कास्ट, एक के बाद एक के बाद एक. मैं क्या क्या बताऊँ इस पर्टिकुलर फिल्म के बारे में. वेलकम टू द जंगल इज अनदर फिल्म टू लुक आउट फॉर. वो अभी रिलीज नहीं हुई है लेकिन होने वाली है. सो लिसन, लॉट्स इन स्टोर, एंटरटेनमेंट इज इन स्टोर. बस जिसे कहते हैं ना, मस्ती होनी चाहिए, खूब ग्रेट एनवायरनमेंट होना चाहिए वर्क एंड होम प्लेस पे, सो यू कैन हैव ए ब्लास्ट. और जहाँ इतनी बात हुई है जवानी तो इश्क होना है, जहाँ की चुनरी चुनरी को भजन भी कहा गया है, लेकिन इतना कुछ हंगामे में, वी डेफिनेटली विश कि वरुण धवन की ये फिल्म डज अ ह्यूज ब्लॉकबस्टर बन जाए, यही दुआ है. और इसी के साथ साथ मैं एक गाना आप लोगों के लिए प्ले कर रही हूँ, चुनरी चुनरी, लेट्स गो.

ऑलराइट, चुनरी चुनरी या मजा आ गया सुन के। है जवानी तो इश्क होना है, बस मस्ती है। ये लगता है 90s का फ्लेवर आ रहा है, तो मैं इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ क्योंकि इट हैज अ 90s फ्लेवर। डेविड धवन है, ऑफ कोर्स वरुण धवन इज फ्रॉम नाउ, बट जो भी कहो कि वो जो सेंसिबिलिटी होती है 90s की ये गानों की और वो शिफॉन सारीज की, वो सब नजर आने वाला है इस फिल्म में। और ये फिल्म हो गई है रिलीज टुडे June 5th। With that, I am gonna now sign off. I had so much fun bringing this show for you, as always. And bas aapke liye yehi dua hai listeners, that be safe, be brave, keep it real, genuine and happening with Fun Asia Radio, bringing the community together. And this is your host, Parul Bhatia, signing off.

0: Indigo is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
1: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
2: हाँ।
1: घर रिलोकेट करनी है?
2: हाँ।
1: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
2: हाँ भाई हाँ।
1: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
0: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
3: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। MyFamilyHomeLoan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट MyFamilyHomeLoan.com और कॉल 4697343338 4697343338 MyFamilyHomeLoan.com इज पावर्ड बाय लोन फैक्ट्री NMLS 2025289 लाइसेंस्ड मॉर्गेज ब्रोकर इन टेक्सस। ऑल लोन सब्जेक्ट टू क्रेडिट अप्रूवल। इक्वल हाउसिंग लेंडर।
4: क्रेविंग डिलीशियस इंडो चाइनीज एंड नॉर्थ इंडियन फूड? रेड हॉट चिली पेपर इज द प्लेस टू गो। विद लोकेशंस इन फ्रिस्को, मकीनी, रिचर्डसन एंड नाउ आवर न्यूएस्ट लोकेशन इन एलन एट वाटर्स एंड 121। वेदर यू आर डाइनिंग इन, टेकिंग आउट और केटरिंग, रेड हॉट चिली पेपर इज डैलस नंबर वन चॉइस फॉर इंडो चाइनीज एंड नॉर्थ इंडियन कुजीन।
5: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
6: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
7: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
6: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
8: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
9: इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग। और हाँ, कंपेटिटर कोट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
5: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
10: प्लीज डोंट से योर यूजुअल प्लेस अगेन, आई एम टायर्ड ऑफ द सेम फूड।
11: एक्सक्यूज मी, इट्स कॉल्ड बीइंग लॉयल,
10: इट्स कॉल्ड बीइंग प्रेडिक्टेबल।
11: ओके देन, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
10: And what's so special at Neon Cactus?
11: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, zabiya halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
10: Not bad.
11: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
10: Okay, this I didn't expect from you.
11: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
12: Yeah, this is Shakti Kapoor and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.

A very good afternoon to the listeners of 104.9 FM Financial Radio सुन रहे हैं आप. मैं हूं किरण आपके साथ. Thank you so much for connecting with us this afternoon. 2:30 till 5 PM I will be here. और like every day जो आपके लिए एक नया फ्लेवर आता है और आज भी बिल्कुल नया फ्लेवर मतलब फ्राइडे का फ्लेवर लेके आई हूं. 2:30 यानी कि अभी से लेके 3 बजे तक I will be playing mixed pot for you. कुछ नए गाने कुछ पुराने गाने. And then 3 till 4:30 PM it will be kids junction. बच्चा पार्टी रेडी हो जाइए. आई विल बी टेकिंग योर कॉल्स लाइव फ्रॉम 3 o'clock टिल 4:30 PM विल बी टेकिंग योर रिक्वेस्ट लाइव. एंड देन फ्रॉम 4:30 टिल 5 आई हैव ट्रैफिक अपडेट फॉर यू, वेदर अपडेट, एंड देर इज सो मच मोर दैट इज लाइंड अप थ्रू आउट द शो. बहुत कुछ है आपके लिए. बने रहिए मेरे साथ. चैनल बिल्कुल चेंज मत कीजिए. बिल्कुल सही जगह पे हैं आप. लेट्स बिगिन मिक्स पॉट राइट हियर ऑन सुनहरी किरण.

लिया गया था ये गाना जो आप मिक्स पॉट में सुन रहे थे, जया प्रदा और ऋषि कपूर पे पिक्चराइज लता जी और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ों में, और मूवी थी जी सरगम। जी हाँ, इफ आई एम नॉट राइट रॉन्ग, बिल्कुल मुझे चेक कर ले। हाँ जी, सरगम 1979 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। के विश्वनाथ ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था, और कहते हैं कि दिस वॉज बेस्ड ऑन शिवी शिरी मूवा, जो कि के विश्वनाथ ने ही बनाई थी एक दफ़ा पहले, और तेलुगू में, एक्चुअली तेलुगु फिल्म में 1976 में बनी थी, और उसके बाद इसका हिंदी वर्जन बना सरगम के नाम से 1979। एन एक्सट्रीमली पॉपुलर फिल्म विद एन एक्सट्रीमली पॉपुलर सॉन्ग जो अभी आपने डफली वाले सुना। तो मिक्स पॉट में आप जानते हैं, एक पुराना गाना और फिर कुछ नया गाना उसी की थीम से कनेक्ट करती हूँ, जैसे कि मेरे घुंघरू चाहते हैं नचा मैं नाचूं तू नचा, तो वहां से घुंघरू ऑफ वॉर फिल्म तक का सफर घुंघरूओं ने कैसे किया वो आपको प्ले करके बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको बताती चलूं कि अगर आपका कोई स्पेशल मोमेंट आ रहा है, एंगेजमेंट, एनिवर्सरी, सेलिब्रेशन, और यू जस्ट सिंपली वॉन्ट टू ट्रीट योर सेल्फ, देन मालाबार गोल्ड एंड Diamond is here to help you. They're located on Preston Road in Frisco. This is a place where you will find stunning diamond jewelry that's elegant, timeless, and crafted to shine. Engagement rings, earrings, dazzling necklaces, contemporary diamond styles, जो कुछ भी आपको पसंद है, जैसा भी आपको पसंद है वैसा ही आपको मिलेगा मालाबार गोल्डन डायमंड्स में। और जो सबसे स्पेशल बात है कि उनकी ऐप अवेलेबल है जी, सो नाउ यू शुड यू नो यू कैन गो टू योर ऐप स्टोर और डाउनलोड कीजिए मालाबार गोल्डन डायमंड की ऐप एंड चेक आउट देयर लेटेस्ट कलेक्शन अपडेट्स एंड सो मच मोर दैट इज अवेलेबल ऑन देयर ऐप। डू चेक आउट देयर ऐप एज वेल, एंड मालाबार गोल्डन डायमंड्स इज लोकेटेड इन फ्रिस्को, विजिट कीजिए।

टेकन फ्रॉम द मूवी वॉर. आपको सुना रहे थे कुछ घुंघरू से घुंघरू तक की कहानी, और अब अगले गाने की तरफ ले जा रही हूँ. मिक्स स्पॉट में टाइम है एक पुराने गाने का, अपनी वन ऑफ माई यू नो मोस्ट लाइक्ड मूवीज उस जमाने की, रॉकी से ये गाना आपके लिए लिया है. रॉकी फिल्म की जो है बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, वो आपको थोड़ा सा गाने के बाद बताऊंगी. फिलहाल आपको ये बता रही हूँ कि अगर आप किसी भी किस्म के इमिग्रेंट नॉन इमिग्रेंट वीजा पे हैं, या यू नो यू आर ऑन H1B, F1 या फिर L1, एंड यू आर प्लानिंग योर पाथ टू US सिटीजनशिप, US परमानेंट रेजिडेंसी, तो फिर द लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता से आप जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए. उनकी टीम, एक्सपीरियंस टीम, स्पेशलाइज करती है एक्सक्लूसिवली इन इमिग्रेशन लॉ, इंक्लूडिंग EB5 इन्वेस्टर वीजा, फैमिली एंड एम्प्लॉयमेंट वीजा, परम लेबर सर्टिफिकेशन एंड US सिटीजनशिप. और अगर आपको किसी भी इन चीज़ में या कोई भी आपका इमिग्रेशन का सवाल है और आपको कोई हेल्प चाहिए, तो उनको ईमेल कीजिए. द लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता, देयर ईमेल आईडी इज info@seemamehtalawfirm.com. दैट इज SEEMAMEHTA Law Firm. info@seemamehtalawfirm.com पे ईमेल अपनी ड्रॉप कीजिए विद एनी क्वेश्चन और इफ यू वांट कंसल्टेशन और व्हाटएवर योर कंसर्न इज, एंड देयर टीम विल गेट बैक टू यू. दिस इज वन ऑफ माय मोस्ट मोस्ट फेवरेट रोमांटिक सॉन्ग्स. क्या यही प्यार है?

रॉकी फिल्म से सुन रहे थे आप ये गाना, और आपको रॉकी फिल्म के बारे में बताते हैं जी। 1981 में रिलीज हुई थी दिस बॉलीवुड एक्शन रोमांस रॉकी, जिसने सुपरस्टार संजय दत्त के करियर को लॉन्च किया। द मूवी वाज डायरेक्टेड बाय हिज ओन फादर सुनील दत्त, और एक जो है कैमियो या आप कह लीजिए गेस्ट अपेयरेंस सुनील दत्त ने इस फिल्म में दी थी, लेकिन उसके लिए विनोद खन्ना जी को अप्रोच किया गया था। बट विनोद खन्ना ने जब इसको रोल को करने से इनकार कर दिया तो सुनील दत्त ने डिसाइड किया कि वो खुद इसमें स्टेप इन करेंगे, एंड दैट्स हाउ ही प्लेड दैट स्पेशल रोल और स्पेशल अपीयरेंस। और आपको बताएं जी कि दिस देयर वाज अ वेरी इस मूवी को संजय दत्त जब भी जिक्र करते हैं इस मूवी का, तो ये स्टोरी मैंने उनको खुद सुनाते हुए सुना है कि यू नो इट वाज अ वेरी ट्रेजिक मोमेंट, बिकॉज जस्ट डेज बिफोर द फिल्म्स प्रीमियर संजय दत्त लॉस्ट हिज मदर दी वेरी पॉपुलर नरगिस जी, वो कैंसर से उनकी डेथ हुई थी, और उनकी अल्टीमेट विश थी कि वो अपने बेटे को बड़ी स्क्रीन पे देखें, लेकिन वो विश पूरी नहीं हो पाई। एंड दैट इज़ वन स्टोरी दैट संजय दत्त डेफिनेटली कई बार जिक्र कर चुके हैं, और वही मैं आपके साथ जिक्र कर रही थी। सो दैट वॉज रॉकी फॉर यू, और अब आपको लेके जा रही हूँ अगले गाने की तरफ। रोमांस की बात हो रही है तो रोमांस तो जी हर जमाने में वैसा ही रहा है। ये देखिए, ये भी सुनिए फिल्म बागी का एक और रोमांटिक गाना।

और इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं जी. बस आखिरी गाना इस सेगमेंट का आपके लिए प्ले करूंगी और उसके बाद आपको लेकर जाऊंगी ब्रेक की तरफ, एंड देन वी विल एंटर इनटू किड्स जंक्शन. एक्साइटमेंट में मैंने ताली बजा दी. अच्छा जी, जो गाना अगला मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ, वो एक्साइटमेंट मुझे क्यों ना हो, मुझे मेरा मनपसंद गाना, पसंदीदा गाना है ये, वन ऑफ द पसंदीदा गानाज, बहुत ही जो है खूबसूरत. लेकिन उससे पहले, गाना प्ले करने से पहले, दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म्स इन द यूएस. दे ऑफर इनोवेटिव financial services and with untapped potential for both individuals as well as businesses. Trusted hain, efficient hain, and they get you ready for your future. To aap call kar sakte hain unhe, aapke paas koi bhi sawal hai, 469-942-9888 is their number, ya phir aap unki website visit kijiye, agfintax.com. And this one is taken from the movie Sharabi.

0: पूजा एसेंशियल्स ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ।
1: अच्छा तो सीधा वही ले चलो
2: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट
0: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
3: जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर अर्जेंट केयर एक्सरे सीटी स्कैन हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 days a week 8 AM to 8 PM वॉक इन एनी टाइम 9191 काइजरवे स्वीट 205 फ्रिस्को।
4: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी सीता की रसोई जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं प्रेम और सेवा परोसती थी और अब वही पवित्र स्वाद वही भाव श्री अयोध्या भवन में ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को।
5: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक
4: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग ओपन डेली फ्रॉम 7 AM लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
6: क्या मतलब?
7: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
7: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
8: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
1: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
10: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकौड़ा लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना फुल पंजाबी मोड ऑन फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल स्लो कुक्ड कीमा मटर रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस।
1: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGPT। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
11: सुनीता तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली।
12: हाँ बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
11: सेम टीचर सेम स्कूल फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
12: डिफरेंस स्कूल का नहीं है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
1: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर फ्रिस्को प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स सर्टिफाइड टीचर्स कंटिन्यूअस फीडबैक ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज। ट्राई लुमिटी यू सी द डिफरेंस। किड्स एजेस 5 to 13 कॉइट एंड Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
13: This is Uday Chopra and you are listening to Fun Asia Radio.
14: कितने आदमी थे?
15: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनेशिया सुनता है।

0: What, Chumka? What, Chumka?
1: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
2: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up, ye $1 million property bhi.
3: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
4: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
5: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Mark Hill is the leader Frisco needs to move forward together. As a former school board president, Mark has a proven record of integrity, fiscal responsibility and bringing people together. He values the vibrant contributions of our Asian and Indian communities, recognizing that our strength lies in our diversity and collaboration. Mark rejects divisive rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety, and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for Mayor. Let's build a stronger Frisco together.
7: Paid for by Mark Hill for Mayor.
8: सुनो कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
9: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
8: कहाँ?
10: फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट D-Vibe, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
11: फूडिस्तान इन ऑबरी. एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, वन वाइब.
12: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
11: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
13: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
14: Is shahar ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya? Kahin pe kala jadu? Dhuan dhuan. Kyun sab uljhe hain parivarik samasyaon mein? Kabhi padhai to kabhi naukri ki chinta. Zindagi ke raaste dhundle ho gaye hoon. To waqt hai sahi disha ka.
15: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
13: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
16: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो.
17: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
13: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
18: वेट, इतना सब और प्राइस?
13: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
19: मैं.
20: एक बात बता, रिटायरमेंट में सबसे स्कैरी क्या होता है?
21: क्या?
20: सैलरी बंद हो जाती है.
21: और बिल्स बंद नहीं होते.
20: एग्जैक्टली, इसलिए स्मार्ट लोग वेल्थ टैक्टिक्स से स्ट्रेटजी बनाते हैं.
21: मतलब?
20: ऐसी स्ट्रेटजी जहां इनकम रुकने के बाद भी पैसे का फ्लो बंद नहीं होता.
13: द वेल्थ टैक्टिक, स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉर योर रिटायरमेंट इयर्स. फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 4696932077 और विजिट देम एट thewealthtactic.com.
22: Drive a BMW, Mercedes or Audi? Then don't trust it with just anyone. German Motorworks in Richardson, expert European auto care, precision diagnostic and top tier service. All under one roof. From oil changes to brakes, they keep your drive flawless. Call 972-690-6623 today. German Motorworks, engineered for excellence.
23: हीरे मोती मैं ना चाहूं.
24: अच्छा,
0: मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: Hi, this is Vinay Pathak, and you're listening to me on Fun Asia Radio.
2: कितने आदमी थे?
19: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनेशिया सुनता है।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
3: जिस बात का डर था वही हुआ, लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन।
4: अरे कहना क्या चाहते हो?
5: डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आई, लैंग्वेज बैरियर का टेंशन भी, अब टेंशन का टाइम गया। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ मल्टी लैंग्वेज नर्सेज और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं। हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू प्रेफर। फ्रिस्को, प्लेनो, मैकिनी, अबरी, फ्लावर माउंट, इरविंग, प्रॉस्पर, एना, एनी लोकेशन यू आर क्लोज टू, कॉल 214-666-6259 और विजिट पैशन हेल्थ primarycare.com. Passion Health Primary Care. Your health, your language, your comfort.
6: Safar khoobsurat hai manzil se bhi.
7: अरे भाई वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट।
8: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन। चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर, लॉसिन ट्रैवल। फॉर नियरली 30 इयर्स लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स, वेकेशन पैकेजेस, क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस। लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री। कॉल नाउ 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
9: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई।

0: Journey smooth, affordable and tension free. Call now 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
1: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को।
2: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
1: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
3: इफ यू होल्ड H1B, F1, L1 और एनी अदर नॉन इमिग्रेंट वीजा स्टेटस एंड आर कंसिडरिंग द पाथ टू परमानेंट रेसिडेंसी, कॉन्टेक्ट द लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता। Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
4: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
5: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी, जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
4: K2 ड्राइव मतलब
5: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
4: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
5: 100%
6: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402. K2 Drive, Dallas's smartest fleet partner.
7: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.
8: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
9: कौन सा?
8: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
9: अरे सारे तो सेम है।
8: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला।
9: ओ हाँ, ये तो अलग है।
10: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
11: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
12: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, only on Fun Asia Radio.
13: The Dill of Dallas. Heart to Heart.

0: तार में चमकू जैसे जुगनू।
1: हावी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, यू आर माय फोर्थ कॉलर एंड यू आर द लकी विनर ऑफ दिस $20 गिफ्ट गिव अवे ब्रॉट टू यू बाय नियॉन कैक्टस। प्लीज गिव मी अ कॉल सो आई कैन टेक योर इन्फॉर्मेशन। हावी,

104.9 FM Fun Asia Radio सुन रहे हैं आप. आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण के ये आखिरी 20-22 मिनट मैं आपके साथ, यानी कि किरण. और ये गाना आप सुन रहे थे मूवी हक से. यामी गौतम और इमरान हाशमी पे पिक्चराइज्ड ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद की गई. नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी, अभी भी मौजूद है. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू चेक इट आउट. अच्छा जी, अब टाइम आ चुका है आपको ट्रैफिक अपडेट देने का. सबसे पहले आपको बताएं क्या नज़र आ रहा है डालस की रोड पे, क्योंकि आपका ड्राइव टाइम हो चुका है शुरू. एंड देर आर फ्यू एक्चुअली वन कोलिजन that I can see right now, that is at loop 12 towards Trinity River northbound, जिसकी वजह से one lane is blocked. The severity of the incident is reported high. So अगर आप यहाँ पे पहुँचने वाले हैं तो ज़रा ध्यान रखिए, this might be cause some problems for you. Another incident is a disabled vehicle that I can see at 35 east towards Wildwood Parkway southbound, जिसकी वजह से two lanes are blocked including an exit lane. और ये जो disabled vehicle है ये अभी report हुई है, कोई कह लीजिए आप 20 मिनट पहले. तो यहाँ पे थोड़ा सा बैकअप आपको फील होगा बिकॉज दिस इज रश आवर. सो इवन वन ब्लॉकिंग वन लेन कैन कॉज अ लॉट ऑफ बैकअप. सो प्लीज बी केयरफुल एंड बी विजिलेंट. बट दैट्स अबाउट इट दैट आई हैव फॉर यू वेयर ट्रैफिक इज कंसर्न. एंड दिस ट्रैफिक अपडेट वॉज ब्रॉट टू यू बाय उमर ख्वाजा, द लॉ ऑफिसर्स ऑफ उमर ख्वाजा. अच्छा जी, उमर ख्वाजा जी आपके लिए मौजूद हैं. आप का कोई भी कोई मसला है, जैसे कि कार या ट्रक एक्सीडेंट में आप इन्वॉल्व हैं, या फिर देर इज़ अ स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट, तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक अटर्नी की ज़रूरत होती है जो आपके लिए आपका पेपर वर्क, लीगैलिटीज़, इंश्योरेंस कंपनीज, निटिक्रिटीज ऑफ द सिचुएशन को हैंडल कर सकें. एंड अटर्नी उमर ख्वाजा एंड हिज टीम इज डूइंग राइट दैट फॉर यू. नॉट ओनली विद दे हेल्प यू फाइट योर केस, दे विल गेट यू द बेस्ट कॉम्पनसेशन. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग अंटिल यू विन. सो दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर यू. वो कहते हैं ना, राहत की एक खबर आपको दे रही हूँ. कोई ऐसी सिचुएशन है आपकी और समवन यू नो इज गोइंग थ्रू सच अ सिचुएशन, कॉल देम फॉर अ फ्री कंसल्टेशन. दैट नंबर इज 4693005046. या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, विच इज़ अटर्नी ओमार, OMAR, attorneyomar.com.

और इसी के साथ वक्त आ चला है आपको ट्रैफिक अपडेट, ट्रैफिक तो हो गई, वेदर अपडेट देने का. तो आज है जी फ्राइडे जून द 5th, 4:42 PM, एक्चुअली 4:43 PM इन द स्टूडियो. और सिटी ऑफ मिकिनी में इस वक्त है 82 degrees, हाउएवर इट फील्स लाइक 89 राइट नाउ. तो दिन तो रहा मोस्टली क्लाउडी विद 50% चांस ऑफ शावर्स एंड थंडरस्टॉर्म्स हियर एंड देयर. आपको कुछ बारिश होती हुई नजर आई, कभी हो जाती थी कभी रुक जाती थी. और साथ ही साथ आपको बताएं कि हाइज जो हैं वो इन द मिड 80s रहेंगे आज के दिन के, जबकि शाम जो है वो मोस्टली क्लाउडी रहेगी विद अ चांस ऑफ शावर्स एंड थंडरस्टॉर्म्स एंड देन चांस ऑफ शावर्स इन द इवनिंग और फिर आफ्टर मिडनाइट एज वेल. और जो टेम्परेचर्स हैं आपके लोज वो होंगे लोअर 70s में. पोलन काउंट आज का 2.3 विच इज वेरी लो, एक्सट्रीमली गुड न्यूज, जबकि यूवी इंडेक्स इज 8 विच इज काइंड ऑफ मीडियम हाई. और सनराइज आज का हुआ 6:17 6:17 AM पे, जबकि आज का सनसेट होगा 8:32 PM. अब इस गाने के बाद जब वापस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि वीकेंड है जी, तो ऑब्वियसली सैटरडे और संडे का टेम्परेचर जानना बहुत जरूरी है. आफ्टर दिस सॉन्ग आई विल टेल यू व्हाट आर वी लुकिंग एट ऑन सैटरडे एंड संडे.

गाने पे जाते हुए आपसे बताया था कि बताऊंगी आपको कि सैटरडे संडे का मौसम कैसा होने वाला है. तो जी कल मोस्टली क्लाउडी रहेगा इन द मॉर्निंग, देन बिकमिंग पार्टली सनी, शावर्स लाइकली विद अ चांस ऑफ थंडरस्टॉर्म, और ह्यूमिड होगा दिन विद हाईज इन द मिड 80s. जबकि शाम रहेगी पार्टली क्लाउडी इन द इवनिंग, देन बिकमिंग मोस्टली क्लाउडी, चांसेस ऑफ थंडरस्टॉर्म्स एज वेल एज अ चांस ऑफ शावर्स इन द इवनिंग. और फिर मिड नाइट के बाद भी कुछ कुछ ऑन एंड ऑफ आपको, मतलब कल का दिन बारिश का ही समा है. लोज जो हैं वो लोअर 70s में होंगे. और इसी तरह का कुछ मौसम हमें संडे को देखने को मिल रहा है. संडे का दिन रहेगा मोस्टली क्लाउडी इन द मॉर्निंग, देन बिकमिंग मोस्टली सनी, शावर्स लाइकली विद अ चांस ऑफ थंडरस्टॉर्म्स, कहीं कहीं बारिश होगी, कहीं कहीं आपको शायद खुला आसमान मिल जाए. मिड 80s तक टेम्परेचर जाएगा, जबकि शाम जो है वो पार्टली क्लाउडी रहेगी. लकीली बारिश नहीं नजर आ रही शाम में. लोज जो है वो मिड 70s में रहेंगे. तो ये था आपके लिए एक क्विक रिकैप कि आपका सैटरडे और संडे कैसे होने वाला है, बिकॉज हम वीकडे पे वीकेंड्स पे बहुत कुछ प्लान करते हैं, एंड वी ऑल वांट द वेदर टू बी एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव.

And it is time now to give you the currency update. US dollar kaha stand kar raha hai with respect to other currencies in the world. Friday, June the 5th, 4:53 p.m. in the studio. And according to xrates.com, euro is par trade kar raha hai 0.86 pe with respect to one US dollar. British pound 0.74, jabke Indian rupee 95.27 pe stand kar raha hai. Canadian dollar 1.39 pe trade kar raha hai, jabke Nepalese rupee 152.51 पे ट्रेड कर रहा है. पाकिस्तानी रुपीस 278.46 पाकिस्तानी रुपीस आर ट्रेडिंग फॉर वन यूएस डॉलर, जबकि बांग्लादेशी टका 122.77 बांग्लादेशी टका इज अ ट्रेडिंग फॉर वन यूएस डॉलर. आफ्टर वी कम बैक फ्रॉम द सॉन्ग, आई विल गिव यू द गोल्ड प्राइस अपडेट.

And it is almost time to say my byes to you. But before that, it is time to give you the gold price update. Aaj hai ji, Friday, June the 5th. Aur is waqt, according to goldprice.org, gold price per ounce hai $4,328.60. Jabke 1 gram sone ki keemat right now is $139.17. Kal ki nisbat, actually, aaj 1 gram sone ki keemat mein $4.78 की कमी देखने को मिली, जबकि एक आउंस सोने की कीमत में $148.66 की कमी देखने को मिली. तो काफ़ी प्राइस आज ड्रॉप हुई है गोल्ड की. अगर आप सुन रहे सोच रहे हैं गोल्ड की शॉपिंग का, तो मे बी इट इज़ टाइम फॉर यू. बट दैट वाज ऑल दैट आई हैव फॉर यू योर फाइनेंस मैटर्स राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून राइट टाइम विद सुनहरी किरण. इट इज टाइम फॉर मी टू से बाय. यू गाइस हैव अ लवली रेस्ट ऑफ योर डे. एंजॉय योर वीकेंड. एंजॉय योर समर वेकेशन हॉलीडेज. Wherever you're going, guys, have a lovely, lovely and a safe trip. I will see you next time. Thank you for tuning in.

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Jis baat ka dar tha, wahi hua. Lymphosarcoma of the intestine.
7: Arre, kehna kya chahte ho?
8: Doctor ki baat samajh hi nahi aayi. Language barrier ka tension bhi. Ab tension ka time gaya. Passion Health Primary Care ke saath multi-language नर्सेस और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं. हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू प्रेफर. फ्रिस्को, प्लेनो, मैकिनी, अबरी, फ्लावर माउंट, इरविंग, प्रॉस्पर, एना, एनी लोकेशन यू आर क्लोज टू, कॉल 214-666-6259 और विजिट passionhealthprimarycare.com. Passion Health Primary Care, योर हेल्थ, योर लैंग्वेज, योर कम्फर्ट.
9: हे मैप्स, टेक मी टू माई देसी ग्रोसरी स्टोर.
10: कैलकुलेटिंग राउट, रीराउटिंग.
9: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
10: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार, फोर्ट वर्थ.
9: क्यों?
10: क्योंकि फोर्ट वर्थ, केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ.
9: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
11: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट,
10: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
12: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal.

0: How do you feel about it? It is Friday, दोस्तों 104.9 FM Fun Nature Radio सुन रहे हैं आप. मैं आ चुकी हूँ. मेरा नाम तो आप जानते ही होंगे, नवनीता है. और अभी अभी किरण इतना सा खूबसूरत सा शो करके यहाँ से निकली हैं और बजा रही हूँ मैं आज ये शाम के गीत, क्योंकि मैं हूँ खुश एंड आई एम ड्रॉपिंग इन द वीकेंड अर्ली. आफ्टर ऑल फ्राइडे आ चुका है. Hey you.
1: Hey.

सुपर, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। एंड मैंने कहा ना कि वीकेंड ड्रॉप इन हो जाता है अर्ली, फ्राइडे की शाम ऐसी होती है, आप खुश, मैं खुश, हम सब खुश, एंड द मूड इज इन अ डिफरेंट मूड, द मूड इज ऑफ अ वीकेंड।

आज का सीन सिंपल है, म्यूजिक मस्ती और मैं। नाम तो सुना होगा, नवनीता। गाने होंगे, गॉसिप होगा, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़े गेम्स, थोड़ा नया स्वैग होगा, मतलब फुल ऑन।

चुनर चुनर, ये दिस इज द मूवी दैट इज रिलीजिंग है, जवानी तो इश्क होना है, और ये आज ही रिलीज हुई है। सुपर डुपर फनी जो फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूशन हैज ब्रॉट दिस अमेजिंग फिल्म जिस का नाम है जवानी तो इश्क होना। यार है जवानी तो इश्क होना है ना, हम बोल ही नहीं सकते विदाउट सिंगिंग द सॉन्ग है जवानी तो इश्क होना है। और वही गाना जो सलमान खान ने गाया था उस ज़माने में इज़ द नेम ऑफ द मूवी। और हाल ही में आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू वरुण धवन फॉर दिस मूवी, एंड आई विल बी प्लेइंग दैट इंटरव्यू इन अ लिटल बिट। इट इज़ सो सो सो कूल दैट वरुण धवन इज़ इन द बिग थिएटर्स राइट नाउ। तो आप जो भी कर रहे हो इस वेडनेसडे, इस वीकेंड, दिस इज़ अ मूवी दैट यू नीड टू गो टू। ही सेज कितने दिन बाद एक कॉमेडी आ रही है, दिमाग को साइड पर रखो और धमाल में घुस जाओ। यू नो वी हैव सो मच स्ट्रेस, everybody, the world is in so much stress, and you need such movies to really take off your stress, and I completely believe that that's true, kyunki kitna kuch chal raha hai right hamare sab ki zindagi mein, aur phir thoda sa stress idhar se udhar ho jaye to super hai na, absolutely।

आखिरी थी सैनन शाहिद कपूर लाल पीली अखियां 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो सुन रहे हैं मेरे साथ मैं आपकी होस्ट नवनीता ये 5 से 8 स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो सिलसिला जारी रहता है सुपर सुपर कूल और ये जो बहुत खास शाम आपकी हमारे बीच होती है On Funija Radio is all about lovely songs for the evening on a Friday. Sham jo drop in ho jata hai weekend ka excitement.

0: यार ये हो ही जाता है, कभी क्यों हो जाता है ये तो मुझे नहीं पता क्यों हो जाता है। बट यू नो झेलू राम ना पौधों में पानी दे रहे थे, और तभी उनकी जो वाइफ है वो उधर आई और बोली कि हे झेलू राम सुनो, तुम्हारे मोबाइल में मैंने कुछ देखा है, तो जैसे पानी दे लो ना पौधों में, आना कुछ बात करनी है तुमसे। पता है 2 दिन हो गए झेलू राम अभी तक पौधों में पानी ही दे रहे। वो जो ना पानी का जो पाइप होता है ना अभी तक छोड़े ही नहीं है। सुपर, दैट इज झोलू राम फॉर यू दोस्तों। आप कैसे झोलू राम क्यों बोल रही हूँ मैं, झीलू राम बेचारे नाम ही मैंने ही बदल दिया है उनका। लेकिन ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, अगर आप यू हैव सम अमेजिंग टाइम इंफॉर्मेशन दैट यू रिक्वायर, माई टाइम एक्विटी लेड बाय CBS सुधीर पाए हेल्प्स इंडिविजुअल एंड फैमिलीज बिल्ड स्मार्टर फिनेंशियल स्ट्रेटजीज थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल इस्टेट अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स। वेदर यू आर प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ, रिटायरमेंट और ग्रोइंग योर इन्वेस्टमेंट, माई टाइम एक्विटी ऑफर्स पर्सनलाइज सोल्यूशन डिजाइन अराउंड योर गोल्स। आप विजिट कर सकते हो उनको myTimeEquity.com पर। यू कैन कॉल 4697021272 टुडे, 4697021272। लेट्स टेक अ ब्रेक, आप कहीं मत जाएगा।
1: Frisco is growing fast and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
2: Are you tired of the same arguments, reactions, and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents, and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques, and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
3: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
4: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
3: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
4: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
3: ये क्या होता?
4: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
5: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
6: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
7: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
6: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
7: वेट, व्हाट?
8: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
9: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
8: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
10: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
11: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
10: K2 ड्राइव मतलब?
11: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
10: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
11: 100%
12: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402 Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
13: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
14: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply. In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
15: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
16: Hi, this is Shraddha Pandit and you're tuned in to FunAsia Radio.
0: How are you guys this Friday evening? Right here for you. So, you know, priorities hoti hai life mein. Aap manenge na? If someone is really into you, you don't have to keep begging them for a text, call or to spend time. They'll do it for you anyways. If you are a priority. तो जिंदगी में कोई अगर प्रायोरिटी नहीं हो वहीं पर चूक हो जाती है. चाहकर भी पूछ नहीं सकते हाल उनका. डर है कहीं कह न दे कि ये हक तुम्हें किसने दिया. कौन है प्रायोरिटी?

0: वाओ वाओ, तो जब ऐसे है कि जब भी कुछ भी अच्छा हो जाता है आपके सामने, वाओ निकल ही जाता है. और ये वाओ ऐसा है कि सैल्स चिकन इज ब्रिंगिंग द अल्टीमेट वाओ, द इनफर्नो स्पाइस चैलेंज. हियर्स अ डील. करना क्या है, यू हैव 10 मिनट्स टू फिनिश 3 जम्बो एक्स्ट्रा हॉट टेंडर्स. एक्स्ट्रा हॉट 3 जम्बो विथ ओनली 1 कप, एब्सोल्युटली नो डिपिंग, ओके. एंड द प्राइस, totally worth the pain. Finish 1 jumbo tender, get a free sandwich every day for 7 days. So ye nahi hai ki wo jumbo kha ke aap usi samay sandwich kha rahe ho, not at all. So you get a free sandwich every day for 7 days and finish 2 jumbo tenders, enjoy free sandwiches for 15 days. Aap itne spicy jumbo kha sakte ho, to why not? I mean, this is such a cool thing happening. And if you conquer all 3 inferno tenders, you win the grand prize, the grand one, a free sandwich every Saturday, June 6th, 4 p.m. Sal's Chicken, Richardson mein hone wala hai ye. Aur ye jo jo every day milega for 30 days. Sorry, I couldn't read that. But it is for not 7 days, not 15 days, but 30 days. Saturday, June 6th se shuru hota hai, 4 p.m. Sal's Chicken, Richardson. Participation is absolutely free. Just be ready to sign a waiver before you take on this leap. Oh my God, wo jumbo spicy aap jab khaoge tender, you need to be prepared to take the heat. Visit Manager website to register. Ask to follow Sal's Instagram page. Okay, you are asked to follow Sal's Instagram page. तो ये तो फॉलो करना है, और फिर 3 जम्बो एक्स्ट्रा हॉट टेंडर्स खाना है. यार आई थिंक हमारे को अगर एक्स्ट्रा हॉट कुछ मिल जाए तो आई एम श्योर लॉट ऑफ यू वुड बी एबल टू क्रैक इट. आई हैव फुल फेथ. मुझे तो लग रहा है ये तो बहुत सारा कुछ उन भी फ्री दे देंगे 30 डेज के लिए, क्योंकि देर आर सो मेनी पीपल हु ईट सो मच स्पाइस एंड फॉर यू इट्स अ ट्रीट. मतलब दोनों हाथ में लड्डू है, एक में तो आपको मिल रहा है ये 3-3 फ्री खाने को, और उसके बाद अगर आप तीनों खा ले तो 30 डेज तक सैंडविच. ओ माई गॉड, सो ट्राई इट आउट.
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
2: अरे सारे तो सेम है.
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
2: ओ हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
2: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
4: हाँ.
2: घर रिलोकेट करनी है?
4: हाँ.
2: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
4: हाँ भाई हाँ.
2: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
5: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
10: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
11: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है.
10: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है.
11: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है.
3: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स. पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज. ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस. किड्स एजेस 5 to 13, कॉइट एंड Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
12: अपनी roots भी और Texas का swag भी दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में. Royal Sona Masoori Rice हो, नानक पनीर हो या पार्ले जी बिस्किट्स, वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे.
10: और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यहीं मिलते हैं। एक ही ट्रिप, एक ही स्टोर और सारा सामान डन। तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ। HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर।
4: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
3: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
13: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
14: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
13: क्या मतलब?
14: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
13: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
14: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
13: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
15: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
16: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah. It's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.
0: किसी ने कहा, नुक्स निकालते हैं लोग इस कदर हम में जैसे उन्हें खुदा चाहिए था और हम इंसान निकले। वेलकम बैक दोस्तों, 104.9 FM फन एशिया रेडियो सुन रहे हैं ऑन दिस फ्राइडे इवनिंग। द वीकेंड वाइब हैज ड्रॉप्ड एंड आई होल यू आर वाइबिंग विद इट।

कहते हैं ये लॉन्ग ड्राइव काइंड ऑफ म्यूजिक वाइब है जो आप हमें तुम चुन लो सुन रहे थे. ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे हैं 104.9 FM फनी जा रेडियो. जिन लोगों ने ट्रेलर देखी हुई है बंदर फिल्म की, इट्स लुकिंग सुपर. बॉबी देओल आफ्टर धुरंधर, ही इज़ रियली कम्प्लीटली एंड टोटली बैक. और ये जो बॉबी देओल कर रहे हैं, इट इज़ एनिमल. आई एम सॉरी, नॉट धुरंधर. वी वर कंपेयरिंग अदर कैरेक्टर्स ऑफ धुरंधर टू बॉबी देओल इन एनिमल. पछी कम्प्लीटली डिड अ ऑसम जॉब इन एनिमल. और सोचिए एनिमल के बाद वो बंदर कर रहे हैं, विच इज़ अ रियल एनिमल, बट बंदर लुक्स अमेजिंग. द स्टोरी इज़ हॉन्टिंग एक्चुअली. समर मेहरा का रोल प्ले कर रहे हैं बॉबी देओल, वंस फेमस सेलिब्रिटी हु सफरिंग फॉर रेलेवेंस सिंस हिज स्टारडम इज फेडिंग. तो कम होती जा रही है उनकी स्टार डम एंड ही एक्सप्लोर्स अ डेटिंग ऐप. तो डेटिंग ऐप पे जाते हैं एंड ही स्टार्ट्स डेटिंग अ वुमन कॉल गायत्री, जो ऑब्सेस्ड है इस स्टार से और बहुत बड़ी फैन भी है. और इन लोग डेटिंग करना शुरू कर देते हैं और फिर देयर इज अ फॉल आउट एंड शी डिसाइड्स टू टेक अ एंड एवेंज हिम, यू नो, बाई एक्यूजिंग हिम ऑफ रेप. एंड नाउ दिस इज़ हाउ द स्टोरी बिगिन्स. और सच हुआ, अनुराग कश्यप ने, यू नो, ही रियली मेक्स डार्क फिल्म वेरी इंटेंस. एंड पूरा जो फिल्म है, इट कीप्स यू ऑन द सीट, यू ट्राइंग टू फिगर आउट क्या सच्चाई है और क्या नहीं है. जेल पहुंच जाते हैं और इतने बड़े सेलिब्रिटी है. बॉबी देओल हैज़ डिलीवर्ड परहैप्स द स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ हिज करियर. वी सी हिम ट्रांसफॉर्म विद ईच पासिंग सीन, फ्रॉम अ मैन हु इज़ कॉन्फिडेंट इनफ टू फेस द मीडिया टू अ मैन ट्राइंग टू रिकॉल एंड क्वेश्चन हिमसेल्फ इन हिज ड्रीम्स. अ मैन हु वॉन्ट्स टू फाइट एंड देन बेग टू जस्ट डू एनी थिंग टू लेट हिम आउट ऑफ जेल, टू अ मैन हु बेग्स फॉर मनी टू सर्वाइव जेल एटलीस्ट. और बहुत कुछ है ये कैरेक्टर में, बहुत सारे साइड्स हैं. एंड बॉबी देओल डज सुपर सुपर डुपर जॉब ऑन इट. उनकी बहन बनती है सानिया मल्होत्रा, जो लॉयर है, हु इज़ ट्राइंग टू डिफेंड हिज ब्रदर. और उन्हें भी कभी विश्वास होता है, कभी नहीं होता है. और सपना पाबी है वो लेडी जिन्हें ये डेट कर रहे होते हैं, वो भी क्या कैरेक्टर प्ले करती हैं, आप ही के दिमाग में घुस जाएंगी. इट विल रियली मेक यू अनकम्फर्टेबल. सो आई वुड गिव इट 4.5 स्टार फ्रॉम माई साइड. इट रियली लुक्स दैट गुड एंड द फिल्म इज़ कॉल्ड बंदर. और काफ़ी लोग आप नहीं जानते होंगे, बट ये बंदर कम्प्लीटली विल ब्लो योर माइंड. And when it is once again Bobby Deol, Bandar is making, you know, good amount of interest it is developing through word of mouth.

कम ऑन बेबी, द सॉन्ग एक्चुअली इज फ्रॉम द फिल्म बंदर, और उस बंदर को देखने के लिए बिग थिएटर्स में जाना पड़ता है, और सिनेमा को एंजॉय करने के लिए बिग थिएटर्स में डेफिनेटली जाना पड़ता है। 104.9 FM फनी जो रेडियो सुन रहे हैं आप, मैं आपकी होस्ट नवनीता, और जाना पड़ता है आपको अगर कहीं, तो वो भी हो सकता है कि कभी ज़िंदगी में ऐसा प्रॉब्लम ना हो, बट होए तो सबसे पहले उमर ख्वाजा के पास। इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन अ कार और ट्रक एक्सीडेंट और अ स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट, अटर्नी उमर ख्वाजा विल फाइट योर केस एंड यू एंड गेट यू द कॉम्पेंसेशन दैट यू डिज़र्व। कोई भी समय आप डील कर रहे हो इंश्योरेंस कंपनी से, आफ्टर द सिचुएशन विच यू कम अक्रॉस विद एन एक्सीडेंट, इट फील्स स्ट्रेसफुल, यू नीड एन अटर्नी दैट विल मेक श्योर यू आर कॉम्पेंसेटेड, एंड दैट इज़ उमर ख्वाजा। यू डोंट पे अंटिल यू विन। और फ्री कंसल्टेशन के लिए आज ही फ़ोन उठाइए, नंबर दबाइए 4693005046। आई नो तभी होता है जब एक्सीडेंट हो जाए, तभी हम फ़ोन उठाते हैं, नंबर दबाते हैं, दैट इज़ हाउ इट इज़। सो इट इज़ द नंबर 4693005046। आपके स्पीड डायल में यू नो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में इस नंबर को डाल दीजिए, कब ज़रूरत पड़ जाए यू हैव नो आइडिया। विजिट अटर्नी उमर डॉट कॉम। एक फरमाइश आई आज सैम साहब, आपकी ये फरमाइश, चलिए लेट्स प्ले इट राइट हियर राइट नाउ।

0: call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
1: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
2: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
3: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
2: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
3: फूडिस्तान इन ऑबरी. एवरीथिंग देसी. One place, one vibe.
4: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. FunAsia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
5: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
3: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी. तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
6: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
7: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं.
8: वेलकम, नमस्ते, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, कैमुनाचो केम छो, स्वागत है आप सबका 104.9 FM फन एशिया रेडियो पर, आपका रेडियो स्टेशन. एंड दिस फ्राइडे इवनिंग वी आर टोटली सेलिब्रेटिंग द डे.

दिल से आवाज निकलती है ना, ओ माय गॉड, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे. और वैसे ही दिल से आवाज निकलनी चाहिए. एंड इस फ्राइडे को आई एम टेकिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ सेलिब्रेटिंग अ स्टार. स्टार कलाकार को मुबारकबाद दे रही हूँ. मजे आएंगे इनके गाने सुन के, क्योंकि शी इज समबडी फ्रॉम रियलिटी शो ड्रीमर टू बॉलीवुड हिट मेकर. और आज हम इस पावर हाउस ऑफ एनर्जी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं विद चार्ट बस्टर्स इन्फेक्शियस स्माइल. फ्रॉम ऑडिशनिंग ऑन यू नो सिंगिंग रियलिटी शो टू बिकमिंग वन ऑफ बॉलीवुड्स बिगेस्ट वॉइसेस. और इनकी जो जर्नी है ना, बहुत ज़्यादा ही इंस्पायरिंग है, क्योंकि कुछ नहीं रह के सिर्फ एक ड्रीम करके उस ड्रीम से कैसे कैसे आगे बढ़ते हुए एब्सोल्युटली सबके दिलों में राज करने लगी हैं. कौन हो सकती हैं? कुछ ना कुछ गिव अवे मिलेगा अगर आप इसका जवाब दे सकें इस म्यूजिक में भी के बाद. चांस टू विन अ $10 गिफ्ट कार्ड बाय आंसरिंग दिस. यू कैन जस्ट विन इफ यू आर क्रेविंग समथिंग चीजी विद अ देसी ट्विस्ट. मैं बताऊंगी क्या मिलेगा, बट खाने के बाद नहीं, गाने के बाद.

0: ब्यूटीफुल सॉन्ग 104.9 एफएम फर्नीचर रेडियो. स्वागत है आपका. हाय, वेलकम टू फर्नीचर रेडियो.
1: हाय,
0: जवाब पता है आपको? नेहा कक्कर. उनकी आवाज. व्हाट इज योर नेम?
1: सॉरी,
0: आपका नाम क्या है?
1: मेघा.
0: आप होल्ड ऑन कीजिए. एब्सोल्युटली द राइट आंसर. आपका फेवरेट सॉन्ग क्या है नेहा कक्कर का?
1: काला चश्मा.
0: ऑल राइट, दैट विल आल्सो कम प्ले, क्योंकि ये जब मैं वो सेगमेंट कर रही हूँगी उनके हिट सॉन्ग्स की, तब आई विल प्ले दैट फॉर यू नेहा. नो, योर नेम इज मेघा, राइट? सो पता है आपको मिलता है फन पिज्जा किचन से एक खास गिव अवे. सो फन पिज्जा किचन में फ्लेवर्स मीट फायर, और जो भी वेजी लवर्स हैं, ट्राई द अचारी पनीर पिज्जा पैक्ड विद दैट टैंजी अचार पंच एंड सॉफ्ट पनीर मेल्टिंग इन स्पाइसी मैजिक. एंड फॉर द मीट लवर्स, द तंदूरी चिकन पिज्जा इज प्योर स्मोकी परफेक्शन स्ट्रेट फ्रॉम द तंदूर टू योर टेस्ट बड्स. सो वेदर यू लाइक इट बोल्ड और ब्यूटिफुली बैलेंस्ड, देयर इज अ स्लाइस वेटिंग फॉर यू एट फन पिज्जा किचन. आप डिटेल्स के लिए फन पिज्जा किचन जा सकते हैं, लेकिन आपको मिल रहा है $10 का गिफ्ट कार्ड. तो आप उधर जाके कुछ भी, मेरे तो मुंह में पानी आ चुका है, आप बस खा ही लीजिएगा. ओके मेगा, डोंट गो एनीवेयर. हाँ, सॉरी.
1: Sure, thank you.
0: Thank you. Don't go. I need your information. So, आप hold कीजिए. I will just make you on hold. तो ये मेघा ने जीत लिया है. ये बहुत ही खास. लेकिन नेहा कक्कर को ही हम celebrate कर रहे हैं. और एक और गाना हो जाए ये giveaway के बाद. चलिए फिर इसके बारे में बताती हूँ मैं.

सुपर, सच अ फन सॉन्ग. आप इसको देखेंगे बिना बहुत मजा आने वाला है. इतने दिन बाद मैं देख रही हूँ ये गाना बजा के फॉर नेहा कक्कर. यस, वी आर सेलिब्रेटिंग हर. सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण एंड डायना पेंटिस फिल्म में, एंड प्रीतम का गाना, बट आवाज है नन अदर देन नेहा कक्कर, जिनको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज. उनका जन्मदिन एक्चुअली कल है, टुमारो 6th of June. और ये एक्ट सब कुछ उन्हें परोसा हुआ नहीं मिला है. शी स्ट्रगल फॉर ईयर्स एंड शी वॉज बॉर्न इन ऋषिकेश. डिवोशनल गाने गाती थी अपने ब्रदर एंड सिस्टर के साथ एट अ वेरी यंग एज, एंड शी ऑडिशन फॉर इंडियन आइडल एज अ टीन एजर, और वहाँ उन्हें रिजेक्शन मिली. 16-18 ईयर्स ओल्ड की थी 2006 में व्हेन शी वॉज एलिमिनेटेड क्वाइट अर्ली इन द कॉम्पिटिशन. वैसे फिर भी शी फिनिश्ड इन द 10th प्लेस. और पता है, एक अच्छी एक्साइटिंग बात है जो शायद आपको नहीं पता हो इस रिजेक्शन के बारे में. एक्टर आयुष्मान खुराना बाद में रिवील किए हैं कोई एक इंटरव्यू में दैट ही एंड नेहा वर एक्चुअली रिजेक्टेड फ्रॉम द शो ऑन द एग्जैक्ट सेम डे एंड इवन टुक द सेम ट्रेन बैक फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली टुगेदर. वाओ, कैन यू बिलीव, टू बिग स्टार्स इन द मेकिंग, टू कम्प्लीटली इमोशनली डाउन, एक ही ट्रेन में दोनों रिजेक्शन के साथ, और दोनों ट्राई कर रहे हैं बॉलीवुड में अपना नाम बनाने को. एंड आज देखिए, नेहा कक्कर का भी नाम है, आयुष्मान खुराना का भी नाम है, और वो बैक इन रिट्रोस्पेक्ट देखते होंगे अपनी ज़िंदगी को, तो उन्हें लगता होगा कि गॉश, कैन यू बिलीव इट, दैट ट्रेन जर्नी वी वर सो इमोशनल. और बात तो क्या हो रहा होगा, छोड़ो मेरे लिए नहीं था, यू नो, आई डोंट नो व्हाट दे वर टॉकिंग, बट समथिंग लाइक ऑन दोज लाइन्स. व्हेन यू आर रिजेक्टेड वंस, यू आर क्राइंग, कभी डिनाइल में होते हैं, फिर हंस के उड़ा देते हैं, यार छोड़ो, ज़िंदगी ऐसी होती है, सामने देखो, आगे देखो, एट्सेट्रा. बट आफ्टर डिलीवरिंग मेजर दिस होने के बाद, सबसे अमेजिंग बात ये हुई कि इंडियन आइडल ने उन्हें रिजेक्ट किया. बाद में वो इंडियन आइडल में ही शी केम एज अ जज. हाउ इंटरेस्टिंग, जिंदगी टेक्स अ फुल सर्कल समटाइम्स, एंड इट शोज यू गाइज, डोंट हताश मत होइए, निराश मत होइए. क्या पता आप जज बन के आना हो आपको. यू डोंट नीड टू बी अ कंटेस्टेंट एनी मोर. यू नो नॉट व्हाट्स हैपनिंग, व्हाई इज हैपनिंग, एंड सेलिब्रेटिंग नेहा कक्कर.

0: Nobody gets a party started quite like Neha Kakkar. I hope you will agree to that. But struggle kiya inhone bahut saal Indian Idol ke baad bhi. Ye dance numbers aur party tracks ke saath hi recognition mili. Chaliye baat karenge break ke baad.
1: Mark Hill is the leader Frisco needs to move forward together. As a former school board president, Mark has a proven record of integrity, fiscal responsibility and bringing people together. He values the vibrant contributions of our Asian and Indian communities, recognizing that our strength lies in our diversity and collaboration. Mark rejects divisive rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for Mayor. Let's build a stronger Frisco together.
2: Paid for by Mark Hill for Mayor.
3: Jis baat ka dar tha wahi hua. Lymphosarcoma of the intestine.
4: Are kehna kya chahte ho?
5: Doctor ki baat samajh hi nahi aayi. Language barrier ka tension bhi. Ab tension ka time gaya. Passion Health Primary Care ke saath multi-language nurses aur doctors hamesha aapke saath hain. Hindi, Telugu, English, any language you prefer. Frisco, Plano, McKinney, Abri, Flower Mound, Irving, Prosper, Anna. Any location you are close to. Call 214-666-6259 or visit passionhealthprimarycare.com. Passion Health Primary Care. Your health, your language, your comfort.
6: Mamu, देखो क्या हो गया?
7: ओ क्या हो गया?
6: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
7: ओए जर्मन का कमाल है।
6: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
7: ओ नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623 कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
8: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
9: भूख लगी जोरों की
8: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
10: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
8: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 McKinney.
11: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.
12: घर की याद नहीं आई तुझे जैसी?
13: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ।
14: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट।
13: सच में बिल्कुल घर जैसा।
14: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुल्चास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर। लोकेटेड इन इरविंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट। चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम।
15: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
16: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
15: That magic removal ho, love and relationship issues ho, get trusted solutions with 100% privacy.
16: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn. Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
17: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था। ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं। आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक। फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया। उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले। हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी। उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ।
15: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR, द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा। आपका हक, उनके जिम्मेदारी।
18: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी। वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
19: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
15: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगा, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
20: वेट, इतना सब और प्राइस?
15: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
21: मैं हीरोइन हूं।
22: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
23: तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।
0: वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सबका 104.9 FM फन एशिया रेडियो पर। हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं नेहा कक्कर को, जन्मदिन है उनका कल। उनके जो स्ट्रगल्स रहे हैं, एंड शी गॉट फेमस फ्रॉम बीइंग नोबडी टू रियली गार्निंग अ लॉट ऑफ स्पेस इन पीपल्स हार्ट, एंड शी गॉट लॉट्स ऑफ रिकॉग्निशंस विद डांस एंड पार्टी ट्रैक्स। बिकेम अ यूथ आइकॉन एक्चुअली विद अ एनर्जेटिक वॉइस, मतलब जब गाती है ना तो टोटल एनर्जी और सबको नचा देती हैं। छोटी सी नन्ही सी वैसे हाइट में है, लेकिन शी हैज़ द पावर हाउस ऑफ वॉइस दैट शी हैज़। और पता है, ये नेहा कक्कर को हम पार्टी सॉन्ग्स से तो जानते ही हैं, बट शी ऑल्सो डिलीवर्ड सम वेरी ब्यूटिफुल इमोशनल एंड रोमांटिक हिट्स। उसके बारे में बाद में बताएंगे, लेकिन ये वाला पार्टी सॉन्ग तो बजना ज़रूरी है।

ये है हमारी नेहा कक्कर, काला चश्मा. द सॉन्ग दैट शी सांग टोटली बिकेम अ ब्लॉक बस्टर सॉन्ग, एंड हर वाइब, हर एनर्जी इन ईच सॉन्ग दैट शी पिक्स अप इज सुपर डुपर कूल. वैसे इतना है तो एनर्जीज से भरी हुई इनकी गाने होते हैं, हम सोच नहीं सकते. मीठा, ब्यूटीफुल सा, स्लो रोमांटिक नंबर ये गा सकें. बट ओ माई गॉड, शी हैज सम वेरी वेरी ब्यूटिफुल रोमांटिक इमोशनल नंबर्स एज वेल. और आई नो आपको भी बहुत सारे ऐसे गाने पसंद होंगे जो बहुत ही खास और रोमांटिक नंबर्स हैं. एंड मैं जो ये वाला गाना बजाने वाली हूँ ना, आई टेल यू एवरी पर्सन हैव हर्ड इट इन रिपीट. मैं तो आरजे ही रही हूँ जब ये गाना रिलीज़ हुआ था, एंड आई रिमेंबर दैट एवरी टाइम आई केम ऑन माई शो दिस सॉन्ग वॉज डेफिनेटली डेफिनेटली रिक्वेस्टेड. और आने के बाद मेरा एक जीनी टाइम होता था, विच वॉज होता है भी, आई विल नॉट से था, वे आई वुड से जो हुक्म आता क्या सुनेंगे आप, फोन उठाइए, नंबर दबाइए. और ये गाना वुड ऑलवेज बी रिक्वेस्टेड.

मैसिव फैन फॉलोइंग एंड दैट इज ऑफ नेहा कक्कर. इतना खूबसूरत काम किया है. एक्चुअली शी वॉज नोन टू बी द सेल्फी क्वीन. जो सेल्फी वीडियो का ट्रेंड है नेहा कक्कर ने ही स्टार्ट किया था. वेयर शी फिल्म हरसेल्फ सिंगिंग सॉन्ग्स यूजिंग अ फोन ऑफन माउंटेड ऑन अ सेल्फी स्टिक. और जस्ट रिकॉर्डिंग एक सिंगल ट्रैक में नहीं करती थी, शी टर्न दिस कॉन्सेप्ट इन टू अ सिग्नेचर ब्रांडिंग टूल अर्ली इन हर करियर. और बहुत ही क्यूट होता था. एक वायरल हुआ 2014 में, शी बिगैन रिकॉर्डिंग कैजुअल अप क्लोज वीडियोज ऑफ हरसेल्फ लिप सिंकिंग एंड सिंगिंग अलॉन्ग ऑन हर ओन प्लेबैक ट्रैक टू कनेक्ट विद फैंस. हर सेल्फी वीडियो फॉर द सॉन्ग बोतल खोल फ्रॉम द मूवी प्राग वेंट वायरल इन जस्ट अ फ्यू आवर्स. और सेल्फी क्वीन का टाइटल इन्हें दे दिया. फॉलोइंग दैट सक्सेस मेजर म्यूजिक लेबल्स कैपिटलाइज्ड ऑन द ट्रेंड. दे बिगैन रिलीजिंग ऑफिशियल ऑल्टरनेटिव म्यूजिक वीडियोज फॉर हर मेजर बॉलीवुड हिट्स लाइक आओ राजा रिमेंबर, तू इश्क मेरा, हिट स्टोरी 3 का गाना, सोच ना सके, लिफ्ट का गाना. एंड यू नो यही सब कुछ बिकॉज उन्होंने जो ये ट्रेंड स्टार्ट किया था उन्हीं के गाने, उन्हीं पर वो ट्रेंड एक्चुअली हिट होते गए एंड पीपल स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ मोर सॉन्ग्स ऑन दैट विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. एंड वी आर celebrating our dear Neha Kakkar. I know a lot of you have been following her, have been fans of her, wishing her more power, more love and a lot of music.

सुपर ब्यूटिफुल सॉन्ग्स ऑफ नेहा कक्कर, टोटली वेरी वेरी फेमस. एंड अभी तो बहुत ही छोटी है, सिर्फ 37 ईयर्स. 6 जून को उनका जन्मदिन है. एंड यस, विशिंग हर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सक्सेस. और जिस तरह से वो आगे बढ़ती जा रही हैं, उनको बहुत कामयाबी और भी मिले. एंड आफ्टर ऑल, वी आर द वंस हु आर गेटिंग ऑल द गुड्स विथ वॉट शी हैज़ गिवन टू एवरीबडी. क्योंकि जब वो गाती हैं तो वो तो उन्नति पाती ही हैं, हमें भी इतने अच्छे अच्छे गाने मिलते हैं. एंड थैंक यू फॉर दैट.

0: हैप्पी बर्थडे टू नेहा कक्कड़। और वैसे स्टार कलाकार को मुबारकबाद दे रहे हैं, आप किसी का जन्मदिन हो ना तो ज़रूर फ़ोन उठाएगा, नंबर दबाएगा 972-235-5555 है स्टूडियो का नंबर। एक छोटा सा ब्रेक आने ही वाला है, लेकिन बता दूँ शी वॉज द फर्स्ट इंडियन सिंगर टू बी अवार्डेड द कोवेटेड यूट्यूब डायमंड अवार्ड इन 2021। यूट्यूब डायमंड अवार्ड किसे भी नहीं मिला था तब तक। शी ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू बी फीचर्ड ऑन बिलबोर्ड्स सोशल 50 चार्ट। और यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे ना तब एक लिसनर के
1: माय टाइम इक्वेरी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म ओन्ड बाय सीपीएस सुधीर पाई, ऑफर्स इन्वेस्टमेंट एज अ सर्विस, फाइनेंशियल प्लानिंग, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, रियल एस्टेट, हाई यील्ड नोट्स एंड अदर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। फॉर फर्दर डिटेल्स विजिट mytimeequery.com और कॉल सुधीर पाई एट 972-330-2771 और ईमेल wealth@mytimeequery.com टू हेल्प यू अचीव योर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव टुडे। टॉक टू सुधीर पाई अबाउट 2025 डिजिटल एसेट और क्रिप्टो फंड।
2: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth at mytimeequity.com for professional advice.
3: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
4: Calculating route. Rerouting.
3: Are ye kya? Mujhe mere wale grocery store mein jana hai.
4: Location upgraded. Now heading to India Bazaar Fort Worth.
3: Kyun?
4: Kyunki Fort Worth, Keller, Haslett aur Hearst ke smart log jante hain. Daily groceries ho ya puja essentials. Authentic Indian products aur ghar ki har zarurat. Find everything desi at India Bazaar in Fort Worth.
3: Achha, to seedha wahi le chalo.
5: India Bazaar at 5152 Quadrant Way, Fort Worth. Switch the route.
4: Your new destination has arrived.
6: Is shahar ko hua kya? Kahin pe अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
7: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
8: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
9: मेरा रिटायरमेंट प्लान रेडी है।
10: प्लान या होप?
9: मतलब है
10: प्लान मतलब स्ट्रेटजी, होप मतलब देखते हैं क्या होता है।
9: ओके, तो मेरा वाला होप है।
10: तभी तो लोग वेल्थ टैक्टिक्स से बात करते हैं।
9: क्यों?
10: बिकॉज रिटायरमेंट को होप पे नहीं, स्ट्रेटजी पे प्लान करना पड़ता है।
8: वेल्थ टैक्टिक, रिटायरमेंट प्लानिंग विद क्लैरिटी एंड स्ट्रेटजी। फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 4696932077 और विजिट देम एट wealthtactic.com।
11: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
12: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
11: K2 ड्राइव मतलब
12: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
11: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
12: 100%
13: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2 ड्राइव.com और कॉल 214-814-0402। Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
14: अरे भाई, वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट।
15: Because you don't travel with Lawson. चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर, Lawson Travel. For nearly 30 years, Lawson Travel has been helping families plan stress-free international trips with the best airfares, vacation packages, cruises and customized travel solutions. Lawson Travel makes every journey smooth, affordable and tension-free. Call now 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
16: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
17: Chicken banana. चिकन बनाना
18: ब्रो, बनाना नहीं, बनाना।
3: मतलब make the chicken right.
17: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
11: कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं?
18: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं.
0: वेलकम वेलकम बैक, स्वागत है आप सबका 104.9 FM फन एशिया रेडियो पर. मैं आपकी खास दोस्त कह लीजिए, पर ये खास गाना नेहा कक्कर के लिए रिक्वेस्ट हुआ है. राज हमारे एक लिसनर हैं, नेहा कक्कर का आज हमने जन्मदिन मनाया है ऑन फन एशिया रेडियो. स्टार कलाकार को मुबारकबाद देते हैं और उनका 37th बर्थडे ऑन फन एशिया रेडियो. वी हैव हर्ड ऑल द बॉलीवुड सॉन्ग्स, the playback singing she has done, but some songs she also does for herself where she makes and creates her own albums, and wo album jinki storyline usi album mein khatam ho jati hai. You know, there is a start, there's a middle, there's an end, there's a peak that happens, ek climax bhi aa jata hai ek hi gaane ke andar. It's beautiful to watch a full film in one song, and that's what this one is. Enjoy Neha Kakkar's voice.

beautiful, and that was Neha Kakkar celebrating her on Star Kalakar Ko Mubarakbad. Hope you all are having a lovely, lovely time here, and thank you tune in करने के लिए. पता है किसी ने कहा, वक्त की राह में गुजरते पलों का हिसाब क्या रखना, वक्त की राह में गुजरते पलों का हिसाब क्या रखना, जो खुशी दे जाए जिंदगी में बस वही याद रखना. एंड आई विश हम सब यही कर सकते. 104.9 FM फन एशिया रेडियो. अगर ये है जो आपको खुशी देता है आपके पलों में, ज़रूर याद रखिए हमें सुनना, ट्यून इन करना, साथ रखना.

ब्यूटीफुल 104.9 एफएम फनीजा रेडियो, आतिफ असलम की आवाज़, बहुत ही खास खास गाना. एंड दिस इज़ ऑन योर फ्राइडे इवनिंग. पता है, जब ऐसे खूबसूरत गाने होते हैं ना, तो दिल को छू जाते हैं. हर किसी के लिए कोई ना कोई गाना बना है. और फनीजा सेलिब्रेट कर रहा है वर्ल्ड म्यूज़िक डे, बिकॉज एवरी मोमेंट हैज़ अ सॉन्ग, एवरी मूड हैज़ अ मेमोलॉजी, वेदर इट्स रोमांटिक और हार्ट ब्रेक, अ वेडिंग एंथम और अ पार्टी फेवरेट. क्या पसंद है? वी वॉन्ट टू नो योर टॉपिक्स. अभी June 1st से June 15th तक यही समय ऑलरेडी चालू हो चुका है. यू कैन फिल आउट आर गूगल फॉर्म एंड नॉमिनेट योर फेवरेट सॉन्ग्स अक्रॉस डिफरेंट म्यूजिक कैटेगरीज. अभी मैंने बजाया आतिफ असलम का ये खूबसूरत गाना, बट फनीजा विल सिलेक्ट द मोस्ट लव सॉन्ग्स फ्रॉम ईच जॉनर, द सॉन्ग्स दैट हैव बिकम द हार्ट बीट ऑफ मिलियंस. कौन सा गाना है जो आपका है? और June 21st को होने वाला है वर्ल्ड म्यूजिक डे. हर साल आता है, इस साल को June 21st को वर्ल्ड म्यूजिक डे फनीजा एक डिफरेंट तरीके से मनाएगा. एवरी फनीजा शो विल बी डेडिकेटेड टू अ डिफरेंट म्यूजिक जॉनर फीचरिंग द विनिंग सिलेक्शंस. और सबसे एक्साइटिंग पार्ट क्या है बताओ? द लिसनर हुज सॉन्ग चॉइसेस मेक इट इनटू आवर फाइनल प्लेलिस्ट द मोस्ट विल विन एक्साइटिंग प्राइजेस. और वो आप भी हो सकते हैं. आपका गाना, आपकी पसंद, आपका चॉइस. विजिट funasia.net और फॉलो आवर सोशल मीडिया पेजेस फॉर डिटेल्स. और देखिए, आपका पसंदीदा गाना बज जाए तो वो तो एक डिफरेंट सा रिवॉर्ड फील होता है. हमें बस बोल के नहीं, जो पुराने ज़माने में हम गाने भेजा करते थे आकाशवाणी में, we've heard that there would be like लंबा चौड़ा गाने का लिस्ट जब उसके बाद एक गाना बजता था, वो जैसी खुशी होती थी ना, वैसी खुशी होगी यहाँ पर. विजिट funasia.net और फॉलो आवर सोशल मीडिया पेजेस फॉर डिटेल्स. Celebrate the magic of music with Funeeja 104.9 FM. Aapka gaana, aapki pasand. Make sure it hits right. It hits the top where we play your song for each genre.

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner. The law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
3: जिस बात का डर था वही हुआ, लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन।
4: अरे कहना क्या चाहते हो?
5: डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आई, लैंग्वेज बैरियर का टेंशन भी, अब टेंशन का टाइम गया। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ मल्टी लैंग्वेज नर्सेज और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं। हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू प्रेफर। फ्रिस्को, प्लेनो, मैकिनी, अबरी, फ्लावर माउंट, इरविंग, प्रॉस्पर, एना, एनी लोकेशन यू आर क्लोज टू, कॉल 214-666-6259 और विजिट पैशन हेल्थ primarycare.com. Passion Health Primary Care. Your health, your language, your comfort.
6: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
7: Computer ji ka sawal ye hai, business owners ko loan lena mushkil kyun lagta hai? Option A, slow process. Option B, zyada paperwork. Option C, credit score ka concern. Ya option D, loan decline hone ka dar.
8: Main expert lifeline use karna chahunga.
7: Computer ji, SBA loan expert se connect kiya jaye.
9: SBA Loan Experts ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है. नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं. रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में.
10: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338. 817-786-3338. The SBA Loan Experts. फैसला क्लैरिटी के साथ.
11: सेम ऑर्डर अगेन? सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी? टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स, डॉलर्स. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta